आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं तो

ताले ताक जमी ताक ताले ताक जमी ताक दाला आंधो ताक जगे ताक ताले के नंतर ताक नाक ताक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने ताले जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के जम तारी

मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए चोर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ये हमारा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं वर्ड मस्ती विद आरजे वंशिका। अभी चल रही है खास वर्ड मस्ती जिसमें है एक मजेदार ट्विस्ट, तो जुड़े रहिए आरजे वंशिका के साथ और तैयार रहिए कुछ हटकर सुनने, सोचने और मस्ती करने के लिए, क्योंकि इस वर्ड मस्ती में हर शब्द के साथ छुपा है एक नया ट्विस्ट। आप भी इस वर्ड मस्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम से और बन सकते हैं इस मजेदार मस्ती का हिस्सा। तो अभी जुड़िए, अपनी बात रखिए और देखिए वर्ड मस्ती का ये ट्विस्ट आपको कहां तक ले जाता है। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आप सभी की आज वंशिका। आज फिर से मुलाकात करने के लिए आज की हूं आप सभी से। आज के वर्ड मस्ती के प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज फिर से मेरे साथ हैं आप सभी के चहेते दुलारे आज अमन जी।
1: हाय, हेलो, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं भी एक बार फिर से आप सबका एंटरटेन करने आ चुका हूँ एज ए गेस्ट आरजे वंशिका जी के साथ। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे एंड सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो
0: बिल्कुल, एंड आज अमन जी वर्ड मस्ती में आज आपका फिर से बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने मुझे एज ए गेस्ट फिर से बुला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वैसे मुझे
0: अच्छा लगता है,
1: हमेशा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिलहाल मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप सबसे बातें करके और ये प्रोग्राम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यानी पिछले बार मैंने किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, दोस्तों ने काफ़ी सराहा भी था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे भी। तो सोचा कि क्यों ना एक बार फिर किया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप आते हैं तो शो में ना चार चांद लग जाते हैं ना, सभी लिसनर्स मतलब एंजॉयमेंट करने लग जाते हैं, तो आप आया करें तो काफी अच्छा लगता है। और आज आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: थैंक यू सो मच। इसी बात पर एक मेरी पसंद का गाना हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने के साथ। सभी का वेलकम करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं मुझे भी और आरजे वंशिका जी के भी। मतलब अगर दोनों को करेंगे, यानी किसी भी आरजे के पास, तो दोनों के पास मैसेज जाएगा। अगर वहाँ सेपरेट करेंगे मेरे पास या आरजे वंशिका जी के पास, तो सेपरेट मैसेज आएगा, देखते हैं। और हाँ, ग्रुप में यानी कि जो लाइव चैट है वहाँ पे जरूर शामिल करें, क्योंकि कोई भी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे सब वहीं पे होने वाले हैं। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए, आते हैं आप सभी का वेलकम करने इस गाने के साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे।
1: दीवाना बना दे।
0: बिल्कुल। तो अर्जु वंशिका जी, अब दोस्तों का भी वेलकम कर दीजिए कि कौन कौन से दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं, और आप एक काम कीजिए, पहले इन चैट बॉक्स में का जायजा लीजिए, वहाँ पे कौन कौन से दोस्त जुड़े हुए हैं उनका पहले नाम ले लीजिए आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखती हूँ चैट रूम में। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने वाली आज की श्रोता है प्रीति रायदास जी। प्रीति जी, आपका बहुत वेलकम है। और उसके बाद है रमेश चौहान जी, निशांता बोले जी, और साथ में हमारे साथ ज्योति खटवटे जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और जाकिर खान जी हैं, और राहुल पासी जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, और हमारे साथ में संदीप सुतार जी भी जुड़ चुके हैं, एम ताहिर जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत वेलकम करना चाहूंगी।
0: और जहाँ तक मैं मैसेज देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जानिसार अख्तर जी हैं, रणवीर सिंह जेठालाल जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, और ये कृष्ण चंद्र जी हैं, और जाकिर खान जी हमारे पास, उनका भी मैसेज आया हुआ है। सभी का वेलकम करता हूँ मैं भी
1: जी। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेनमार्क से निकलस जी, जो लिखते हैं कि आज अमन जी, आज वंशिका जी, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा, और मैं ग्रीनलैंड में सुबह 4:55 पे आप सभी को सुन रहा हूँ।
0: माय गॉड। और यहाँ पे योगेंद्र प्रजापति जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी
1: जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यार प्यार लिसनर्स का। और यहाँ पे मेरे पास, जैसे कि मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लिखते हैं एम ताहिर जी, अमन खान जी और वंशिका जी, आपको और सभी शो सुनने वाले सभी साथियों को हमारी तरफ से तहे दिल से आदाब।
0: ओके, फिलहाल आप दोस्तों को रूल समझा दीजिए आज का क्या है, कैसे खेलना है।
1: बिल्कुल, मैं बता देती हूँ आप सभी को आज के शो में क्या करना है। वो दो रूल से, मतलब दो राउंड आएंगे आप सभी के सामने। पहला राउंड आएगा शब्दों वाला राउंड, यानी कि वर्ड राउंड, जिसमें मैं आपको शब्द दूंगी जो कि आपके चैट रूम में भी आ जाएगा और ऑन एयर भी आपको सुनने को मिलेगा, और उस शब्द से आप सभी को गाने लिख के भेजने हैं। सबसे पहले जो गाने लिख के भेजेंगे, जो विजेता होंगे उनका गाना प्ले किया जाएगा, और इसके अलावा अगर कोई गाना मेजोरिटी में आता है कि बहुत सारे लिस्टर्स ने भेजा है, तो उस गाने को भी प्ले किया जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और इसके साथ साथ ऐसा रहेगा, जैसे पहले जितने भी पीछे वर्ड मस्ती हुए, मतलब प्रीवियस में, उसमें थे कि एक, मतलब कोई भी लिस्ट अगर कितनी बार भी विनर बन जाते थे अनलिमिटेड टाइम, बट इस रूल को थोड़ा चेंज किया गया है। अगर कोई श्रोता, कोई लिस्टर 3 बार विजेता बन जाते हैं, तो चौथी बार वो विजेता नहीं बनेंगे।
0: हाँ, उनका यानी कि मेजोरिटी में शामिल किया जाएगा अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो। बिल्कुल अच्छा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेजोरिटी में शामिल किया जाएगा, बट स्टिल अगर उनका नंबर 1 पे आता है तो उनको नहीं लेंगे, अगर जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको विनर माना जाएगा।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यानी कि वो कहते हैं ना, इन परिवर्तन ही संसार का नियम है, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए। फिलहाल तो प्रोग्राम का आगाज किया जाए।
1: जी बिल्कुल, प्रोग्राम का आगाज किया जाता है और आप सभी से कोई प्यारा सा गाना सुनवाया जाता है।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन पहले इस यहाँ पे राउंड एक में प्ले करता हूँ, जो राउंड इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद से गाना प्ले करूंगा।
1: बिल्कुल।
2: अब शुरू हो रहा है राउंड 1, वर्ड मस्ती का पहला राउंड। इस राउंड में आपको मिलेगा एक शब्द, और हर एक शब्द आपको हमारी चैट रूम में दिया जाएगा। आपको करना बस इतना है, जैसे ही चैट रूम में शब्द आए, उस शब्द से जुड़ा अपना पसंदीदा बॉलीवुड गाना हमें लिखकर चैट रूम में भेजना है, और जो प्रतिभागी सबसे पहले सही गाना हमें भेजेंगे, उनकी फरमाइश का गाना ही इस राउंड में प्ले किया जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ गाने की पसंद ही नहीं, बल्कि आपकी स्पीड भी मायने रखेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वर्ड मस्ती का राउंड 1। ध्यान रखिएगा चैट रूम पर, क्योंकि शब्द कभी भी आ सकता है।
0: ओके, तो फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं
1: जी। एंजॉय कीजिए आपसे भी।

0: तो आरजे वंशिका जी, आज यानी पहला शब्द दे दीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल, पहला शब्द आप सभी के सामने ये रहा और पहले शब्द है चेहरा। चेहरा शब्द से आप सभी गाने लिखिए मेरे रेडियो हॉटस्टार के लाइव चैट रूम के अंदर।
0: क्या बात है, चेहरा पे तो बहुत सारे गाने हैं, मजा आने वाला है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और क्या बात है आरजे वंशिका जी, बहुत से दोस्तों के एक ही मतलब मैसेज ज्यादातर आए हुए हैं मेजोरिटी में, है कि नहीं?
1: बिल्कुल एक ही है जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि सभी के सभी दिल में ही उतरना चाह रहे हैं। सभी के सभी चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना, सभी के यही आंसर है। और सबसे तो, पहले सुनील जी,
0: सबसे पहले तो सुनील जी हैं। और कौन कौन से दोस्त है जरा नाम बता दीजिए हमें, दोस्तों को जो लोग सुन रहे हैं सिर्फ उनके लिए तो भाई जरूरी है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो सबसे पहले है सुनील कुमार जी, उसके बाद है सुन गौतम जी हैं, राहुल पासी जी हैं, एम ताहिर जी हैं, संदीप सुतार जी हैं, योगेंद्र प्रजापति जी हैं, अब्दुल जब्बार अंसारी जी हैं, और ज्योति खटवटे जी हैं, जाकिर खान जी हैं, रमेश चौहान जी हैं, निशांत राय बोले जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, निक्रस जी हैं, मतलब सभी के सभी, मतलब सभी चेहरे को देख के दिल में उतरना चाह रहे हैं आज।
0: फिलहाल उतार देते हैं चेहरे को दिल में, है कि नहीं?
1: बिल्कुल उतारते हैं और एंजॉय कीजिए आप सभी प्यारा सुनने हुआ।
0: ओके, एंजॉय द ट्रैक। और जुड़ने वाले दोस्तों में शामिल हो रहे हमारे ये समीर आलम जी, बहुत बहुत वेलकम है, और साहिब हुसैन जी वेलकम है आपका भी।

0: तो आर्यवंशिका जी अगला वर्ड भी दे दीजिए प्लीज।
1: जी अगला शब्द या अगला वर्ड आप सभी के सामने ये रहा जो कि है कसम। कसम शब्द से आप सभी गाने लेके भेजिए।
0: ओहो खुदा की कसम खा के कहते हैं हम, बहुत ही प्यारा गाना होता है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि मतलब हमारे इन बहुत से दोस्त यहाँ लाइव चैट में हैं, अगर वो सभी मैसेज करेंगे तो सच में बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं मतलब देख रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज मैसेज आप लोग भी करते रहिए प्लीज।

0: अरे बहुत मन करता है कि हम आपको दिन भर देखते रहे। वैसे गाना बहुत ही प्यारा था, है ना अर्जुवंशिका जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गीत था। और आप सभी लिसनर्स ने प्यार प्यारे गाने ढूंढ के कहाँ से लाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आज मन जी आपको पता है कहाँ से लाते हैं?
0: नहीं, वो तो वही जानते हैं। बिल्कुल, फिलहाल हमें साहब जी लिखते हैं, यानी कि साहब हुसैन जी, के आप यानी अब दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आई लव यू रेडियो हॉट स्टार। ओ थैंक यू सो मच भाई साहब जी।
1: और जी थैंक यू सो मच।
0: और यानी हम से जुड़ चुके हैं, मतलब यानी बिरजू जी, भाई यानी बिरजू जी यहाँ पे मत भेजिए, यानी कि लाइव चैट जो है ना, देखिए यानी मोर के ऑप्शन में जाइए और मोर में वहाँ पे लिखा होगा यानी कि लाइव चैट, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो समझिए कि आपका मैसेज मेरे पास आएगा। वैसे जवाब बता दीजिए सबसे पहले किसने दिया है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले हमारे पास जैसे मैं देख सकती हूँ कि प्रीति रायदास जी हैं, और यहाँ पे उसके बाद ज्योति खटवटे जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, सुन गौतम जी हैं, एम ताहिर जी हैं, और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, जैसे विष्णु जी, रमेश जी, राहुल पासी जी, योगेंद्र जी, अब्दुल जब्बार अंसारी जी, निशांत राय बोली जी हैं, निकलस जी हैं, जाकिर खान जी हैं, संदीप सुतार जी हैं, और नीलेश विरोकाश जी, मतलब बहुत सारे लिस्नर्स, सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने लिख के भेजे हैं। बट सबसे पहले प्रीति रायदास।
0: तो मैं गाना कौन सा प्ले करूं? यानी कसम खा के कहो, ओहो एंजॉय कीजिए। और मेजॉरिटी में कोई सॉन्ग है?
1: मेजॉरिटी में गाना है कसम क्या होती है।
0: कसम क्या होती है, ठीक है, इस गाने को थोड़ा सा प्ले करूंगा जरूर। ओके अच्छा जी, तो आप इन मूर्तिकार हैं, इन बिरजू जी, बहुत बहुत बधाई हो भाई, कोई बात नहीं, बस

और एक लाइन में कहना चाहूंगा कि उसे देखते ही चेहरा यूं खिल जाता है, उसे उसे उसे देखते ही चेहरा यूं खिल जाता है, और जैसे उसके होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। और कैसे बताऊं कि तू क्या है मेरे लिए, और कैसे बताऊं कि तू क्या है मेरे लिए, और तुझे बस एक बार देख लूं तो मेरा पूरा

0: बिल्कुल तुमको हमसे प्यार है वैसे थोड़ा सा जो यानी कसम क्या होती है इस गाने को थोड़ा सा प्ले करते हैं उसके बाद इसी गाने में मैं दूंगा आपको वर्ड मतलब मैं नहीं आरजे वंशिका जी
1: आज कहाँ है सभी के सभी।

0: तो फिलहाल यहाँ पे शब्द दिए जाए।
1: बिल्कुल, अगला शब्द है चुराना या चुराया, मतलब इन दोनों में से मतलब किसी भी तरीके से लिख के भेज सकते हैं आप, चुराया शब्द से भी लिख सकते हैं, चुराना से भी, तो ये शब्द रहेगा आपसे।
0: ओके, तो फिलहाल भेजिए।

0: और मैं तो यही कहूंगा कि अगर इन समझो तो एहसास है, देखो तो रिश्ता है, कहो तो अल्फाज है, चाहो तो जिंदगी है, और करो तो इबादत है, निभाओ तो वादा है, और टूटे तो मुकद्दर है, मांगो तो मन्नत है, और फिर मिले तो जन्नत है, बस यही तो मोहब्बत है। फिलहाल हम घंटी बजा के आते हैं।
1: घंटी बजा
0: बिल्कुल हम घंटी बजाने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज मुझे वो जो मतलब रितेश यानी देशमुख जी है ना, वो मुझे बहुत याद आ रहे हैं आज, और घंटी बजाते हैं ना, वही मैंने भी सोचा कि थोड़ा मैं भी घंटी बजा लूं, तो घंटी बजा के मैं आता हूँ। ओके
1: ओके जी, बजाइए।
0: हाँ

0: झूठा कोई का।
1: फिलहाल बता दीजिए कि ये विनर कौन हुए हैं?
2: बिल्कुल, यहाँ पे विनर की घंटी बज चुकी है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास पहुँचा राहुल पासी जी का गाना, और उसके बाद में ताही जी हैं सुनील कुमार जी है। तुमने जो दिल को सनम आगे उन्होंने लिखा है,
1: जब तक मैं जब तक इन समझूंगा नहीं वो गाना वो है या नहीं, तब तक मैं कैसे क्या उस गाने में वो शब्द है।
2: तो राहुल जी, हो सके तो आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन करके गाना लिख के भेजिए, नहीं तो हम एम ताहिर जी को विनर माना जाएगा जो कि दिल चुराया गाना लिखा है।
1: बिल्कुल, तो इनका वो समझ में आ रहा है ना कि इन दिल चुरा लिया है कि नहीं।
2: बिल्कुल, तो विनर एम ताहिर जी हैं। राहुल पासी जी, आपका गाना एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि आपके गाने के टाइटल में हमें कहीं भी चुराया चुराना दिख नहीं रहा,
1: समझ में नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल, फिलहाल एम ताहिर जी को सुनवाएंगे, उन्हीं के गाने को फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

फिलहाल इस गाने को सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, यहां पे राहुल पासी जी का गाना मुझे मिल रहा है, थोड़ा सा गाना जरूर सुनवाएंगे।

0: और कोई कोई गाने ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता कि आप आपने किस गाने के लिए भेजा है, और जो मुझे मिला है मैंने वो प्ले कर दिया है। हो सकता है कि आपका वो गाना हो या ना हो, अगर नहीं होगा तो मुझे यानी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि ये नहीं इस फिल्म का गाना होगा, तो मैं फौरन चेंज कर दिया करूंगा। ओके,
1: मूवी का नाम भी लिख के भेजा करें।
0: नहीं वो तो वो बहुत ज्यादा यानी लंबा हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से लोग यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे मतलब यानी पीछे हो जाएंगे, ऐसा है।

0: फिलहाल यहाँ पे अगला शब्द दे दीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल, अगला शब्द आप सभी के लिए ये रहा जो कि है नाम। नाम शब्द से आप सभी गाने लिख लीजिए।
0: नाम, ओके।

0: बिल्कुल चुरा लिया है तुमने। वैसे बहुत से दोस्तों के मैसेज आ चुके हैं, और विनर कौन कौन हुए जरा बता दीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल मैं बता देती हूँ, विनर हुए हमारे साथ में सुनील कुमार जी, और इसी गाने में शामिल रहेंगे सोनू गौतम जी भी हैं इसी गाने में, और नंदलाल यादव जी भी इसी गाने में शामिल हैं, और अजय भगत जी भी इसी गाने में शामिल हैं, और इसके साथ साथ में ये सभी हैं जो कि इसी गाने में शामिल हैं।
0: ओके, तो हम यही गाने प्ले करेंगे लेकिन थोड़ा सा इस गाने को सुनने के बाद। बिल्कुल चुरा लिया। वैसे बता दूं कि जब यानी मेजोरिटी में यही गाना है तो सच में इस गाने को प्ले करना बनता है, प्ले कर दिया।

0: और अगला सवाल भी कर लीजिए यहीं पे।
1: बिल्कुल, अगला शब्द आप सभी के सामने ये रहा जो कि है आईना। आईने, आईना शब्द से आप हमें गाना लिख के भेजते, आईना यानी कि मिरर, गाना उसे लिख के हम भेज दीजिए लाइव चैट रूम के अंदर।
0: ओके, बहुत से दोस्त हैं जो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज आप वहाँ पे लाइव चैट में आके वहाँ मैसेज कीजिए।
1: बिल्कुल, और सभी आप भी लाइव चैट रूम में आ जाइए।

0: आरजे वंशिका जी बता दीजिए यानी विनर कौन है और मेजोरिटी में कौन सा सॉन्ग है।
1: बिल्कुल बता देती हूँ। और अभी जो मैंने शब्द आप सभी को लिख के भेजा आईना, और आईना शब्द से सबसे पहले गाना मेरे पास जो पहुँचा है वो सुनील कुमार जी का है, बट सुनील कुमार जी 3 बार पहले विजेता बन चुके हैं।
0: अच्छा, यानी कि 3 बार उनका हो चुका है। ओके,
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए, लेकिन लेकिन तो, ऐसा नहीं ना कि उनका ये यानी कि 3रा हो।
1: 3 बार हो चुका है जहाँ तक मैंने गिनती कंप्लीट करी है।
0: हाँ, तो ये लेकर मतलब इन्हें 3रा हो सकता है, ये लेकर इन्हें 3रा हो रहा है क्योंकि 2 पहले हो सकता है और ये अभी वाला लेकर 3रा हो रहा है इनका।
1: ओके, ठीक है। इनको मतलब इस बार ऐसा लास्ट विनर मतलब भी बने हैं, मतलब तीसरी बार अब विनर बन चुके हैं।
0: ओके,
1: मतलब स्पेशल वाले
0: ओके, कोई बात नहीं, अगला स्टेप आएगा ना इनका इन फर्स्ट में, तो उनके बाद वाला हम लोग काउंट करेंगे। जी बताइए।
1: ओके, ठीक है। सुनील कुमार जी का गाना है ये आई में जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। और इसी गाने में शामिल रहेंगे हमारे साथ में सुन गौतम जी।
0: ओके,
1: और ये उसके साथ बागेश्वर निषाद जी भी इसी गाने में है, जाकिर खान जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये सभी लिसनर्स हैं जो कि इसी गाने में शामिल रहेंगे।
0: कोई बात नहीं। और मेजॉरिटी वाले गाने कौन से हैं?
1: मेजॉरिटी वाला गाना ये है हमारे पास में, आई यहाँ पे देख लेती हूँ मैं, जो कि मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा गाना आईने बता कैसे है,
0: आईना बता कैसे दिल का उनका दिल चुराना है। जी चलिए, दोनों गाने मैं प्ले करता हूँ, फिलहाल इस गाने से आगाज करते हैं। ओके, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं।

0: फिलहाल यहाँ पे अगला शब्द बताना है, बता दीजिए।
1: बिल्कुल, अगला शब्द है तुम्हारा। तुम्हारा शब्द से आप सभी गाने लिख के भेज सकते हैं हमारे रेडियो हॉटस्टार के सभी के लाइव चैट के अंदर।
0: बिल्कुल, लाइव चैट में ही भेजना है। बहुत से दोस्त मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैसेज ना, व्हाट्सएप कुछ नहीं करना है, सीधे लाइव चैट में एंट्री कीजिए और वहीं पे अपना जवाब भेज दीजिए। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार अमन एंड आरजे वंशिका जी के साथ, जो आपको दीवाना बना दे।

0: तो बता दीजिए इन विनर कौन हुए हैं, इस गाने की और मेजोरिटी में कौन सा गाना है?
1: बिल्कुल, सबसे पहले इसका आंसर हमारे पास, मतलब इसका गाना हमारे पास भेजा है सोनू गौतम जी ने, जो कि गाना भेजे हैं हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम।
0: अच्छा जी,
1: और इसमें गीत के शामिल रहेंगे हमारे साथ में संदीप सितार जी, और इसी गाने में हमारे पास में ज्योति खटवटे जी भी शामिल रहेंगी, और इसी गाने में है निशांत राय बोले जी भी इसी गाने में शामिल है, और अजय भगत जी भी इसी गाने में शामिल है, अब्दुल जब्बार अंसारी जी भी इसी गाने में
0: मतलब
1: शामिल है, सुनील कुमार
0: मेजोरिटी में भी है। कोई बात नहीं, इसी को प्ले करेंगे।

0: बिल्कुल हम तुम्हारे हैं सनम, लेकिन यहाँ पे सवाल भी करना है ना अर्जवंशिका जी।
1: बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं अगले मतलब शब्द की तरफ, जो कि है मेरा, यानी मेरे शब्द से आप सभी गाना लिख के भेज सकते हैं। तो गाने के जो जो टाइटल होगा उसमें मेरा आना चाहिए।
0: मेरा, ओके, मेरा वाला जो ये शब्द है मेरा, जैसे कि एग्जांपल है मेरा दिल भी कितना पागल है, आप समझ सकते हैं, तो वैसे ही पे आप गाना भेज सकते हैं जल्दी से लाइव चैट रूम में। बिल्कुल।

0: बिल्कुल, फिलहाल बताइए विनर कौन है।
1: जी विनर बने हैं हमारे सोनू गौतम जी, जो कि गाना लेके आए हैं तेरा मेरा है प्यार अमर।
0: अच्छा, मेरा फेवरेट गाना है।
1: बिल्कुल मेरा ही फेवरेट गाना है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। और इसके साथ मेजोरिटी में भी कुछ गाने आए हैं हमारे पास में, जैसे कि है मेरा दिल भी कितना पागल है,
0: तो दोनों गाने और इस गाने में
1: बिल्कुल। और सोनू गौतम जी का जो गाना है तेरा मेरा है प्यार अमर, इस गाने में सुनील कुमार जी भी शामिल है।
0: अच्छा, ओके, फिलहाल तो सुनवाते हैं इसी बात पर तेरा मेरा है प्यार अमर।
1: प्यार अमर।

0: और अब मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। सभी दोस्तों को जो मेजोरिटी में गाने हैं, एंजॉय कीजिए।
1: और आज गुनगुनाया बहुत ही प्यारा।
0: थैंक यू सो मच।

0: बस यही पे सवाल कर लीजिए। अगला
1: बिल्कुल अगला सवाल, ये शब्द, इस शब्द पे तो इतने सारे गाने आएंगे, इतने सारे गाने आएंगे, बहुत ज्यादा, यानी प्यार शब्द से आप सभी गाने लिखे होंगे।
0: प्यार, ओह माय गॉड, बहुत है, ऑटोमेटिक इसमें इतने गाने हैं, इतने सबसे ज्यादा गाना होगा शायद मेरे ख्याल से, यानी इसी पर होगा। इंजॉय कीजिए इस गाने को फिलहाल, और प्यार वर्ष से जल्द गाने भेज दीजिए लाइव चैट रूम में।

0: बिल्कुल, तो जवाब बता दीजिए, सॉरी ये विनर कौन है बता दीजिए।
1: बिल्कुल विनर आज बने हैं, मतलब दूसरी बार विजेता बने हैं राहुल पासी जी।
0: अच्छा।
1: और जी जो गाना लेके आए हैं ये प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, इस गाने के साथ में जुड़े हैं हमारे साथ में, और इसके इसी गाने में शामिल रहेंगे अब्दुल जब्बार अंसारी जी की।
0: अच्छा, और मेजोरिटी में कौन सा गाना है?
1: और मेजोरिटी में गाना है प्यार हमारा अमर रहेगा, जिसको सुनील कुमार जी, जाकिर खान जी और विनेश विरुकार जी और प्रीति रायदास जी, रामचंद्र जी और बागेश्वर निषाद जी, निकलेस जी इसी गाने में शामिल रहेंगे, अशोक कुमार जी भी।
0: तब तो दोनों गाने प्ले करने पड़ेंगे। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हुए अगला गाना

0: फिलहाल यहाँ पे अगला वर्ड दे दीजिए।
1: बिल्कुल, अगला शब्द आप सभी के सामने ये रहा जो कि है चूड़ी।
0: चूड़ी,
1: चूड़ी शब्द से लिखे गाना भेजिए।
0: ओके, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गाने हैं चूड़ी पर, जल्दी भेज दीजिए वहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में।

0: तो आर्यवंशिका जी बता दीजिए, ये विनर कौन है और मेजोरिटी में कौन सा गाना है?
1: बिल्कुल, इस बार विनर बने हमारे राहुल पासी जी और ये तीसरी बार विजेता बन चुके हैं।
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी भाई। अब और बताइए,
1: और क्योंकि सुनील कुमार जी भी हैं बट वो पहले विजेता बने हैं तो उनका गाना नहीं लिया जाएगा। राहुल जी हैं, अब वो भी विजेता बन गए हैं, अगली बार से उनका आएगा तो उसको भी हम मतलब मेजोरिटी में होगा जब ही लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस गाने में मतलब जो राहुल पासी जी गाना लाए, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, इस गाने में संदीप सितार जी शामिल रहेंगे और इसके साथ हुकुम चंद जहांगीर जी और ज्योति खटवटे जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगी।
0: सुनील कुमार जी भी तो हैं।
1: सुनील कुमार जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे। हाँ, सुनील कुमार जी भी और निकलेस जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे। चूड़ी नहीं मेरा दिल है।
0: और क्या कोई गाना मेजोरिटी में भी है?
1: बिल्कुल, मैं देख लेती हूँ। ये गाना जो हमारे पास है, चूड़ी मजा नहीं देगी कंगन मजा नहीं देंगे, ये मतलब मेजोरिटी में गाना रखा है।
0: और जो मुझे सुना था वो तो भाई एक ही आदमी ने भेजा है, हमारे इन विष्णु चंद्र जी ने। कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसी गाने को सुनवा रहे हैं, इन चूड़ी नहीं दिल है मेरा। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: लेकिन यहाँ तो सवाल जरूर मजा देगा सभी को, है कि नहीं?
1: बिल्कुल, सवाल जरूर मजा देगा। और सवाल यानी कि शब्द आप सभी के सामने ये रहा, यानी कि आप सभी को गाने लेके भेजने हैं फूल शब्द से।
0: क्या चीज? फूल,
1: फूल, फ्लावर।
0: ओके, फ्लावर, फूल से। ओके, फूल, जैसे कि फूल मांगू ना बाहर मांगू, है ना? एग्जाम्पल।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके, चलिए फिलहाल इस गाने को थोड़ा सा सुनते हैं।

0: तो बता दीजिए जवाब, यानी किन किन दोस्तों ने भेजा है?
1: बिल्कुल, सबसे पहले भेजा है रोशनी कुमारी जी ने, फूल तुम्हें भेजूं दिल ये कहता है, इस गाने के साथ में जुड़ी है। और उसके अलावा भी मतलब बहुत सारे गाने डिस्कस में भेजे हैं, जैसे कि मेजोरिटी में गाना मेरे पास जो पहुंचा है,
0: फूल मांगू ना बहार मांगू,
1: बिल्कुल फूल मांगू ना बहार मांगू, ज्योति खटवटे जी इस गाने में शामिल है, एम ताहिर जी भी इस गाने में शामिल है, और प्रीति रायदास जी, बागेश्वर निषाद जी, निकलस जी, निशान जी, मतलब सभी लिसनर्स फूल मांगू ना बाहर मांगू में इंक्लूडेड हैं।
0: हम इस गाने से चलते हैं और फिर फूल मांगू पर आते हैं। ओके, जी जी बोलिए बोलिए।
1: आपको कौन सा फूल पसंद है? मतलब बहुत प्रकार के फूल होते हैं, गुलाब होता है।
0: अरे फूल के बारे में हम क्या बताएं, अभी तो हम फिलहाल गाना

0: तो यहाँ अगला ये निक की वर्ड भी दे दीजिए, शब्द लव्स।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लव शब्द और सब कुछ, मतलब आप सभी के लिए अगला शब्द ये रहा जो कि है दिल। दिल
0: दिल।
1: शब्द से आप सभी गाने लिख दीजिए।
0: ओके जी, तो इन दिल सबसे गाने मुझे भेजिए जल्दी से इस चैट बॉक्स में।

0: बिल्कुल फुल मांगू ना बाहर मांगू। वैसे विनर कौन कौन है बता दीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैं देख सकती हूँ अजय भगत जी ने भेजा है दिल शब्द से गाना। सोनू गौतम जी का गाना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन सी गीत की फरमाइश करी है।
0: वो तो कोई बात नहीं, उनका गाना ही मतलब इस थीम में नहीं बैठ रहा है, उसको हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम।
1: बिल्कुल, इसी मतलब थीम के हिसाब से सबसे पहले आंसर हमारे पास अजय भगत जी का है गाना दिल दीवाना ढूंढता है।
0: लेकिन, लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे दिल यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास पहुँचा हुआ है, देख रहा हूँ मैं, यानी कि जाकिर खान जी भी है, मेरा दिल भी कितना पागल है, तो ये तो शायद ये गाना हो चुका है ना
1: जी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये तो पहले मतलब मेरा शब्द जब हुआ था जब हाँ,
0: तो ये गाना हो चुका है, तो ये गाना जो हो जाएगा उसको तो दोबारा लेना नहीं है। अब उसके बाद से है यहाँ पे ज्योति खटवड़ी जी का मुझे दिख रहा है दिल है कि मानता नहीं,
1: उससे ऊपर अजय भगत जी भी हैं।
0: अच्छा, उससे ऊपर किधर मुझे तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, शायद हो सकता है कुछ यानी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यानी कि चैट बॉक्स में।
1: चैट बॉक्स में मे भी कुछ इशू है क्योंकि मेरी तरफ यहाँ पे सबसे पहले
0: अच्छा हाँ, है यानी कि अजय भगत जी का आ गया है। ठीक है, ओके, मैंने रिफ्रेश किया है तो आ गया है अजय भगत जी का, मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं दिल दीवाना ढूंढता है जी। बिल्कुल सही है,
1: बिल्कुल। और उसके बाद सुनील कुमार जी, विजू जी, जाकिर खान जी, ज्योति जी, प्रीति रायदास जी और भी बहुत सारे लिस्टर्स हैं, बट सबसे पहला हमारे पास अजय भगत जी का पहुंचा है। और मेजॉरिटी में गाना है कि दिल है कि मानता नहीं, बट वो गाना पहले प्ले हो चुका है।
0: दिल है कि मानता नहीं तो नहीं प्ले हुआ है, मेरा दिल भी कितना पागल है वो प्ले हुआ है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो दिल है कि मानता नहीं प्ले होगा, मेरा दिल है कितना पागल है वो नहीं प्ले हो सकता है। ओके,
1: बिल्कुल,
0: फिलहाल इसे एंजॉय कीजिए।

0: आरजे वंशिका जी, मैं चाहूंगा कि आप यानी कि मूडी चॉइस के बारे में आज दोस्तों को बता दीजिए कि आज किस गाने की, मतलब किस तरह गाने की डिमांड करनी है।
1: बिल्कुल, आज शाम को जो 6 बजे आरजे मन जी का शो आने वाला है मूडी चॉइस, उसमें आप सभी को ऐसे गानों की फरमाइशें करनी है जो कि कॉलेज या स्कूल पे फिल्माए गए गीत हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ले सकें तो ऐ मेरी कॉलेज की लड़कियों ऐसे ना मुझे देखा करो, ये वाला गाना हो सकता है। या कॉलेज पे फिल्माए गए अलग कोई से भी गाने, जैसे बाजीगर मूवी में कॉलेज की फेयरवेल पे फिल्माए गए गीत हैं, वो आप सभी ले सकते हैं। और कयामत से कयामत तक में जैसे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो भी कॉलेज की, मतलब कॉलेज की पिक्चराइजेशन पे है वो गाना, मतलब कॉलेज की सिक्वल में वो गाना
0: जैसे
1: है।
0: वो जो फिल्म यानी कि वो दिल का क्या कसूर वाले भी जो गाने हैं, इन 2 बजे आंख लगी, 3 बजे प्यार हुआ वगैरह वगैरह, चाहे उसमें बहुत सारे गाने हैं, चाहे यानी कि कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, मतलब जितने भी तरह गाने हैं यानी कि कॉलेज वाले, स्कूल वाले, यानी कॉलेज वाले गाने की डिमांड करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए गाने को।

0: ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं वर्ड मस्ती विद आरजे वंशिका। अभी चल रही है खास वर्ड मस्ती जिसमें है एक मजेदार ट्विस्ट। तो जुड़े रहिए आरजे वंशिका के साथ और तैयार रहिए कुछ हटकर सुनने, सोचने और मस्ती करने के लिए, क्योंकि इस वर्ड मस्ती में हर शब्द के साथ छुपा है एक नया ट्विस्ट। आप भी इस वर्ड मस्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम से और बन सकती है इस मजेदार मस्ती का हिस्सा। तो अभी जुड़िए, अपनी बात रखिए और देखिए वर्ड मस्ती का ये ट्विस्ट आपको कहां तक ले जाता है। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से। अब बारी है राउंड टू की। इस राउंड में आपको दिया जाएगा एक बॉलीवुड मूवी का नाम। आपको करना बस इतना है, जैसे ही चैट रूम में मूवी का नाम आए, उस मूवी का कोई भी पसंदीदा गाना हमें सबसे पहले लिखकर चैट रूम में भेजना है। जो प्रतिभागी सबसे पहले सही गाना लिखकर भेजेंगे, उनकी फरमाइश का वही गाना प्ले किया जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि इस राउंड में देखना है कि आपको अपनी पसंदीदा फिल्मों के गाने कितनी जल्दी याद आते हैं। तो ध्यान रखिए रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम पर, क्योंकि राउंड टू अब शुरू होने वाला है।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे, और मैं हूँ आप सबका रेडियो दोस्त अमन, और मेरे साथ में है आरजे वंशिका जी। फिलहाल जो मेजोरिटी में गाना आया था दिल है कि मानता नहीं, मैं उसे प्ले कर रहा हूँ और इसके इसी के साथ स्टार्ट होता है राउंड टू,
2: नंबर टू।

0: फिलहाल यहाँ पे अब दिया जाए शब्द इन फिल्मों के नाम कि ताकि उस पे दोस्त गाने भेजे।
1: बिल्कुल, यानी कि आज की सेकंड राउंड की पहली मूवी का नाम है एक दूजे के लिए, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी।
0: एक दूजे के लिए, जी बहुत ही प्यारा प्यारा गाने हैं उसमें।
1: बिल्कुल,
0: इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल जवाब बता दीजिए कि किनका फर्स्ट है और कौन मेजोरिटी में है।
1: बिल्कुल फर्स्ट में आज इस बारे में पहुंचे हमारे पास संदीप सुतार जी, जो कि गान लेके आए हैं तेरे मेरे बीच में।
0: ओके
1: कैसा है ये बंधन अनजाना।
0: ओके
1: और इसी गाने में शामिल रहेंगे राय रमेश चौहान जी भी, और निकलस जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे, राहुल पासी जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना।
0: ओके
1: और अशोक कुमार जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे, और यानी कि बहुत सारे लिस्ट इस गाने में शामिल हैं, और यही मतलब मेजॉरिटी सॉन्ग भी है, इसके साथ में एक फर्स्ट सॉन्ग भी यही है।
0: ओके इसी को सुनाते हैं।

0: एक काम कीजिए, अगला फिल्म का नाम अभी दिया जाए।
1: ओके जी, तो अगली फिल्म का नाम है हीना। हीना मूवी का गाना आपसे भी लिखी हुई है, हीना 1991
0: वाली। बिल्कुल, जैसे कि मैं देर करता नहीं हो जाती है।

0: अपड़िया।
1: जैसे सब समझ गया।
2: बिल्कुल। फिलहाल जरा बता दीजिए कौन दोस्त हुए हैं विनर?
3: जी इस बार विनर बने हैं हमारे इट्स कुमार जी, विजेता बनी हैं इस बार क्योंकि राहुल पासी जी
2: पहले का हो चुके हैं। बात नहीं।
3: बिल्कुल। और इट्स कुमार जी विजेता बने हैं और ये गाना लिखा है खुश रंग हिना, जिस गाने में शामिल रहेंगे हमारे साथ में राहुल पासी जी भी, एम ताहिर जी भी, कायनात जी भी इसी गाने में शामिल है हमारे साथ में, और निशांत राय बोले जी भी, और ज्योति खटवटे जी भी, और अशोक कुमार जी भी, मतलब बहुत सारे लिस्नर्स।
2: यानी कि मेजॉरिटी वाला गाना भी यही है। ओके
3: बिल्कुल यही मजा। बिल्कुल
2: मैं हूँ खुश रंग हिना, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को। मैं हूँ खुश रंग हिना।
3: खुश रंग हिना।

0: और अफ्ताब आलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियो हॉट अटैक इन सबसे नीचे देखिए, ये दाहिने साइड में लिखा होगा मोर, आप मतलब वहाँ पे क्लिक करेंगे मोर पे तो लिखेगा, बीच में मिलेगा आपको लाइव चैट, वहाँ पे क्लिक करके लाइव चैट में आ सकते हैं और वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल अगला सवाल दिया जाए।
1: बिल्कुल, अगली मूवी का नाम ये रहा जो है विवाह 2006 वाली।
0: विवाह, ओके, बहुत प्यारे प्यारे गाने इसमें के सभी।

0: बता दीजिए विनर कौन हुआ इस बार भी?
1: बिल्कुल, इस बार विजेता बने हैं दोबारा से दूसरी बारी में संदीप सुतार जी, जो कि गाना लेके आए हैं मुझे हक है। और इसी गाने में शामिल हैं एम ताहिर जी भी और अशोक कुमार जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे और निशांत राय बोले जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे।
0: ओके।

0: बताइए कि इन विनर कौन हुए हैं?
1: बिल्कुल मेजोरिटी में और विनर के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास गाना पहुंचा है रोशनी कुमारी जी ने।
0: रोशनी कुमारी जी ओके
1: बिल्कुल। और इसी गाने में शामिल रहेंगे हमारे साथ ज्योति खटवटे जी, राहुल पासी जी और अजय भगत जी, एम ताहिर जी, उसके साथ में जाकिर खान जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे और निशांत राय बोले जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे, यानी कि सभी सभी लिसनर्स इसी गाने में शामिल हैं।
0: ओके, तो बिना देर के सुनवाते हैं गाने को।
1: एंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल अगला इन मूवी का नाम दे दीजिए जो सवाल के तहत।
1: बिल्कुल, अगली मूवी का नाम है सड़क 1991।
0: ओहो, कितने प्यारे प्यारे गाने इसमें।

0: दोनों फिलहाल बता दीजिए कि विनर कौन हुए हैं और किन का पहला मैसेज आया हुआ है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले हमारे पास में जो विजेता हुए हैं वो है एम ताहिर जी।
0: अच्छा।
1: जिन्होंने गाना लिख के भेजा है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है।
0: ओके, और मेजोरिटी में भी कुछ है?
1: बिल्कुल, मेजोरिटी में मेरे ख्याल से इसी गाने की मेजोरिटी, क्योंकि राहुल पासी जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे और संदीप सितार जी भी, अजय भगत जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे, ज्योति खटवटे जी भी इसी गाने में शामिल हैं। मतलब अराउंड लाइक बागेश निषाद जी भी।
0: बिना देर के सुनवाते हैं इस गाने।
1: इंजॉय कीजिए।

0: सके तो यहाँ सवाल कर दीजिए।
1: बिल्कुल, अगली मूवी का नाम है वीर ज़ारा 2004 वाली।
0: वीर ज़ारा, सभी गाने बेस्ट है, ओ माय गॉड।

और यहाँ पे लाइव चैट में एक मैसेज है यानी प्रीति रायदा जी का, कि वो कह रही है कि पहले मेरा यानी जवाब था, तो एक्चुअली क्या है कि आपका जवाब था बिल्कुल पहले, लेकिन गलत जवाब था आपने, वो यानी विजय पथ का गाना भेज दिया था, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जो बिल्कुल गलत जवाब था। और आपसे पूछा गया था फिल्म सड़क का गाना, और सड़क का गाना अभी जो प्ले हो रहा है वो है।

0: खाई।
1: बिल्कुल तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। फिलहाल बता दीजिए कि विनर कौन हुए हैं।
2: बिल्कुल विनर यहाँ पे हमारे सबसे पहले जाकिर खान जी हैं, जो कि गाना लेके आए हैं मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ।
1: अच्छा,
2: और इसी गीत में शामिल रहेंगे हमारे साथ में मतलब रोशन कुमारी जी भी इसी गाने में शामिल है, और इसी गाने में शामिल है हमारे साथ आफ्ताब आलम जी, और इसी गाने में हमारे साथ शामिल है कायनात जी भी, और इसके साथ में मतलब दो तीन रिश्ते और हैं जो कि इसी गाने में शामिल है मैं यहाँ हूँ।
1: फिलहाल इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: तो सवाल भी कर दीजिए यहाँ।
1: बिल्कुल, अगला सवाल यानी अगला मूवी का नाम है दामिनी। दामिनी मूवी से गाने लिख के हमें भेजिए हमारे लाइव चैट रूम के अंदर।
0: अच्छे अच्छे गाने जी, बिल्कुल।

0: वैसे विनर बता दीजिए यहाँ।
1: बिल्कुल विनर बने हैं अब सुन गौतम जी, तीसरी बार विजेता बनने के लिए इनको बधाइयाँ।
0: अच्छा ओके, बहुत बहुत बधाई हो भाई सोनू गौतम जी, आगे बताइए। मत
1: बिल्कुल में जी वैसे गाना लिखा है बिन साजन झूला झूलू, और इसी गाने में शामिल है हमारे साथ में कौन कौन बता देती हूँ, आफ्ताब आलम जी इसी गाने में शामिल रहेंगे, इसके साथ साथ पूजा भास्कर जी भी इसी गाने में शामिल है, और इट्स कुमार जी बिना रस्सी झूला झूलू कर रहे हैं और सनी सुतार जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे, और अराउंड 5 लिस्टर्स इसी गाने में शामिल।
0: एंजॉय कीजिए इस गाने को। और यही अगला यानी के सवाल भी पूछ लीजिए, अगली फिल्म का नाम।
1: बिल्कुल अगली मूवी का नाम है एक रिश्ता।
0: एक रिश्ता, वाह क्या बात है, सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं।

0: और इन विनर कौन है ये भी बता दीजिए पहले, फिर बताता हूँ मैं। मेजोरिटी में एक ही गाना है, एक दिल है, लेकिन विनर में वाला कौन सा गाना है?
1: जी विनर अगर हम माने तो सबसे पहले इसे दीपक कुमार गायकवाड़ जी ने लिख के भेजा सबसे ऊपर।
0: अच्छा,
1: मतलब मेरे भेजने से पहले ही भेज दिया उन्होंने।
0: अच्छा ओके,
1: क्योंकि इंटरनेट इशू के चलते
0: इंटरनेट इशू के चलते आपका मैसेज यानी देर से गया है, यानी दीपक कुमार गायकवाड़ ही यानी विनर हुए। ओके, नहीं उससे पहले भी है एम ताहिर जी का दिल लगाने की सजा, आप ऊपर देखिए।
1: अच्छा अच्छा जी, मतलब एम ताहिर जी विजेता बने हैं।
0: जी जी, एम ताहिर जी के हैं दिल लगाने की सजा तो ना दोगे, उसके बाद से है मतलब
1: उसके बाद मेजॉरिटी वाले गाने
0: रोशनी कुमार जी का है, तब दीपक कुमार जी का है, लेकिन यानी कि दिल लगाने की सजा तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ एक दिल है, ये ही दोनों गाने प्ले होने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और एम ताहिर जी के गाने में शामिल रहेंगे हमारे साथ में ज्योति खटवटे जी भी शामिल रहेंगे इसी गीत में, और इत कुमार जी भी इसी गीत में शामिल रहेंगे, दिल लगाने की सजा तो ना दोगे।

फिलहाल अगला गाना मैं प्ले करता हूँ, जैसे कि दिल लगाने की सजा तो ना दोगे। एम ताहिर जी विनर बने हैं, उनको बधाई करते हुए, और जितने भी दोस्त इसमें शामिल है सभी को। इसके बाद जो मेजोरिटी वाला गाना है एक दिल है, उस इस गाने के बाद मैं प्ले करने वाला हूँ। इंजॉय द ट्रैक।

0: की बात पर एक दिल है, एंजॉय द ट्रैक। हाँ बिल्कुल गाइएगा, लेकिन फिलहाल गाना
1: तुझे हो चुका है।
2: इसके बाद

0: एक दिल है, एक दिल है, एक दिल है तो।
1: आवाज का वैसे तो बिन बजाए बास हो चुका है।
2: कोई बात नहीं, चलिए अच्छा गया, फिलहाल सवाल कर लीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल, मूवी का नाम है बेवफा 2005 वाली।
2: बेवफा, अच्छा सभी गाने बहुत अच्छे हैं, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: विनर कौन हुआ है और एम ताहिर जी का कितना हो चुका है मेरे ख्याल से बताइएगा।
1: जी एम ताहिर जी का मतलब दो बार हो चुका है
0: और ये लेकर इनका कितना है,
1: ये लेकर तीसरा है, मतलब दो बार पहले हो चुका है ये लेकर तीसरा है,
0: यानी कि ये भी विनर बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो एम ताहिर जी आपको भी। और कौन कौन से दोस्त शामिल हो रहे हैं
1: और इसके साथ साथ में यहाँ पे एम ताहिर जी का जो गाना है एक दिलरुबा है, इसी गाने में शामिल रहेंगे हमारे साथ में जाकिर खान जी, सोनू गौतम जी, निशांत राय बोले जी, अजय भगत जी नहीं प्रीति रायदास जी इसी और, गाने में शामिल रहेंगे।
0: और क्या बोलते हैं इसमें एक आफ्ताब आलम जी भी है ना।
1: जी आफ्ताब आलम जी भी है और संदीप सितार जी भी इसी गाने में शामिल रहेंगे।
0: फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: फिलहाल यहाँ सवाल भी है।
1: बिल्कुल, अगली मूवी का नाम है कौन है जो सपनों में आया।
0: कौन है जो सपनों में आया, बिल्कुल दुपट्टा सरक रहा है भाई। सरकाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे।

0: विनर बता दीजिए कौन है।
1: बिल्कुल, देख लेते हैं विनर कौन है। और सबसे पहले हमारे पास में गाना भेजने वाले हैं जाकिर खान जी, जिन्होंने कौन है जो सपनों में मूवी का टाइटल सॉन्ग हमें भेजा है।
0: अच्छा ओके, फिलहाल सुनाएंगे उनके गाने को। और भी इन दोस्त हैं।
1: बिल्कुल, और भी दोस्त हैं जिसके टाइटल सॉन्ग में शामिल रहेंगे हमारे साथ में आफ्ताब आलम जी। और इसके अलावा हमारे पास में एक गाना है जो कि दुपट्टा सरक रहा है, जो कि यहाँ पे मतलब मेजोरिटी मुझे दिख रहा है, मतलब दो तीन लिसनर्स ने भेजा है इस गाने को।
0: तो कोशिश करूंगा इसको भी प्ले करने के लिए। फिलहाल ये गाना

0: और आरजे वंशिका जी, मैं सोच रहा हूँ कि आज जो भी लोग इन विनर बने हुए हैं, मैं उन सबको स्पेशल कॉल किया जाए, उनकी पसंद के गाना सुनाया जाए, क्या क्या ख्याल?
1: बिल्कुल, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर हमारी लिस्ट से हमारी बातचीत हो रही है तो।
0: अच्छी बात है, तो फिलहाल गाना।

0: यहाँ पे दिल धड़काते हुए अगला सवाल भी पूछ लीजिए।
1: बिल्कुल, अगली मूवी का नाम है साजन 1991 वाली।
0: साजन 1991, सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं उसमें। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: तो विनर कौन कौन है बता दीजिए प्लीज।
1: बिल्कुल, इस बार विनर बने हैं संदीप सुतार जी, यानी कि संदीप सुतार जी 3 बार विजेता बन गए हैं, स्पेशल okay. विनर में नाम आ गया है इनका।
0: ओके okay, इनका भी संदीप जी का ओके okay, ठीक है, अच्छी बात है।
1: और इसके बाद इसी गाने में शामिल रहेंगे ज्योति खटवटे जी हैं, और इसी गाने में रोशनी कुमारी जी भी शामिल रहेंगे, देखा है पहली बार, निशांत राय बोले जी भी इसी गाने में है, रमेश चौहान जी भी इसी गाने में है, और निकलस जी भी इसी गाने में शामिल है।
0: ओके तो ये था आज का आखिरी सवाल, और इसके बाद से यानी कि पांचों में दोस्तों को अभी कॉल लगाने वाला हूँ, मैं सभी को व्हाट्सएप कॉल करूंगा, यानी कि सोनू गौतम जी को, राहुल पासी जी को, एम ताहिर जी को, और यानी कि सुनील कुमार जी को, और यहाँ पे संदीप सुतार जी को। तो प्लीज आप लोग कॉल जरूर रिसीव करेंगे, व्हाट्सएप कॉल।

0: इसी बात पर ये गाना जो यहाँ पे गाना है देखा है, पहली बार सुनवाते हैं। और इसके बाद से मैं कॉल लगाऊंगा, और सबसे पहले मैं लगाऊंगा सोनू गौतम जी को कॉल, उसके बाद से राहुल पासी जी को, उसके बाद एम ताहिर जी को, उसके बाद इन सुनील कुमार जी को और संदीप सुतार जी को।
1: इंद्रा किसी ने क्या है?

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं वर्ड मस्ती विद आरजे वंशिका। अभी चल रही है खास वर्ड मस्ती जिसमें है एक मजेदार ट्विस्ट। तो जुड़े रहिए आरजे वंशिका के साथ और तैयार रहिए कुछ हटकर सुनने, सोचने और मस्ती करने के लिए, क्योंकि इस वर्ड मस्ती में हर शब्द के साथ छुपा है एक नया ट्विस्ट। आप भी इस वर्ड मस्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी रेडियो हॉटस्टार की चैट रूम से और बन सकती हैं इस मजेदार मस्ती का हिस्सा। तो अभी जुड़िए, अपनी बात रखिए और देखिए वर्ड मस्ती का ये ट्विस्ट आपको कहां तक ले जाता है। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके, वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और प्रोग्राम चल रहा था वर्ड मस्ती, आरजे वंशिका जी और मेरे साथ, मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त अमन। और फाइनली प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और आरजे वंशिका जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे यानी शब्द लेकर आई और साथ साथ फिल्मों का नाम, माई गॉड, सभी मेरे फेवरेट फिल्मों में से एक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
2: वेलकम जी। एंड आज आप कार्यक्रम में जुड़े ना, तो कार्यक्रम में चार चांद नहीं, मतलब चार ही चांद लगे, मैं तो हमेशा कहती हूँ। आप आते हैं तो बाहर लेके आते हैं।
1: तो फिलहाल चलिए अब यानी कि कॉल लगाते हैं सबसे पहले सोनू गौतम जी को, उनसे बातें करते हैं और उनके पसंद के एक और गाने सुनेंगे, है कि नहीं?
2: बिल्कुल।
3: हेलो
1: जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और कैसे हैं?
3: बहुत अच्छे हैं सर, आप अपने बताएं।
1: अरे हम तो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक गारंटी के साथ।
3: हाँ सर, प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है आपका सर।
1: थैंक यू सो मच।
3: और बहुत अच्छा लगा, और आपने मतलब बोला था कि तीन बार से ज्यादा गाने नहीं सुनवाएंगे, पर उससे भी बढ़िया ये कर दिया कि आप जो है विनर को कॉल लगा रहे हो जी, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। तो हम लोग हमेशा यानी कुछ ना कुछ चाहते हैं आप लोग के लिए कुछ स्पेशल करना, है कि नहीं? आप विनर बने हैं भाई।
3: हाँ सर,
1: आपको उसके लिए हक उसका मिलना चाहिए ना, है कि नहीं?
3: हाँ ये तो है सर।
1: तो इसके लिए हम आप लोग के लिए बिल्कुल यानी के आप ही लोग के बारे में सोचते हैं कि भाई आप लोग के लिए यानी कि कैसे अच्छा से अच्छा किया जा सके, ताकि आप लोग भी नाराज ना हो, हमेशा खुश रहे।
3: हाँ सर, बहुत अच्छा किया आपने, ये तो बहुत अच्छा किया।
1: तो बताइए आज क्या सुनना पसंद कर? और हाँ, आरजे वंशिका जी से भी बात कर लीजिए।
3: जी
2: जी, नमस्ते सर गौतम जी, कैसे हैं आप?
3: नमस्ते, अच्छे हैं, आप अपने बताएं कैसे हालचाल है आपके?
2: जी हम तो बिल्कुल चकाचक हैं, फिट एंड फाइन हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप सभी की प्यारे प्यारे गाने देख रहे हैं और चैट रूम में जो आप सभी यहाँ पे मजे कर रहे हैं ना, उसको देख देख के हम भी इंजॉय कर रहे हैं।
3: हाँ तो अच्छी बात है, एंजॉय करते रहिए। और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था आज का।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू लगा भी है। तो आप बता दीजिए गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
3: आज गाना मेरे को सुनवा देना, ओढ़नी के रंग पियर।
1: आए हाय हाय हाय, ओढ़नी के रंग पियर, वो तो हमारा फेवरेट गाना में से
3: है। जी नारायण जी की आवाज मेरे को इतनी भाती है ना, तो वो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है उनकी आवाज।
1: बिल्कुल, ये गाना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: थैंक
1: यू। और कोई फीडबैक देना चाहेंगे?
3: जी नहीं, फीडबैक देना चाहूंगा, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और ऐसे ही करते रहिए दोनों लोग। तो दोनों लोग जब करते हैं तो चार चांद लग जाते हैं, बल्कि आठ चांद।
1: एक्चुअली मैं जब जब फ्री रहूंगा तब तब आऊंगा, और वैसे इस बार मेरा कोई इरादा नहीं था आने का, बस मैं फ्री था तो बस आ गया, है ना?
3: हाँ, पिछले हफ्ते आप बोल रहे थे कि अगले हफ्ते मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, पर टाइम मिला, फिर आप आए, इसके लिए बहुत अच्छा किया आपने।
1: थैंक यू सो मच। आप लोग को अच्छा लगता है, बस यही जानकर मुझे भी खुशी मिलती है, मुझे भी अच्छा लगता है।
3: नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है, आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं।
1: धन्यवाद। और सबसे आजकल गर्दा उड़ा रही है आरजे आकांक्षा जी, मजा आ रहा है उनके प्रोग्राम को सुनने में।
3: हाँ, उनके प्रोग्राम में भी मजा आ रहा है, मैं अब जुड़ता हूँ, पहले नहीं जुड़ता था, अब जुड़ने लगा हूँ अब।
1: चलिए धन्यवाद, ऐसे ही जुड़ते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो
3: दीवाना बना दिया सर।
1: और नेक्स्ट कॉल होगा राहुल पासी जी को।

0: राहुल पासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर जी।
0: और क्या कर रहे हैं भाई?
1: हाँ जी, हम तो काम करते हैं ना।
0: तो आप हिंदू अपने काम के बारे में बताइए, आप कौन सा काम करते हैं?
1: हम लकड़ी का काम करते हैं। बोझगा
0: जी,
1: लकड़ी का काम, फर्नीचर का।
0: अच्छा, फर्नीचर वाला काम करते हैं। ओके, ठीक है। अब आरजे वंशिका जी से भी बात कर लीजिए।
2: जी राहुल पासी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: हेलो
2: हेलो, राहुल पासी जी।
1: नमस्कार वंशिका जी।
2: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया।
2: आवाज आ रही है आपको मेरी?
0: जी बिल्कुल। तो आज अपनी क्या सुनना पसंद करेंगे राहुल पासी जी?
1: मेरे को सॉन्ग सुनाना जी, आप जुनून मूवी का, जो प्यार कर गए थे वो लोग कुछ और थे।
0: जो प्यार कर गए वो लोग और थे। अच्छा,
1: हाँ जी।
0: तो इसका मतलब आपने भी प्यार किया हुआ है?
1: नहीं, ये सॉन्ग मेरे को बहुत बढ़िया लगा।
0: वो तो मुझे पता।

और मैं बता दूं कि वो लोग थे लैला और मजनू, हीर रांझा, श्री प्रहलाद, रोमियो और जूलियट वगैरह वगैरह, है ना। और उसमें से एक और एक मैं हूँ और एक मेरी वो सुंदरता की मुरा जी यानी खुशी जी है।

और संदीप सुतार जी का मैसेज आया हुआ है कि अभी मैं मतलब फोन रिसीव नहीं कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, आप अपने गाने लिख कर भेज दीजिए, मैं गाने प्ले कर दूंगा।

0: आमना खान जी अभी अभी दिखाई दे रहे हैं मुझे इनिक लाइव चैट में। बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम अस्सलाम। और कहाँ थी अभी दिखाई दे रही है, बिल्कुल
1: बहुत देर बाद से आई है। आमना जी बहुत स्वागत है आपका।
0: फिलहाल मैं अगला यूनिक कॉल लगाता हूँ, किन को? एम ताहिर साहब को।
1: जी बिल्कुल।
2: हेलो
0: हेलो, बहुत बहुत वेलकम है। हेलो
2: खुशाम दीद सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, और कैसे हैं एम ताहिर साहब?
2: बस सर अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए सर, आप कैसे हो?
0: बस आपकी दुआओं जैसी, आपकी दुआओं में, आप जैसा दुआ
2: बस सर ये तो
0: मैं वैसा हूँ।
2: बस सर ये तो ऊपर वाला कर्म से बेहतरीन और लाजवाब होने चाहिए, क्योंकि हमेशा दुआओं में आप शामिल रहते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
2: जी सर,
0: आपको बहुत बहुत बधाई हो आज की विनर बनने के लिए।
2: शुक्रिया सर।
0: तो बताइए आप एक मिनट, सबसे पहले आरजे वंशिका जी से बात कीजिए, फिर अपनी पसंद
2: जी बात कराइए। वंशिका जी सर
1: जी, एम ताहिर
2: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
2: मैम आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है प्लीज।
1: जी एम ताहिर जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।
2: बस

0: स्वयं बढ़िया है, आपकी नजर इनायत है। आप सुनाइए, आप कैसी हो?
1: जी मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आप सभी से बातचीत करके तो और ज्यादा अच्छी हो जाती हूँ। जी
0: क्या बात है, क्या अंदाज है सर। एक बात कहनी पड़ेगी,
2: जी बोलिए।
0: आप दोनों की जब से जुगलबंदी इस शो में एक साथ हुई है ना, तो शो का एक अलग ही मजा आ गया, क्योंकि इसमें आपकी जो आपकी आवाज है ना, वो अपने काम करती है जादू भरने का, और आपका जो शानदार और खुशनुमा बेबाक दिल को खुश करने वाला अंदाज है, वो सीधा दिल पर वार करता है सर।
2: हाय क्या कह दिया आपने, वो दिल पर यानी के वो नहीं चला दिया आपने।
0: नहीं सर, यकीन ना आए तो सर खुशी जी से मालूम कर लेना जाकर।
2: फिलहाल ये बताइए, आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
0: आज सर मैं एक भोजपुरी गाना सुनना चाहता हूँ,
2: बिल्कुल बताइए,
0: क्योंकि ये किसकी पसंद है सर।
2: हाँ बता दीजिए।
0: हरी हरी ओढ़नी तोहार छूटल।
2: अच्छा
0: ये पवन सिंह और जी सर।
2: हरी हरी ओढ़नी सुनना है पवन सिंह वाला। जी बिल्कुल सुनवाएंगे, एकदम क्यों नहीं सुनवाएंगे।
0: अनुपमा यादव जी की जी सर। हाँ, अगर हो सके तो आप ये सुनवा दीजिए।
2: सुनवा देंगे, नेकी और पूछ पूछी तो मेरा फेवरेट गानों में से एक है।
0: अच्छा अरे सर आपका पसंदीदा है तो फिर बात ही क्या है, एक अलग ही माहौल बन पड़ेगा। आपकी पसंद और हमसे मिल जाए, वल्लाह क्या बात है, क्या अंदाज है।
2: थैंक यू सो मच। तो सुनवाते हैं आपके पसंद का गाना।
0: सर जी ये गाना डेडिकेट कायनात जी के लिए सबसे पहले, और सर सोनू गौतम जी के लिए, प्रिंस पासवान जी के लिए, सुनील कुमार जी बाके बिहार वालों के लिए, और सर सतीश शर्मा जी के लिए, और सर सबसे पहले तो मेरी जानिब से आपको तो ये पसंद है, और वंशिका जी को।
2: थैंक यू सो मच। और कोई फीडबैक देना चाहेंगे?
0: नहीं सर, सर फीडबैक आप जो कर रहे हैं वो अपने आप में बेमिसाल है, लाजवाब है। लेकिन सर आपने जो ये इसमें ये जोड़ा है ना कॉलिंग वाला, कि विनर को जो आप कॉल कर रहे हैं, इससे सर दिल पे बहुत खुशी हासिल हो रही है। यही बात सोनू गौतम जी ने कही है।
2: थैंक यू सो मच।
0: क्योंकि आपका जो सहज मिठास के साथ में हमारी बात हो रही है ना, उसके लिए सर कोई अल्फाज नहीं है।
2: लेकिन सर जो
0: सिर्फ उसके लिए यही है
2: ना, ओ माय गॉड, वो तो भाई पता ना आप कहां से चुन कर लाते हैं, मतलब या नीचे कायनात के वो किस वो कोने से चुन कर लाते हैं, मेरे समझ से बाहर है।
0: नहीं सर ये तो आपकी जर्रा नवाजी है सर।
2: फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके
0: बात करके सर। हैव अ नाइस सर, बाय बाय।
1: जी थैंक यू सर सो मच। अरे ओढ़नी ओढ़नी
3: आहा, अरे ओढ़नी ओढ़नी, अरे अरे कहां से आवत रहो, आ होई दागी कोई सर बा, अरे अरे थोड़ा सर धर।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और अगला कॉल मैं करने वाला हूँ हमारे यानी कि सुनील कुमार जी को, बांका बिहार वाले,
1: बाद में बताऊंगी।
2: और एम ताहिर जी ने बातचीत कही ना कि आप आए कार्यक्रम में चार चांद लगे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
0: थैंक यू सो मच उनके लिए भी। और फिलहाल
2: और उन्होंने मुझे डेडिकेट किया था इसलिए उनको भी शुक्रिया,
0: धन्यवाद। सुनील कुमार जी बांका बिहार जी को कॉल लगाया जाता है।
2: बिल्कुल, मुझे भोजपुरी गाने थोड़े कम समझ आते हैं पर उनकी जो ट्यूनिंग होती है काफी प्यारी रहती है। और गाते हैं बहुत अच्छे हैं आर्यमन जी।
0: बहुत बहुत आपका वेलकम है सुनील कुमार जी, बांका बिहार वाले, कैसे हैं?
3: जी जी बहुत अच्छे। अमन सर और वंशिका जी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम।
2: गुड आफ्टरनून,
0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और बताइए भाई सुनील कुमार जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के विनर बनने के लिए।
3: जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सर।
0: तो आज आप इन्हें क्या सुनना पसंद करें? पहले काम कीजिए, इनसे बात कर लीजिए, अर्जुन वंशिका जी भी, वो आपसे बात करने के लिए दम यानी कि तड़प रही हैं, बेचैन हो रही हैं कि पहले हम बात करेंगे।
3: जी जी
2: सुनील कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: जी आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है वंशिका जी?
2: जी हाँ तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, आप सभी की दुआएं हैं जो मतलब खड़ी हो चुकी, मतलब पहले तो बहुत तबीयत ऐसी ऊपर नीचे हो रही थी ना मेरी।
3: जी जी तो अच्छा ही होना चाहिए और मैं होप कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी स्वस्थ होके और अच्छी तरह अपना परफॉर्मेंस करें रेडियो हॉटस्टार पे।
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। तो आज इन क्या सुनना पसंद करेंगे सुनील कुमार जी?
3: जी जी हम आज सुनना पसंद करेंगे एक भोजपुरी गाना है, काशी हिले पटना हिले, रितेश पांडे और अंतरा सिंह की आवाजों में। अच्छा, पहली बात तो आप हाँ काशी हिले पटना हिले,
0: तो ये तो
3: हाँ ये अंतरा सिंह
0: ढूंढना पड़ेगा। हाँ
3: ये रितेश पांडे और अंतरा सिंह की आवाजों में है ये।
0: अच्छा अच्छा, तो
3: हाँ जी आप दोनों को का बहुत शुक्रिया है जो कि आज से ये अच्छा आप दोनों ने जो नया एपिसोड जोड़ा है कॉलिंग का, ये बहुत ही अच्छा, जैसे कि अभी एमडी ताहिर साहब ने बोला और सोनू गौतम ने, तो अच्छा बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है जो कि हाँ ये प्रोग्राम में और भी माने मनमोहक वाला काम करेगी।
0: अच्छा अच्छा,
3: तो मेरा कुल मिला के ये था कि अमन भैया दिल की बात जुआ पे आई गई।
0: हाँ हाँ जी जी बोलिए बोलिए बोलिए,
3: समझ गए ना आप? दिल की बात जुआ पे आई गई।
0: दिल की बात जुआ पे आई गई, मैं भला मेरे समझ से तो बाहर है बिल्कुल।
3: मैं नहीं वंशिका जी बता देंगे आपको।
0: अच्छा कोई बात नहीं, कोई
2: अच्छा
0: बात
2: जी एम ताहिर जी की बात करेंगे हम।
0: अच्छा जी ओ अच्छा ओहो, यानी कि कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना आपका, ओहो क्या बात।
3: जी जी जी जी
0: अच्छा, कोई बात नहीं होता है होता है। तो आप यानी कि
2: समझी तो मैं भी नहीं हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं,
0: यानी कि अपना वो कोई भी मतलब मौका छोड़ते नहीं है, है ना?
3: नहीं नहीं देखिए ये आपका आपका एंटरटेनमेंट जो ना आप करते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें हम भी प्लस कर देते हैं ताकि सभी को अच्छा लगे, बुरा ना लगे।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। फिलहाल आपके गाने को प्ले कर दूं?
3: जी जी धन्यवाद सर,
0: एंजॉय कीजिए
1: सारे गाने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और सच में मतलब इन्होंने तो मतलब यानी कि पूरा चीजें घुमा दिया है।
1: बिल्कुल गाना मतलब भोजपुरी गाने से बिल्कुल माहौल बना दिया इन्होंने।
0: बिल्कुल माहौल बना दिया है। और अब आखिरी जो गाना मैं इन्हें प्ले करके जा रहा हूँ, हमारे संदीप सुतार जी का है वो गाना। और तो आप भी इजाज़त ले लीजिए हमें दोस्तों से, क्योंकि अब तो आपको भी निकलने का समय हो रहा है ना।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज सभी लिसनर्स ने प्यार प्यार गाने भेजे और सभी से बातचीत जो हुई मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे डेडिकेट किया सभी ने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। एंड आजय अमन जी, आप आज कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं ना?
0: ओके।
1: एंड आजय अमन जी, आज आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो कार्यक्रम में और ज्यादा चार चांद लगे हैं और बहुत खूबसूरत हुआ कार्यक्रम। आप आते हैं तो बाहर आती है।
0: तो फिलहाल अब मैं यानी कि संदीप सुता जी गाना प्ले करके जा रहा हूँ, इसी गाने के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। और हाँ, अभी से आप गाने की डिमांड यानी कर सकते हैं, यानी कॉलेज और स्कूल वाले गाने अभी के लिए यहाँ पर लाइन खोली जा रही है आपको आरजे अमन जी की, और आप भेज सकते हैं अपने गाने की डिमांड। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं 6:30 या 6 बजे के आसपास। धन्यवाद।
1: और मैं कल मिलूंगी सुबह को आप सभी को मतलब 1:30 बॉलीवुड चॉइस के साथ में। और बिल्कुल, तो ध्यान रखिए अपना और

listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं. रेडियो गाना बजाते रहो दिल से. You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना?
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहाँ कहाँ थे, हम कहाँ ठहरा करने को कहा गया गया?
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई मगर रात को ये धंधा
0: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
2: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

साथ में अपनी भी नहीं घरवाली की जय।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूडी चॉइस आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम एंड मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार मूडी चॉइस। यस मूडी चॉइस में आप एक से बढ़कर गाने सुन सकते हैं लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है यानी कॉलेज एंड स्कूल वाले गाने। लेकिन भाई यानी कॉलेज एंड स्कूल के साथ साथ आप जानते हैं कि उसमें यानी कि किताबें भी आती हैं और कलम भी आता है और यानी कि कागज भी आता है ना। फिलहाल इन शब्दों पर भी गाने भेज सकते हैं, बिल्कुल अभी भेज सकते हैं हमारे रेडियो हॉटस्टार के सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। फिलहाल मेरे पसंद के तब तक गाने जाए कि जे आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, और आज के सभी गाने से बढ़कर एक आए हुए हैं, तो सभी का वेलकम करते हैं। और सभी कौन कौन दोस्त जुड़े हुए हैं उनका भी वेलकम करते हैं। आज सबसे पहले जुड़ी है यहाँ पे खुशबू जी, बहुत बहुत वेलकम है खुशबू आपका। और जुड़ने वाले दोस्तों में मैं बता दूं कि निशांत राय बोले जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, और आत्माराम पाटिल जी हैं, वेलकम करते हैं आत्माराम पाटिल जी। और काजल झक्का जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी काजल झक्का जी। ज्योति खटवड़ी जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। सर्वेश भगत जी, आपका भी वेलकम है। और विष्णु चंद्र जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं विष्णु चंद्र जी आपका भी। सर्वजीत सेठी जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी सर्वजीत सेठी जी। और गोविंदा खंडारते जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। बागेश्वर निषाद जी हैं गोरखपुर से, आपका भी वेलकम करते हैं। और जुड़ने वाले दोस्तों में हैं शामिल मंगेश देशमुख जी, रणवीर सिंह जेठालाल जी हैं, बहुत बहुत वेलकम है। दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और सुनील कुमार जी हैं बांका बिहार वाले, क्या कहते हैं भाई, सुन लेते हैं पहले।
1: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार प्रणाम, और जुड़ गया हूँ मैं आपके प्रोग्राम से। और लाजवाब सॉन्ग हाय हाय हाय, ये प्यार हुआ, दिल से धन्यवाद है।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और इस्माइल खान जी जुड़ चुके हैं आपका भी, वेलकम है। ओके, तो फिलहाल अब मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ, और सबसे पहला जो डिमांड मेरे पास है वो है हमारे सुनील कुमार बांका बिहार वाले का, और साथ ही साथ यानी प्रियंका जी का भी है ये गाना। और प्रियंका जी के साथ साथ और भी दोस्त हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे निशांत राय बोले जी भी इसी गाने में शामिल हो रहे हैं। और निशांत राय बोले जी के साथ साथ में और भी शायद इसमें मतलब दोस्त हैं, मैं उनका नाम लूंगा। फिलहाल इस ऑडियो को सुनते हैं।
1: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। तो आज की मूडी चॉइस में मेरी पसंद रहेगी, फिल्म का नाम है फूल और कांटे, और गाने के बोल हैं कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है। ये गाना पहले तो आपको डेडिकेट है, वंशिका जी को, आकांक्षा जी को, रत्ना जी को, सोनी जी को, और सोनू गौतम जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं, परवेज अहमद जी हैं, मुक्तिनाथ जी हैं, सतीश शर्मा जी, अरुण मंडल जी, नेकलस जी, एम ताहिर जी, और रणवीर सिंह जेठालाल जी, और इनके साथ साथ रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट रहेगा, धन्यवाद
0: जी। वेलकम है आपका। और इसी गाने में जैसे कि मैंने कहा था कि यानी प्रियंका जी भी शामिल है, क्योंकि यानी कि कोई जन्नत का वो हूर नहीं, उनके ऑफिस का कोई यानी लड़का है, तो वो भी इस गाने को सुनना चाहती हैं। और साथ ही साथ इसी गाने में और भी दोस्त हैं, जैसे कि निशांत राय बोले जी का मैंने नाम लिया था, निशांत राय बोले जी के साथ साथ अब पता नहीं और कौन कौन से दोस्त इसमें शामिल हैं, वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा। फिलहाल आप गाने को एंजॉय कीजिए, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, और कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है। तो एंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, और कोई जन्नत की वो हूर नहीं है, मेरे कॉलेज की एक लड़की है, और यानी प्रियंका जी को देखने वाला वो कोई उनके ऑफिस का कोई लड़का है जी। बिल्कुल, फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और सबसे पहले तो इस्माइल खान जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इस्माइल खान जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और हमारे राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राजेश कुमार जी, ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: आरजे अमान सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। सुनील कुमार जी अपने गाने में शामिल किए हैं, और भी भाई बहुत है, चार पांच है, कितने हैं
0: जी, जी, जी।
1: सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और जुड़ने वाले दोस्तों में है यहाँ पे सरिता सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और ये पटना से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सरिता सिन्हा जी आपका भी। और यानी प्रीति रायदास जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। ये यानी कि प्रीति रायदास जी डिस्ट्रिक्ट सिवान से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को भी गुड इवनिंग कह रही है। और जुड़ने वाले दोस्तों में यानी कि विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि अजय देवगन का गाना मुझे बहुत ही मस्त लगा है, मजा आ गया सुन के। और रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि ये कोई जन्नत की वो हूर नहीं, कॉलेज की लड़की है, गाना सच में बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जाकिर खान जी लिखते हैं कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और फिलहाल यहाँ पे अशोक पाल जी लिखते हैं कि हेलो अमन सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ उत्तर प्रदेश लखनऊ से। अच्छा, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, ओके जी। और लिखते हैं कि ओके कोई बात नहीं, फिलहाल बहुत लंबा मैसेज है, मैं उतना भी नहीं, क्योंकि मुझे वेलकम करना है इसीलिए, सॉरी। अशोक कुमार जी पटना से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी अशोक कुमार जी। आरिफ सिद्धि जी जुड़ चुके हैं गांधीनगर गुजरात से, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। लिखते हैं कि मेरी जी डिमांड बहुत ही शानदार लगी। एम ताहिर साहब जी जुड़े हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि अमन खान साहब जी आपके कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तहे दिल से आदाब नमस्कार। और सुनील कुमार बांके बिहार जी के पसंद, बहुत ही दिल को तेज रफ्तार करने वाले, धड़कन बढ़ाने वाले गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। सुनील कुमार क्या कहते हैं, इनकी भी सुनते हैं।
2: जिसे देख मेरा दिल धड़का,
0: अच्छा,
2: मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। अमन भैया नमस्कार, आपने मेरी पसंद का, और इसमें मैं अकेला ही नहीं, कई दोस्त शामिल हो गए इस गाने में, तो सभी दोस्तों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से,
0: वेलकम जी आपका भी। और अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि ओके ठीक है, तो आप उधर भेज दीजिए, कोई बात नहीं है। निशांत है, बोलते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और अशोक कुमार इन पटना से लिखते हैं कि फूल और कांटे का गाना शानदार लगा है, धन्यवाद देते हैं, मजा आ गया सुनने। नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूं, दो दोस्तों का डिमांड है, आमना खान जी और डिम्पी जी का, सुनना चाहते हैं ये दोनों खुद को क्या समझती है, इतना यह करती है सच में क्या, तो इंजॉय कीजिए खुद को क्या समझ

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक्स भी आ चुके हैं। शिल्पा बहन जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि फूल और कांटे गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, सुनते हैं।
1: अमन जी, ऑफिस का कोई भी ऐसा लड़का नहीं
0: है। मुझे पता है कि आपका फीडबैक जरूर आएगा। वैसे मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि दोनों सॉन्ग सुपरहिट लाजवाब लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपकी आवाज़ को क्या हो गया है जी, ये प्रियंका जी आवाज़ में तो लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है एकदम, मैंने गला सा बैठ सा गया हुआ है, लगता है आवाज़ ही नहीं है आपके मुँह में, वैसा फील हो रहा है। ये फीडबैक
2: जी अमन सर जी, अमना खान जी और डिम्पी जी अपने दोनों बहन अपने गाने में शामिल किए हैं, दोनों बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका। और अगला जो यहाँ पे फीडबैक है, जितेंद्र जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों का मिले जुले डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका पीकू राय जी। खुद को क्या समझते हैं, गाना इनको अच्छा लगा है और ये फीडबैक सुनते हैं।
3: अमन खान जी
0: जी,
3: बैक टू बैक दोनों सॉन्ग बहुत ही अप्रतिम, सुनने को मजा आया, शुक्रिया। मैं आत्माराम पाटिल। ओके
0: जी, वेलकम है आपका आत्माराम पाटिल जी। और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। और लिखते हैं कि मैं भी प्रोग्राम से जुड़ चुका हूँ, वेलकम करते हैं। रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि खुद को क्या समझती है, गाना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है जी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गुड सॉन्ग है। अच्छा जी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है यानी प्रीति राय दास जी का। प्रीति राय दास जी के साथ साथ इसमें और भी दोस्त शामिल हो रहे हैं, जैसे कि आरिफ सिंधी जी भी शायद इसमें शामिल है, और भी दोस्त है, धनेश कुमार मिश्रा जी भी शामिल हो रहे हैं। तो आरिफ सिंधी जी का मैं ऑडियो सुनाता हूँ आपको, ये क्या कहते हैं आरिफ सिंधी जी, कहाँ हैं? हाँ, ये रहे।
4: अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
4: मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
0: जी वेलकम है आपका।
4: आज के गाने के बोल रहेंगे, ए मेरी कॉलेज की नटखटी लड़की है, फिल्म का नाम है दिल आशिकाना है, आवाज़ें दी है उदित नारायण जी ने, डेडिकेट रहेगा अमन सर जी आपको।
0: थैंक यू सो मच।
4: आपकी सुंदरता की मूरत जी को,
0: थैंक यू सो मच उनके लिए स्पेशली दिल से।
4: आरजे वंशिका जी को, आरजे आकांक्षा जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे आदित्य जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।
0: और इसी गाने में जैसे कि हमारे धनेश मिश्रा भी शामिल हो रहे हैं, धनेश कुमार मिश्रा जी। ओके जी, ये दिल्ली से हैं, और भी देखते हैं कौन कौन से दोस्त इस गाने में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल आप लोग गाने का एंजॉय कीजिए, ए मेरी कॉलेज की लड़कियों, नटखटी लड़कियों, एंजॉय कीजिए।

अरे मैंने बताया था, आप लोग और भी गाने भेज सकते हैं, जैसे यानी कि कागज पे और कलम पे और दवात पे और ये किताब पे भेज सकते हैं ना, बहुत सारे गाने भेज सकते हैं। वैसे यानी कि कॉलेज में हर चीज आता है ना, स्कूल के भी गाने हो सकते हैं और कॉलेज वाले भी गाने हो सकते हैं, यानी कि फेयरवेल वाले भी गाने हो सकते हैं, जैसे कि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहां मुलाकात हो। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। फिलहाल सोचते रहिए, गाना भेजते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास और ये प्रियंका जी क्या कहती हैं इनके सुनते हैं।
1: अमन जी ऐसा कोई भी लड़का लड़का नहीं है।
0: अरे बाबा आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है आपकी, यदि लगता है कि आपकी तबीयत बहुत जोर से खराब है तो क्या हुआ है ये बताइए। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि आरिफ सिंधी जी के पसंद सुपरहिट लाजवाब लगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और जुड़ने वाले दोस्तों में सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं।
2: जय अमन सर जी, आरिफ सिंधे जी और भी भाई इसमें शामिल है, सभी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद।

0: जी अच्छी बात है, आपको दिन याद आ रहे हैं। और बागेश्वर निशा लिखते हैं कि वाओ सुपर सॉन्ग, ये क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: शुक्रिया अमन सर जी, मेरी डिमांड का गाना प्ले करके मुझे सुनवाया, और दोस्तों भी इसमें शामिल थे उनका भी गाना सुनवाया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। सुनते रहो रेडियो हॉटस्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: वेलकम है आपका भी। और यानी कि प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और जितने भी दोस्त इसमें शामिल थे उनको भी थैंक यू, और फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी थैंक यू सो मच। और पीकू राय लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है ए मेरी कॉलेज की लड़कियों। और यहाँ पे इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और एमडी सोहेल जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ा हूँ सर जी, और सभी गाने बहुत ही सुपर हिट लग रहे हैं। कोई बात नहीं, आप सुन रहे हैं ना, बहुत है फिलहाल। मिसाल अंकद जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अगला जो डिमांड है हमारे, वैसे तो इन तीन दोस्त दिख रहे हैं, और भी दोस्त इसमें शामिल हैं, जैसे कि अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम तो हैं ही, इनके अलावा भी दोस्त शामिल हैं। तो पहले अशोक देशमुख जी का ही हम ऑडियो लेते हैं, इनकी पहले सुनते हैं।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख, आज संडे स्पेशल में एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है संतान, और गाने का बोल है, कॉलेज में होनी चाहिए प्यार की पढ़ाई। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को, और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है। और इसी गाने में जैसे कि हमारे सर्वेश भगत जी हैं,
3: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
3: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है संतान, और गाने का बोल कॉलेज में होनी चाहिए प्यार की पढ़ाई। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरा जंदा हजिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, सुनील कुमारी, मन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मुनत जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे सोनी जी, आरजे मिस परमार जी, आरजे रत्ना जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना जी गया। जयराम जी के
0: आत्माराम जी।
4: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी,
0: जी।
4: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार। मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मलकापुर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके रेडियो हॉटस्टार पर मैं भी प्रोग्राम स्टार मिक्स मस्ती में मूवी लाइव है। मूवी का नाम है संतान, और सिंगर है सर उदित नारायण और अलका याज्ञिक जी। वैसे गीत बनाया है समीर जी ने, और संगीत है आनंद मिलन जी का, और गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है सर, कॉलेज में होनी चाहिए प्यार की पढ़ाई। ये अच्छा सा गीत बिल्कुल सुना दो। सबसे पहले गीत मैं आपको सुंदरता की मूरत को अशोक देशमुख, सर्वेश भगत जी, सैयद विनोद जी और दत्ता कदम जी, वैसे हमारी प्यारी बहना काजल जी, बबीता जी, कुंता बहन जी, ज्योति जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, और जितने भी अपने रेडियो हॉटस्टार पर सुन रहे हैं सभी के लिए आज का गीत बिल्कुल समर्पित है सर, तो सुना दो। मैं आत्मा पटेल, थैंक यू।
0: और इसी गीत में एक साहब कोई और भी है, मुझे तो उनका लिखे है बागेश्वर, शायद पता नहीं, जो भी है मैंने इनके गाने को प्ले कर दिया है, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: अरे यार, ये केमिस्ट्री क्या है?
1: केमिस्ट्री, किसी लड़की को हाथ लगा, फिर देख तो उसका रिएक्शन। अच्छा। शर्माएगी, घबराएगी, फिर लेगी वो कोई एक्शन।
2: ओह माय गॉड, ऐसा

0: बिल्कुल भाई होनी चाहिए, मैं भी इसमें एग्री हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने को मिलेगा ना, फिलहाल मेरे पास जुड़ जाएगा चुके हैं और अच्छा ओके फिलहाल यहाँ पे यानी कि यहाँ सोनू गौतम भी लिखते हैं कि ये प्रीति रायदा जी की पसंद एकदम लाजवाब लगी है, मुझे मजा आ गया उनके गाने को सुनकर और फीडबैक।
1: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा तीन भाई का फरमाइश और भी भाई इसमें शामिल है, सभी को भी अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और हम और भी भाई है सभी को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और आत्माराम जी क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
2: अमन खान सर जी
0: बोलिए जी,
2: दिल से शुक्रिया जी, आपने हमारे चारों भाइयों का
0: देखिए आपका कॉल आ गया है, फिलहाल मैं यहीं पे आपको यानी कट कर रहा हूँ, फिलहाल ये फीडबैक सुनाता हूँ।
3: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और भी कोई दोस्त है, सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बहुत ही शानदार, हमें सुनवाने के लिए शुक्रिया। और अमन सर जी आपने प्ले करके हम तक पहुंचाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आर जे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी, सभी दोस्तों को डिमांड बहुत ही प्यार लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जड़हला लिखते हैं कि मेरा कहना मानो ये गाना बहुत अच्छा लगा है। अच्छा सच में कहा, ये फीडबैक सुनते हैं।
4: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, मुझे पता है। और यहाँ पे सरफराज यानी कि बुलंद शहर वाले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ इन पीकू राय लिखते हैं कि एडमिशन हो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि अमन खान सर जी आपकी नफासत और बुलंद आवाज ने इस महफिल में एक अलग ही रूप फूंक रही है, जिसे पूरा शो बेहद दिलकश हो गया है। आपका ये सहल अंदाज, लाजवाब हुनर और लफ्जों की मिठास सुनने वाले के दिलों को छूने वाले, छू लेने वाले के लिए वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच, अभी इंतजार कीजिए और यानी कि काश जो मैं सोच रहा हूँ आज पूरा हो जाए। फिलहाल ये फीडबैक।
5: हेलो अमन सर
0: जी,
5: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूं। और अभी जो गाना आपने सुनवाया अशोक देशमुख जी का और सर्वेश भगत और उनके ग्रुप का, तो सर्वेश भगत जी ने उनके गाने में याद किया, तो मैं सर्वेश भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी गाना बहुत मस्ती भरा था और जिस प्रकार ये गाना है तो सभी राज्यों के शिक्षण मंत्री के लिए ये गाना भेजना चाहिए और तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि इस पर ऐसा एक विषय होना ही चाहिए क्योंकि इसकी अभी सख्त ज़रूरत है। तो अमन सर जी आपके माध्यम से अगर शिक्षण मंत्री तक ये गाना पहुंच गया तो बहुत अच्छा होगा और हमको बहुत खुशी हुई। और अमन सर जी गाना बहुत मस्ती भरा था, मुझे बहुत पसंद आया।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि सच में यानी कॉलेज में होनी चाहिए प्यार की पढ़ाई, गाना बेहद ही खूबसूरत था, पहली बार मैंने सुना मजा आ गया। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ संदीप सुतार जी का करने वाला हूँ, क्योंकि लैला बेचारी क्या करती, नजरिया मजनू से लड़ गई है कि नहीं। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गाने को संदीप सुतार जी की डिमांड पे।

है ये प्यार तो।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं, शामिल करता हूं मैं। सबसे पहले तो बागेश्वर निशान लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, और जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग लग रहा है मुझे, और यहाँ पे पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि चाहत का संसार लेकर ना देखो, निगाहों में प्यार लेकर ना देखो, और क्या तुम हो मेरे लिए ये मैं कैसे बताऊं, मेरी आंखें उधार लेकर ना देखो। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और यहाँ पे ये फिर
1: अर्जय अमान सर जी, संदीप सुतार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यानी पिकू राय लिखते हैं कि लैला बेचारी क्या करती, सुपर सॉन्ग सुनने को मिल गया है। और यहाँ पे प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी को थैंक यू सो मच, आपको मेरा गाना अच्छा लगा। और रणवीर सिंह जेठाला लिखते हैं कि लैला बेचारी क्या करती, गाना सच में बहुत ही प्यारा है। और मैसेज खुलेगा, हाँ आर्य सिंह जी लिखते हैं कि ये मस्ती भरे गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन जी कम से कम फीडबैक तो प्लीज पूरा सुना दीजिए।
0: हाँ, क्या है
2: उसमें सॉन्ग आया था। अच्छा। कि खुद को क्या समझता है इतना अकड़ता है।
0: अच्छा।
2: कॉलेज में नया नया मजनू ये लगता है, तो ये सुना दीजिए।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और आपको फीवर है, ओके मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि जी हाँ लैला बेचारी क्या करती, नजरिया मजनू से लड़की गाना बहुत ही प्यारा था। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही मतलब फनी लगता है। जी बिल्कुल सही कहा। अगला जो डिमांड है अब मैं वही सुनाने वाला हूँ जिसे बहुत दोस्तों ने भेजा है, जैसे कि विष्णु चंद्र जी इस गाने में शामिल हो रहे हैं। विष्णु चंद्र जी के साथ साथ शायद सर्वजीत सेठी जी भी शामिल हैं। मैं जरा से एक बार फिर से चेक करता हूँ सर्वजीत सेठी जी हैं या नहीं। हाँ चला गया। हाँ यहाँ पे मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल भी इसी गाने में शामिल हो रहे हैं, और शायद इसमें सर्वजीत सेठी जी भी जहाँ तक मुझे याद है नहीं वो नहीं है, इसके बाद वाले गाने में आएंगे। ओके तो दो दोस्तों का तो ये गाना मुझे ये मिल गया है, और भी किसी का मिलता है तो मैं ज़रूर इस गाने में शामिल करूंगा। फिलहाल दो दोस्त मुझे दिख रहे हैं, और वो गाना है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। बिल्कुल बहुत पढ़ा है ना। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है और बहुत कुछ लिखा है। फिलहाल फिर भी लिखा है रणवीर सिंह जनरल लिखते हैं कि हमारे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और नरेंद्र इन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, पत्रकार जी बहुत बहुत वेलकम है छत्तीसगढ़ से। और बिल्कुल लिखते हैं कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, गाना सच में बहुत ही प्यारा है। और रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि मोहड़े जी। और ये फेवरेट सुनते हैं, क्या कहती हैं प्रियंका जी?
1: अमन जी ये फेवरेट सॉन्ग है, इसलिए मुझे थोड़ा सा गाना है।
0: अच्छा।
1: किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा ना तुमने पढ़ा है। पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। दो सॉन्ग बहुत अच्छे थे और दोनों पे फीडबैक देना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों बहुत ही प्यारे सॉन्ग थे। थैंक यू।
0: ओके। और यहाँ पे बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मंगेश दसमोल जी लिखते हैं किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बहुत ही प्यारा डिमांड था, थैंक यू सो मच। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि किताबें बहुत सी, बहुत ही बढ़िया गाना है जी। अगला जो डिमांड है वो बहुत से दोस्तों का है, जैसे कि यानी कि कल कॉलेज बंद होने वाला है ना, वही गाना लेकर आए हुए हैं बहुत से दोस्त। और इसमें शामिल है गोपाल यानी पटीदार जी शामिल हैं। सबसे पहले इनका मैसेज आया हुआ है, इनके बाद मैसेज आया हुआ है ये हमारे एम ताहिर जी का, क्या कहते हैं सुनिए।
2: अमन खान सर, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को मेरी जानिब से तहे दिल से आदाब अर्ज है।
0: आदाब आदाब आदाब
2: सर जी। आज जो कॉलेज पर आपने आधारित गीतों का जो शो लेकर आए हुए, ये अपने आप में बेमिसाल है, रहेगा। अमन खान सर
0: जी,
2: ये नगमा मैं जो सुनना चाहता हूँ ये कॉलेज की उन आखिरी मुलाकातों और रफाकत का एहसास दिलाता है, जहाँ बिछड़ने का मलाल और हसीन यादों की वीर जहन में जो है उसे यादों की ताबीर के साथ चलाता है। बस एक बार इसे अपनी आवाज के साथ पेश कर दीजिए, ताकि सारे पुराने यार अपनी गुजरी हुई सुहानी शामों को दोबारा जी सके। गाने के बोल तो आप समझ ही गए हो, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, फिल्म जान तेरे नाम का। और इसमें सबसे पहले शामिल करना चाहता हूँ आपको,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: वंशिका जी को, आकांक्षा जी को और कुछ दोस्त हैं, सोनू गौतम जी, प्रिंस पासवान जी, सुनील कुमार जी बांके बिहार वाले, गौरव ठाकुर जी, सतीश शर्मा जी और जितने भी कार्यक्रम इस समय साथी सुन रहे हैं उन सबको मेरी जानिब से गाना डेडिकेट है।
0: लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा। फिलहाल इस गाने में और भी दोस्त शामिल है, जैसे की मिसाल अंगद जी भी शामिल है। मिसाल अंगद जी के साथ साथ शामिल कौन कौन से दोस्त, जरा एक बार फिर मैं नजर दौड़ा रहा हूँ कि कॉलेज बंद हो जाएगा। हाँ, अशोक कुमार जी यानी यूनिक पटना से, ये भी इस गाने में शामिल हो रहे हैं। और कौन से दोस्त शामिल हो रहे हैं देखना पड़ेगा, कल कॉलेज बंद हो जाएगा मुझे तो दिख नहीं रहा है। कॉलेज से पहले चलने, ओके। हाँ, ये सर्वजीत शेट्टी जी भी शामिल है जी, तो इतने दोस्त इस गाने में शामिल हो रहे हैं। तो सुनवा रहा हूँ आपको ये डिमांड, कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल कल कॉलेज बंद होने वाला है, और वैसे मैं बता दूं कि यानी कि मेरा कल स्कूल बंद है, यानी कि कल है तीज व्रत, तो आप यानी कि सभी जो भी इन महिलाएं हैं, यानी सुहागन महिलाएं, उन सभी को इन तीज व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे। फिलहाल दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपने एक एक नए आरजे के प्रोग्राम के बारे में बताया था, वह प्रोग्राम शुरू हो गया क्या? नहीं नहीं, अगले सोमवार से हो सकता है कि शुरू हो जाए। जब वो फ्री होंगी तो वो अपना प्रोग्राम लेके आएंगी जल्दी, लेकिन वो यानी मॉर्निंग में आएंगी, सुबह यानी कि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच वो प्रोग्राम वो लेकर आएंगी। और उस प्रोग्राम में मैं बता दूं आप सभी को कि आपको गाने की डिमांड करनी होगी 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच, अपने गाने की डिमांड वो कर सकते हैं। और उस यानी कि उनके प्रोग्राम में चूंकि होता क्या है कि हर प्रोग्राम में फीडबैक हम शामिल करते हैं, लेकिन उनके प्रोग्राम में मतलब फीडबैक शामिल नहीं किए जाएंगे, सिर्फ यानी गाने की डिमांड होगी, वो गाने के बारे में जो भी अपने बातें करेंगे, गाने वो आपकी मतलब यानी प्ले करेंगी, लेकिन वो आप लोग जो फीडबैक देते हैं कि मेरा गाना अच्छा लगा, ये वो दिस डैट, जैसे कि आरजे आकांक्षा जी करती हैं, आरजे वंशिका जी करती हैं, या मैं करता हूँ, उनको इससे यानी परे रखा गया कि भाई आप सिर्फ गाने की डिमांड पूरी करो, एक घंटे के समय में जितना हो सके उतना, लेकिन फीडबैक वगैरह के चक्कर में पड़ोगे तो फिर क्या होगा कि समय निकल जाएगा यूं, और बहुत से दोस्तों की डिमांडें छूट जाएंगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। चूंकि उस प्रोग्राम को थोड़ा सा हट के बनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, कि ताकि आपको भी अच्छा लगे। एक मॉर्निंग का यहाँ पे स्लॉट खाली था, तो कहा गया कि क्यों ना एक मॉर्निंग शो आप लोग के लिए यहाँ लाया जाए, इसलिए उस प्रोग्राम के लिए वहाँ पे एक नई शो आने वाली है। आरजे अदिति जी का बहुत बहुत वेलकम करूंगा उस शो में। अजय कुछ लिखते हैं कि हिट सॉन्ग सुनने को मिला, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए भी। और सोनू गौतम जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा, अच्छा मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा। और अच्छा। अमन भाई आप सही कह रहे थे, एम ताहिर भाई कुछ भूल गए और उन्होंने हमें अपने गाने में शामिल किया, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं सोनू गौतम रामपुर उत्तर प्रदेश से।
0: जी धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पीकुरा लिखते हैं कि कल कॉलेज बंद हो जाएगा, मेरा फेवरेट गाना है, थैंक यू सो मच, एक नंबर गाना लगा मुझे। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
2: अर्जय अम्मा सर जी, सरजीत सेठी जी और भी बहुत भाई इसमें शामिल है, सभी भाई को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर
0: जी आपका। और इसी गाने में प्रियंका जी क्या कहती हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं।
3: अमन जी, आज आपने कॉलेज और स्कूल के दिन याद दिला दिए हैं। स्कूल के दिन भी काफ़ी अच्छे होते थे और कॉलेज के दिन भी बहुत ही अच्छे बीते हैं। और उस समय पे ऐसे ही होता था कि जब कॉलेज बंद हो जाता था, फिर सैटरडे आता था, संडे आता था, फिर मंडे आता था, तो हम सब फ्रेंड्स सोचते थे कि हम लोग वापस से मिलें। और कॉलेज की लाइफ अलग होती है, स्कूल की लाइफ अलग होती है। सॉन्ग काफी अच्छे चल रहे हैं, थैंक यू।
0: बिल्कुल अच्छा, तो यानी कि लगता है कि आपको यानी कि पिछले दिन सब कुछ याद आ गए होंगे। यहाँ आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि ऑल टाइम आइकॉनिक सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल आइकॉनिक ही सॉन्ग था। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि वो जो ओके तो ठीक है, ओके तो आपको भी जो कहना है वो आप इन्हें बोल कर इन्हें कह सकती हैं, मैं यही कहूंगा ये फीडबैक।
4: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद, और अमन सर जी आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन जिन दोस्तों ने फीडबैक दिया तो मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा अमन सर जी। और आज की जो आपने शो का नाम रखा है बिल्कुल सही रखा है, और बहुत दिनों के बाद ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो, और ऐसा लगता है कि हम उस समय की जो कॉलेज की लाइफ थी यही आज इस गाने के माध्यम से हम एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, और सुन भी रहे गाने, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे ये सुनील क्या नाम है, सुशील कुमार जी क्या कहते हैं, इनके भी सुन लेते हैं।
5: आर जे अमन सर जी को सुशील कुमार का नमस्कार, सभी सुनने नमस्कार। वाले दोस्तों को भी प्यार भरा नमस्कार। आर जे वंशिका, रत्ना जी, सोनी जी, सभी आर जे को भी प्यार भरा नमस्कार। और जो बहुत ही ज़्यादा श्रोता है जो बार बार करते हैं, महाराष्ट्र से हैं, सुनील कुमार बिहार से हैं, मोहम्मद ताहिर जी हैं, इन सभी को मेरा सुशील कुमार का प्यार भरा नमस्कार। मेरी एक रिक्वेस्ट है अमन सर जी, सॉन्ग जिसे देख मेरा दिल धड़का
0: जी, बहुत ये पहले हो चुका है ये गाना, अब तो बहुत देर कर दिया भाई आपने फरमाइश करने में। फिलहाल ये फीडबैक,
6: कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसे हैं। अच्छा। कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसे हैं, न जाने क्यों तुमसे बात करने के लिए तरसते हैं।
0: वाह वाह वाह।
6: तुमसे दूर होकर तुम ही चाहते हैं, तुमसे दूर होकर तुम ही चाहते हैं, तुम मेरे हो फिर भी तुम्हें खोने से डरते हैं। गुड इवनिंग अमन सर जी, कैसे हैं आप? आज स्कूल कॉलेज बहुत मजा आ रहा है सुनकर। अच्छा अच्छा सॉन्ग चल रहा है,
0: बिल्कुल सुनते रहिए, अभी एक से बढ़कर गाने आने वाले हैं। और अगवा खान जी लिखते हैं कि अमन सर जी आपने मुझे वो पुराने दिनों की याद दिला दिया है, वो मतलब स्कूल की वो छुट्टियां होती थी तब ये गाना गुनगुनाया करता था, वो यानी कि 90 के पल बहुत याद आते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने भी। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं ब्यूटीफुल, ये ट्रैक के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत लाजवाब गाना है ये। मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई, मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं बहुत देर से, बहुत देर बाद जुड़े हैं। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं गाना सच में बहुत ही प्यारा है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ गोविंदा खंडारते जी का, गोविंदा खंडारते जी सुनना चाहते हैं ये बहुत ही प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं।
1: अरजय अमन सर जी, गोविंदा खंडाले जी अपने गाने में शामिल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और इन फिकुराए लिखते हैं कि ये तुमसे मिली वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि अमन सर जी आठ बजे है ना, मैंने कहा 8 बजे के बाद, वैसे आपको इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है कि मिल जाए सरप्राइज, आप टेंशन मत लीजिए। और गोविंदा खंडाले जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना सुनवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज्योति जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं और हमारे कॉलेज के दिन याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड सॉरी फीडबैक सुन लेते हैं पहले।
2: अमन जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे फीवर आ रहा है बट मैं सुन रही हूँ। और कॉलेज के दिनों से मुझे एक किस्सा याद आ गया।
0: अच्छा, अच्छा।
2: जो मैं शेयर करना चाहती हूँ।
0: हाँ, कीजिए कीजिए।
2: कि जब मैं कॉलेज का फर्स्ट दिन था और हमारे कॉलेज में एक लिस्ट लगी थी स्टूडेंट्स की, जो उसमें मेरा नाम था, तो हम लोग लिस्ट में चेक कर रहे थे, मैं अपना नाम चेक कर रही थी, तो एक लड़का काफ़ी देर से मुझे नोटिस कर रहा था और वो मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था।
0: अच्छा।
2: बिकॉज शायद वो मेरा नाम जानना चाहता था कि मेरा क्या नाम है।
0: अच्छा।
2: तो जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, मेरी फ्रेंड का नाम वर्षा है, हम दोनों उस लिस्ट में अपना अपना नाम ढूँढ रहे थे, तब वो लड़के को मैंने बाद में देखा कि वो उसी लिस्ट में मेरा नाम ढूंढ के उसने पता कर लिया था कि इनका नाम प्रियंका है। तो वो किस्सा मुझे आज भी याद है और वो हंसी आती है वो आज भी वो पल याद करके।
0: समझ गया।
2: थैंक यू।
0: वो आपका यानी दीवाना था, क्या बात है। फिलहाल मेरे पास अगला जो गाना है वो अनिल कुमार हरिद्वार जी का, तो सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए। खत मैंने तेरे नाम लिखा।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे। त्रिपुरा जी लिखते हैं कि खत मैंने तेरे नाम लिखा, सुपर हिट गाना लगा मुझे। और यहाँ इन विश्वचंद जी लिखते हैं कि बैक टू बैक सभी गाने जबरदस्त मस्त चल रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। और फीडबैक
1: अमन जी, किस्सा याद आया तो सुना दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दीवाना था, कि वो कॉलेज में मेरा दीवाना था, कि ऑफिस में मेरा दीवाना था। कॉलेज के दिन याद आ गए तो किस्सा शेयर कर दिया, और बाद में पता चला कि उस लड़के का नाम इमरान था।
0: अच्छा, इमरान हाशमी। ओह माय गॉड, वो हीरो था, दीवाना था आपका। माय गॉड, आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि ये सब दोस्तों की डिमांड बहुत ही लाजवाब चल रही है, मजा आ गया सुन सुन के। और ये फिर
2: अमन सर जी, ऑलरेडी सॉन्ग इज वेरी नाइस।
0: थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू वेरी मच। आत्माराम पाटिल, नेहा बुलढाणा इन महाराष्ट्र।
0: ओके जी, अगला जो डिमांड है मेरे पास वो अनिशा सिंधी जी का है, और अनिशा सिंधी जी के साथ साथ दीपक कुमार गायकवाड़ जी भी लग रहा है इसी गाने में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भाई इन दोनों को इन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, शायद यही है। तो सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूडी चॉइस आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे और मेरे पढ़ने में दिल नहीं लागे दिल। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं मिलो जुली डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि सभी गीत सुपर हिट ला जो आप चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन जी, आपने मेरा गाना बजाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मैं अपने स्कूल की एक बात बताना चाहता हूँ कि स्कूल में जब प्रार्थना होती थी तो संस्कृत में श्लोक कहे जाते थे, तो वो श्लोक मुझे याद रहते थे और प्रार्थना भी मैं ही करवाता था। और तीन लड़के खड़े होते थे तो बीच में मैं खड़ा होता था। और एक बार क्या हुआ, मैं लेट हो गया, जैसे कि ये जया भादुड़ी वाली पिक्चर में वो लेट हो जाती है, वैसा का वैसा सीन मेरे साथ भी हो गया था। और मैं लेट हुआ तो पूरी क्लास खड़ी हुई थी, सर खड़े हुए थे और दो लड़के भी खड़े हुए थे, वो बीच में एक जगह खाली थी मेरे लिए। और जैसे मैं आया प्रार्थना चालू हो गई, क्योंकि संस्कृत में श्लोक मैं ही बोलता था, इसलिए वो प्रार्थना मेरे लिए रुकी हुई थी। और वही केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे स्कूल के समय की बात है जब मैं छठवीं या सातवीं क्लास में था। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: ओके जी, समझ गया। और जहाँ तक यानी कि प्रार्थना की बात है, तो वो तो जब यानी मैं स्कूल में था तो यानी क्लास छठा सातवा आठवा नौवा और दसवा में यानी कि पूरा इन्हें 5 साल दिन मैंने ही प्रार्थना कराया था। मतलब सच में प्रार्थना कराने का मजा ही कुछ और होता था। यहाँ पे पिकुराज जी लिखते हैं कि ये मस्त गाना लगा है, मजा आ गया सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।

0: वंस मोर।
1: अच्छा,
0: थैंक यू आत्माराम पाटिल।
1: ओहो हो, यस, ऐसा है क्या? अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ ज्योति खटवटे जी का, सुनना चाहती हैं? मैं हूँ ना, बिल्कुल मैं हूँ ना।

0: बिल्कुल मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार। मैं हूँ ना ज्योति जी, रीतेंगे थैंक यू सो मच अमन जी मेरा सॉन्ग सुनवाने के लिए। और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: और जय अमन सर जी, ज्योति कटवटे जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: पहले तो ज्योति कटवटे जी हर गाने पर फीडबैक दिया करती थी, अब पता ना नहीं दे पाती हैं फिलहाल ये फीडबैक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार में होना। नाइस सॉन्ग।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे पीकू राय जी लिखते हैं कि किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, एक नंबर सॉन्ग लगा है मुझे। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गुड सॉन्ग है, अच्छा। और शिल्पा बेन लिखते हैं कि एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि अमन सर जी गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ये क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
3: मैं हूँ ना फिल्म का ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें शाहरुख खान और सुनील शेट्टी थे, और शाहरुख खान सर जो का नाम था मेजर राम, तो ये मेरे फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, और ये गाना मुझे बहुत पसंद आया। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद देते हैं। और इसी फिल्म का अगला गाना भी आने वाला है, इसमें दो तीन दोस्त भी शामिल हैं, मैं बताऊंगा। और आत्माराम जी लिखते हैं कि ज्योति दीदी जी का अप्रतिम सॉन्ग सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल ये फिर।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम आर्जी मनी जी, मैं अपनी क्लास की और तकरीबन मान लीजिए हॉस्टल की सबसे शरारती लड़की थी।
0: अच्छा,
4: मतलब शरारत बोले तो भोली भाली से शरारत करते थे।
0: अच्छा,
4: और जो हमारे प्रिंसिपल थे वो बिल्कुल मोहब्बत मूवी के अमिताभ बच्चन की तरह उनके रूल्स और रेगुलेशन थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
4: बट मैं एक अकेली ऐसी लड़की थी जो उनके पूरे रूल्स को तोड़ के और इतना इतना इतना मैं और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड रहती थी सालेहा, हम दोनों मिलके जो धमाल मचाते थे तो उसका तो कोई पूछिए ही मत कि कितनी शरारती थी मैं। और सेकंड मतलब तकरीर करने के लिए, तकरीर आप जानते हो ना वो जो स्टेज पे बोलने के लिए, वो तो कभी नहीं बोला। अच्छा। लेकिन पता नहीं कैसे मुझे इतना बोलना अभी आ गया, काश उस वक्त भी आता तो नंबर वन पे आ जाता।
0: ओहो, क्या बात है। फिलहाल आपने ये यादें शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे भी अगर दोस्तों के पास हैं यादें तो ज़रूर शेयर कीजिए, यहाँ पे शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा, यानी मज़ा आता है ना आप सबकी वो पुरानी बातें जान जान कर, मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अगला जो डिमांड है इसमें शामिल हो रहे हैं बहुत से दोस्त, दोस्तों में शामिल हैं किनका मैं नाम ले लूँ। सबसे पहले एक यानी मोना जी हैं, यानी मोना जी इस गीत में शामिल हो रही हैं, और मोना जी के साथ साथ हैं इस्माइल खान जी हैं, इस्माइल खान, और एक साहब और भी हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जो भी है उनका भी इस गाने में मतलब वो शामिल हो रहे हैं। तो आप इन तीन दोस्तों की डिमांड पर मैं ये गाना प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। पहले तो ये
1: आरजे अमन सर जी, इस्माइल खान जी और दो आदमी और भी हैं इसमें, तीनों को अपने गाने में शामिल किए, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यानी पीकू राज जी लिखते हैं कि यानी तुमने जो मैंने देखा गाना बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं आप सबकी चहेती और लाडली आरजे आकांक्षा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका प्रोग्राम में।
2: ऐसे कौन वेलकम करते हैं,
0: मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँ और आज मुझे ये मौका मिल गया, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
2: हाँ जी, थैंक यू पहले आपको फर्स्टली, क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया, मैंने आपको नहीं दिया, शो आपका चल रहा है ना कि हमारा।
0: अच्छा जी, मतलब ये हाँ। मेरी भी था ना, मतलब ये नहीं थी ख्वाहिश ना कि मैं आपके साथ में शो करूँ।
2: अच्छा
0: हाँ,
2: ख्वाहिश थी तो मतलब आज पूरी हो गई।
0: हाँ बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी, बिल्कुल। अब हम दोनों मिलकर धमाल मचाने वाले हैं, मैंने पहले ही बोल दिया
2: नहीं, वो तो ठीक है, सिस्टम आज हैंग आउट कर जाएगा, मतलब अब हम आगे क्या ही बोले। वैसे हमारे इधर का जो हाल चल है वो मैं अपने आंखों देखा बताना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं, ओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये भूल ही गई कि आप सभी को मुझसे गुड इवनिंग बोलना है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार भाई श्रोताओं, मैं भूल गई। देखिए ये ऐसे हमको घुमा देते हैं, बहुत बतियाते हैं, कितना बतियाते हैं जी। अच्छा, आप हमसे
0: हम कहां बतियाते हैं जी, हमको तो बतियाने का मौका चाहिए सिर्फ, जैसे मौका मिलेगा तो हम बतियाना शुरू कर देगा तो फिर प्रोग्राम नहीं हो पाएगा।
2: तब ये बताए, वही तो हम कहने जा रहे थे, बत कहीं करेंगे और कॉलेज और स्कूल की बात करेंगे तो बतियाने में चटियाने में पूरा वक्त बीत जाएगा, फिर शो कौन करेगा।
0: इसीलिए तो हम आपको बुलाए हैं क्योंकि आप इस काम में माहिर मुतलक है ना, और सच
2: हाँ
0: में।
2: तो वो तो ठीक है कि हम माहिर मुतलक हैं और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं मुख्तसिर भी हैं, और इसके अलावा कुछ और कहें मुख्तलिफ भी हैं।
0: हाँ,
2: अपने आप में और कुछ कहें।
0: हाँ, कहते रहे हमसे,
2: नहीं अरे बाप रे। नहीं, फिलहाल चर्चा करते हैं उस विषय पे जो कहीं ना कहीं आज और कल का खास विषय और खास त्योहार बना हुआ है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो भाई श्रोताओं, हम दोनों की बकवास तो यही चलती रहेगी, क्यों जी, गलत तो नहीं कहा
0: ना? नहीं बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो भाई हम दोनों की बकवास यूं ही चलती रहेगी अभी जब तक शाम बाकी है, अभी तो शाम का आगाज ही हुआ है। तो बताना ये था कि कहीं ना कहीं सावन की फुहार कजरी की पुकार और शिव पार्वती के प्रेम का त्योहार, जी हाँ, जो कि है कजरी तीज। और सावन की रिमझिम फुहार हो और पेड़ों पर परे झूले और हाथों में मेहंदी, कहीं ना कहीं ये सब तो बीत गया, लेकिन जब सावन की बात होती साथ ही में भादो का भी मतलब मेल होता है तो बहुत सारे हमारे हिंदुओं में त्योहार आते हैं, उन्हीं में से एक है कजरी तीज। और आज का दिन जो कि है आज नहीं कल होने वाला है पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं आज भी तैयारी उसकी चल रही है। भाई हमारे इधर तो मेला लगा हुआ, और मेला ऐसा वैसा नहीं, आपको बता दें बहुत घरों में आज खाने भी नहीं बने होंगे, सब मेला घूमने गए हैं और उधर से सब, चूंकि लंगर लगा हुआ है जगह जगह पे, स्टॉल लगा हुआ जस्ट बगल बगल में, और यहाँ चौराहे से लेके अगला 2-4 चौराहा क्रॉस कर जाएंगे तब तक आपको मतलब खाने पीने का सामान मिलेगा। और इसी टाइम से जल उठना, मतलब आज से क्या, कल से ही चल रहा है, जल उठ रहा है और अयोध्या साइड से लोग जल भर के ला रहे हैं और यहाँ पे जो जहाँ जैसे पार अपने श्रद्धा अनुसार वहाँ पे शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं, और आज रात तो पूरी रात ये चलने वाला है और कल शाम तक ये सब होने वाला है। तो बड़े ही धूम धड़ाके से ये त्योहार कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है, और पत्नियाँ अपने पतियों के लिए ये व्रत रखती हैं और हर एक चीज को 3-3 बार करती हैं, मतलब 3 जोड़ी साड़ी, हाँ 3 जोड़ी साड़ी, 3 बार नहाएंगी, 3 बार कथा होगा, 3 बार पूजा होगा।
0: अच्छा।
2: और कुछ भी अच्छा। दान करेंगी तो 3-3 में, हाँ सिंगल में नहीं।
0: अच्छा।
2: मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब एक बार मैं एक जन्म ही पिंड नहीं छोड़ना चाहती, मैं अच्छा। भगवान जी को 3 बार मनाऊंगी, भगवान जी से 3 बार बोलूंगी कि हे अच्छा। प्रभु, इसी बंदे का मेरे को जीवन नरक करना है, मेरे को यही बंदा चाहिए।
0: हाँ,
2: तो इस तरह से स्त्री अपनी मुरादे पूरी करती। भाई कोई सीरियस मत लेना, मैं ऐसी ही हूँ और मैं मुंह फेक हूँ, मैं बेफिक्री हूँ, मैं ऐसी बात कर लेती हूँ। तो ये चीजें हैं और ऐसे ही मतलब आज का मतलब जो कल होने वाला त्योहार फिलहाल, और मेहंदी भी लगाएंगी और सब पूरी तरह से साज श्रृंगार और पूरी तरह से सज संवर
0: मेहंदी है, उसको भी यानी 3 बार लगाना पड़ेगा।
2: वही मैं कहने ही जा रही थी लेकिन आपने पहले ही बोल लिया, मतलब एक बार नहीं चढ़ता तो 3 बार लगा सकते हैं ना, मतलब एकदम काला काला जब तक हाथ में दिखे नहीं, वो आजकल डार्क ब्लैक, जबकि पता है जो ओरिजिनल मेहंदी का कलर है वो सुर्ख लाल, मतलब एक तरह से हाँ सुर्ख कथई मैरून कलर यही होता है, ये जो ओरिजिनल पत्तों वाला आप लगाएंगे इससे ज्यादा नहीं चढ़ता है। और हम लोग केमिकल का यूज कर करके मतलब पता नहीं क्या उसको करीखा करना है, काला मतलब दिखना चाहिए जब तक छूटे धप्पों जैसा, तब तक वो चढ़ना चाहिए। और कुछ लोगों का होता है है कि जैसे हार्मोनल होता है कुछ, तो हाथ वाथ पसीसता तो उनका ऑटोमेटिक चढ़ जाता है काला काला। तो अच्छा सोचिए रात का अंधेरा हो और लड़की हाथ में ऐसे मेहंदी लगा के निकले, जैसे शादियों में होता है, मान लीजिए पहली रात है किसी की, भाई ये थोड़ा सा पर्सनल हो रही हूँ माफ करिएगा, लेकिन मैं मन कर रहा है तो मैं करने वाली हूँ आज की बात। तो मतलब किसी की पहली रात हो और हाथों में मेहंदी लगा के मतलब लड़की बैठी हो, उधर से दूल्हे की एंट्री हो और धीमी धीमी सी लाइट हो, बहुत ज्यादा लाइट ना हो, अचानक से लाइट चली जाए, फिर अचानक से लाइट आ जाए और लड़की ने हाथ से अपने मुंह को छुपा रखा हो, उसको खाली काला काला नजर आए, वो मतलब लड़की को देखेगा खूबसूरत बोलेगा या डर के भाग जाएगा?
0: जाहिर सी बात है वहाँ पे अजीब सा मतलब माहौल हो गया, मैं इमेजिन नहीं कर सकता।
2: महबूबा की जगह देखिए वो उसको बोलना था यहाँ पे क्या डायलॉग बोलना था, महबूबा माशुका तुम बड़ी खूबसूरत हो, चिल्लाएगा महतारी बचाओ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल मैं आती हूँ टॉपिक पे वापस से। तो कजरी तीज है क्या, ये पहले बताते हैं कि कजरी तीज को कई जगह पर बड़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ तो हमारे यहाँ का ये लोक पारंपरिक त्यौहार है। और इसके अलावा चूंकि बिहार हमारे पड़ोस का राज्य है, मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग भाई बहन का रिश्ता अच्छे से निभा लेते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी आपके उधर भी ये त्यौहार होता है, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ये त्यौहार देखने को मिलता है। विशेषकर पूर्वांचल और मिर्जापुर बनारस क्षेत्र में कजरी तीज का अपना अलग ही रंग दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आंखों देखा हाल कि हमारे इधर मेला लगा हुआ है और बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से बोलबम का नारा लग रहा है, सभी जा रहे हैं, कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल ही जा रहा है, जो जैसे जा पा रहा है वो जा रहा है। तो ये पर्व इस तरह से मनाया जाता है और ये पर्व जो है वो सावन और भादो की उस ऋतु से जुड़ा हुआ है जब प्रकृति हरियाली से भर जाती है, लोक जीवन गीत संगीत में झूम उठता है। और हमारे यहाँ तो भाई कजरी तीज गाई भी जाती है। अच्छा। वो कहते हैं धरती के हरिया सिंह

0: हो के
1: ओहो
0: आइल आइल सावन की बहार,
1: क्या
0: के
1: बात है।
0: आइल आइल सावन की बहार, ऐसे करके हम लोग मतलब कजरी गीत गाते हैं। और खास करके मतलब ये भी होता है कि खेतों में लोग जब काम कर रहे होते हैं उस दौरान आपस में सखियां कजरी गाती हैं। झूले पे जब झूला झूला जाता है, रक्षाबंधन का दिन हो, सावन आया हो, और मतलब सावन भादों को ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है।
1: क्या
0: तो ये
1: बात
0: हमारे
1: है,
0: उत्तर प्रदेश का, हमारे पूर्वांचल का, हमारे बिहार का ये एक बहुत ही खास त्योहार है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा जानकारी देने के लिए। सबसे पहले आपको तो मैं धन्यवाद कहूंगा, और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ रहे हैं, इसको शामिल करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा।
0: उसको शामिल करिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक डिमांड
1: जी
0: है
1: बोलिए।
0: कजरी तीज को लेके, क्योंकि कल सारी महिलाएं रहने वाली हैं व्रत, तो भाई हमारा भी कोई खास है, भले ही हम साथ नहीं है वो बात दूसरी है, पर दिल में, जहन में, दिमाग में, हर जगह वही वही होते हैं। तो उनकी भी, उनको भी दुआओं से सजाने के लिए, और साथ में उन सभी महिलाओं की मतलब जीवन साथी को दुआओं से नवाजने के लिए एक प्यारा सा गीत है जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, प्लीज उसे प्ले कर दीजिए।
1: व्हाट्सएप किया है आपने, कौन सा गाना मुझे देखना पड़ेगा। हाँ ये आपने किया है, यानी तेरी तिरछी नजर में है जादू।
0: नहीं, ये तो पंडित जी की डिमांड है जनाब।
1: पंडित जी का डिमांड है, तो फिर आपकी डिमांड तो
0: हाँ।
1: दिख नहीं रही है
0: अब ये तो। चलिए मैं आपको फिर से भेजती हूँ, और ये देख लीजिए अभी जस्ट मैं आपको भेज रही, ये पहुंचा दिया मैंने आप तक, मिल गया।
1: अच्छा है, मेरे सासों में मेरे प्यार जी, बिल्कुल
0: तो बिल्कुल से। और लोग कहते हैं कि मतलब क्या ही बोलूं कि पावर कट हो रहा है, ये है, वो है, फलाना ढिमका है, लेकिन अगर साथ हो या ना हो इंसान, अगर वो आपकी सांसों में सच में बसता है, तो आप हमेशा जैसे ये हरियाली नहीं फैली होती सावन में, वैसे ही भरे भरे रहोगे। और कहीं ना कहीं मेरे हरे भरे रहने की खासियत भी वही है।
1: अच्छा जी, चलिए तो इस गाने को तो मैं जरूर सुनवाऊंगा, है ना, है मेरे सांसों में मेरे
0: जी
1: प्यार।
0: जी,
1: और ये गाना सच में है भी बहुत ही प्यारा, इंजॉय कीजिए। धन्यवाद।

और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आरजे आकांक्षा जी के लिए लाइनें खुल चुकी हैं, आप चाहे तो वो उनके पास भी मैसेज कर सकते हैं और मेरे पास तुम्हारी मैसेज आपका आएगा ही आएगा। अगर यानी किसी भी आरजे के पास मैसेज करेंगे तो वो मैसेज दोनों दोस्तों के पास जाएगा।

0: में यार जी आकांक्षा जी गाना दिल को छूने वाला है, दिल को सुकून देने वाला है, और जब भी सुनो मतलब दिल बाग बाग हो जाता है। और क्या ही बताऊं, इस गाने की जितनी तारीफ करें उतनी ही यानी कम है। और आप क्या कह रही हैं?
1: बस करते रहिए तारीफ, हमें तो तारीफ सुनना पसंद है। गाने की नहीं, खुद की, मेरी तारीफ।
0: अच्छा जी हाँ, वो तो आप तो, आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे तारीफें आई हुई है ना, मैं एक एक करके बता रहा हूँ।
1: हाँ, तो इसलिए तो कहा कि करिए।
0: तो यानी कि सबसे पहले इस्माइल खान जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना को प्ले करने के लिए। और इनके बाद ये प्रियंका जी क्या कहती, जरा इनकी सुनते हैं।
2: अमन जी फीडबैक धीरे दे रहे थे तो आप सुना नहीं रहे थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से आवाज निकाल के सॉन्ग गा रहे हैं, बाकी तबीयत ठीक नहीं है।
0: अच्छा,
2: दो लाइन में सुनाना चाहती हूँ। इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको हैरत हो, दुनिया में सचमुच में रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई।
0: अच्छा, अच्छा,
2: हाँ
0: अच्छा।
2: इतनी क्यों बोलो हसी तुम हो, जो देखे गुमसुम हो, देखो ना मैं भी खूं खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी, तुम्हें को मैंने पूछा।
0: अच्छा।
2: तुम्हें को चाहा पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अगला जो यानी फीडबैक है हमारे सर्विस वगैरह जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, आरजे आकांक्षा जी प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
0: जी,
3: थैंक यू।
0: अरे उनका वेलकम कीजिए, वो आई है तो एज ए गेस्ट, एज ए मेहमान आई है हमारे प्रोग्राम में, उनका बहुत बहुत दिल से वेलकम वेलकम वेलकम है। वैसे मेरे पास और भी फीडबैक आए हुए हैं, जैसे राहुल यानी पासे जी लिखते हैं कि ये किसका है तुमको इंतजार मैं हूँ ना गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और आत्माराम जी लिखते हैं कि आप दोनों की जुगलबंदी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरजे आकांक्षा जी आपका। और एम ताहिर साहब जी, वो माय गॉड बहुत लंबा जोड़ा इन्होंने लिख दिया है भाई, लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं आकांक्षा जी आपको तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ, आपका महफिल का रंग तो इन पहले ही जम चुका था, लेकिन इस सुहानी शाम को और भी आफ्ताब करने के लिए, अपनी आवाज़ का जादू लेकर इस शो के बीच में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद अजीज़ आरजे आकांक्षा जी, मदहोश दिलों की धड़कनें, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और अमन जी लफजाजी और आकांक्षा जी के अंदाजे ब्याह का वो हंसी संगम शुरू हो चुका है, हमारी तो रूह एकदम मिंत्रो ताज़ा हो चुकी है, इसके लिए हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं। और जी बिल्कुल, कुछ यानी कोई बात नहीं, आप इन बोल का भेजते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से। ओके, फिलहाल यहाँ पे पीकू राय जी लिखते हैं कि इस शो को शानदार बनाने के लिए आरजे आकांक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आकांक्षा जी आपकी पसंद बहुत ही अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि रेडियो हॉट स्टार की बेस्ट आरजे आकांक्षा जी, हर हर इन पल को एकदम इन खुशियों से भर देती हैं और खुशनुमा बना देती हैं, और दूसरों को वो सिखाती भी हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके जी, और जाकिर खान जी लिखते हैं कि आकांक्षा जी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन सर जी के शो में उनके साथ, धन्यवाद। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आज तो इन कुछ भी चलेगा आकांक्षा जी के प्रोग्राम में, जी बिल्कुल कुछ भी चलेगा भाई, कोई बात नहीं है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी आकांक्षा जी का फीडबैक, उनका जो भी बातें हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका डिमांड भी बहुत ही प्यारा था। ज्योति जी लिखते हैं कि आकांक्षा जी की पसंद सुपरहिट लाजवाब लगी है। और काजल झकाच लिखते हैं कि आकांक्षा दीदी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप आई बाहर आ गई। राहुल पासे जी लिखते हैं कि आकांक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनका गाना भी बहुत ही लाजवाब लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि वेरी गुड इवनिंग आरजे आकांक्षा दीदी जी। ओके जी, इतने सब कुछ हो गया, अगर आपके पास है तो बताइए। और एक बार उधर यानी चैट का भी रुक, मैं तो ये
1: अब, एक मैसेज आया था क्या, आप आई बाहर आई, तो मुझे लग रहा था आप आई बवाल मन में मेरे ऐसे चल रहा था, ऐसे मैं खुरा पाती हूँ, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहता है। खैर तो अब चलते हैं भाई, अब जब आपने हमको दारमदार दे ही दिया है, कारभार दे ही दिया है, तो भाई चैट रूम की अगर बात करें, लाइव चैट रूम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नागेश्वर ढाकर जी, यानी हम सभी के प्यारे नागू बाबा जी, रतलाम की गलियों से आए। वैसे मैंने सुना है वहां पे जब वी मेट की शूटिंग हुई थी, तो शूटिंग के दौरान मुझे लग रहा है नागेश्वर धाकर जी ने अपनी रूपा जी को खो दिया था। उम्मीद है इस मेले मतलब जो कजरी तीज का कल मेला लगेगा आपको आपकी रूपा जी जरूर प्राप्त होंगी।
0: तथास्तु
1: करती हैं। हाँ जी, और इसके अलावा प्रियंका जी हमारे साथ में यानी कि परी जी हमारी और राहुल पासी जी हैं और समीर आलम जी हैं और बोलते हैं लो इतना ओ भेज दिया है कि अब ओ को ढूंढने से मैं अपने पड़ोसी के घर तक चली गई हूँ। और इसके आगे चले तो हमारे प्यारे दुलारे मिठू मियां यानी कि हमारे जी हैं, उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो राहुल पासी जी हैं और इन सभी की भाई चिट चैट के सामने यही बताइए आधी रात को भूत कब आता है।
0: आधी रात को भूत भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने
1: कभी
0: देखा ही
1: नहीं। तो अभी आधी रात नहीं हुई ना, चैट बॉक्स में हमारे भूत भी हैं।
0: अच्छा।
1: और मेहंदियां लग रही है भाई, कल की तैयारी हो रही, ऐसी कौन तैयारी करता है इतने तगड़े से।
0: अच्छा।
1: और राहुल पासी जी लिखते हैं आकांक्षा जी आज आपका प्रोग्राम कौन सा चलेगा, कुछ आपके प्रोग्राम में सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना है। हे भगवान, आप लोग इतने सॉन्ग बजवा बजवा के थक नहीं जाते हैं, हम बजा बजा के थक जाते हैं रियली। खैर ये तो मजाक था भाई, हमारा काम है और हमारे मतलब मैं क्या ही बोलूं, आप लोग की बस रहमत होती है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी नियामत हो जाती है। और इसके अलावा एक दूसरे को हेलो गुड इवनिंग यही चल रहा है। पूजा भास्कर जी भी हमारे साथ में बनी हुई है और काफी सारी चैट चैट। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो लुका छुपी धीरे धीरे चोरी छुपे इधर उधर देख रहे हैं, वो कुछ पड़ोसी होते नहीं है बस चुपचाप साइलेंट मोड में देखते हैं कौन आया कौन गया। तो ऐसे भी हमारे प्यारे लिसनर हमारे साथ में बने हुए हैं। और अब चलते हैं उस और जो आज की आपने थीम रखी है, क्या कहते हैं चलें?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ।
1: पक्का?
0: हाँ बिल्कुल,
1: सोच लिया है।
0: हाँ सोच लिया, इसमें सोचना क्या है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ।
1: बस सोचना ये कि इसके बाद में हमारे पंडित जी की एक प्यारी सी डिमांड होगी, आपको ट्यून करना होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कर लूं।
0: जी जी।
1: और जितने जितने ब्रेक्स होते रहेंगे उस पे मैं आपसे कुछ सवालात करती रहूंगी।
0: अच्छा।
1: इस हालात को देखते हुए, हाँ जी हालात को मद्देनजर रखते हुए, भाई कॉलेज और स्कूल की बात हो रही है, सबका दिल खोलते हो, आपका दिल हम खोलेंगे आज, खुलवा के रहेंगे और नहीं तो क्या। तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए, अपने दिल को संभाल लीजिए, बस इतना ही कहेंगे फिलहाल हमारे हाथों में। तो सेफ ही रहने वाला
0: है, मैं आपको बता दूं पहले आपकी जानकारी के लिए।
1: नहीं मैं कुछ सुनने वाली नहीं, आपकी जानकारी मैं बता दूं, मैं किसी की कुछ सुनती नहीं सिवाय जवाब के, मैं कुछ चाहती नहीं, एक नो बट मुझे पसंद नहीं है और दो चार बार क्लियरिफिकेशन तो कतई पसंद नहीं है।
0: तो मैं बता दूं कि मैं एक रोबोटिक इंसान हूं और रोबोटिक इंसान के सीने में दिल होता ही नहीं, मेरे पास दिल है ही नहीं।
1: हाय राधे, मुझसे गलती हो गई थी, नाम जवाब को दिया था।
0: फिलहाल हमारे पास एक फीडबैक दिया हुआ है, यानी पहले फीडबैक को शामिल करता हूँ, फिर उसके बाद से अगले गाने की तरफ मैं चलता हूँ। और ये फीडबैक है,
1: नहीं उससे पहले फिर मुझे कुछ कहना है, गाना बाद में।
0: अच्छा ओके, आमना खान जी का पहले फीडबैक शामिल करता हूँ।
1: जी
4: और जी आकांक्षा जी, ये लाइनें अमन जी आपके लिए कह रहे हैं कि वो आए हमारे प्रोग्राम में, कभी हम उनको कभी अपने प्रोग्राम को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम तो बहुत धमाल होने वाला ऐसा लग रहा है।
0: ओ जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइन के लिए। वैसे हाँ क्या कह रही हैं बताइए।
1: हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि कहते हैं जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कहीं ठहर से जाते हैं। जैसे हमारे अमन जी के अंदर वो रोबोटिक मैन अभी भी ठहरा हुआ है, जिसको लड़कियों से तो गुफ्तगु करनी आती थी बट उससे कभी गहरी दोस्ती नहीं बना पाए, क्यों जी?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी उनसे बातें होती थी मैं उन्हें कहता था दीदी
1: दीदी हाय।
0: बस
1: तो इनका दीदी नहीं, नहीं इनका दीदी हाय तो ऐसा होता था, दीदी हाय उधर से होता था, हाय सलीमा ये क्या कह दी सब मैं बाय।
0: जी बाय,
1: तो ऐसे कहके बिचारी निकल लेती थी।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो चलिए चलते हैं। हाँ और थोड़ी और सी बातों को आपको बताते हैं कि मतलब हमारे अंदर कुछ कहीं ठहर जाता था लेकिन जब स्कूल की वो घंटी बजती थी, कॉलेज की वो पहली क्लास और पीछे वाली सीट पर बैठकर दोस्तों के साथ हंसना। वैसे मुझे याद है कि आपके कॉलेज का पहला दिन बहुत खास हुआ था, क्यों जी?
0: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खास।
1: हाँ तो आप बताएंगे या मैं बताऊं?
0: आप ही बता दीजिए।
1: नहीं हाले भैया तो आपकी जुबानी होनी चाहिए, हम क्यों बताएं?
0: नहीं, एक्चुअली अच्छा होगा कि आप ही बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा ना।
1: चलिए पहले अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं आपका हाले दिल सुनाते हैं सभी को। तो भाई कैंटीन की चाय भी होती है कहीं ना कहीं, आपको याद होगा वो कैंटीन के वक्त जब हम पूरी तरह से थक हार के और ऐसे लगता था बस बेल लगे और तुरंत हम पहुंच जाए, अब बहुत हो गया प्रोफेशन ने बहुत लेक्चर दे लिया, और वाकई लेक्चर देते थे या बोर करते थे, मतलब ऐसा लगता था कि हम औरतों का प्रपंच तो अच्छा, ये लेक्चर क्यों बन, मतलब लेक्चरर क्यों बन गए हैं, इनसे बेहतर तो हम लेक्चर दे लें। तो ऐसी फीलिंग आती थी, उसके बाद में कैंटीन की चाय सुकून दे जाती थी और प्रैक्टिकल के नाम पर ढेर सारी मस्ती, और कभी कभी किसी एक चेहरे का अचानक बहुत खास लगने लगना। हाँ दोस्तों, तो आज का सफर उन्हीं दिनों को याद करने का है, क्यों जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, आज भाई किसी का पोल पट्टी खुलवा के रहेंगे।
0: okay,
1: वो दिन जब, हाँ जी, वो दिन जब जेब में पैसे कम होते थे लेकिन खुशियां बेहिसाब होती थी, क्योंकि दोस्त हमारे साथ होते थे, उनसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है।
0: नहीं।
1: वो दिन जब हम एक टिफिन मतलब होता था और पूरा ग्रुप खाया करता था, याद है, एक एक बाइट में सभी का पेट भर जाता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और फिर भी दोस्ती कभी भी कम नहीं होती थी।
0: नहीं।
1: और वो दिन जब किसी का सिर्फ हाय कह देना, जैसा अभी आपने कहा, पूरे दिन का सबसे बड़ी मतलब खुशी होती, लेकिन आपके तरीके वाली नहीं, हमारे तरीके वाली।
0: अच्छा,
1: हाय जी, हेलो जी, कैसे हो जी? अच्छा, हाँ जी, ऐसे करते हुए। अब आपकी तरह कोई बोल, हाय दीदी, दीदी तो गई, दीदी निकल ली। ऐसे वाला हाय नहीं कहना है, हाय चाल पूछते हैं, मरहम लगाते हैं हाय कहके, या फिर ऐसे कहते हैं हाय तौबा क्या कह दिया इस बंदे ने मेरे से। हाँ तो तो आज बस इन्हीं सब बातों पे हो रही है, और जहाँ दोस्ती होती है वहाँ पे शरारतें भी होती हैं, कहीं कभी कभार पहली मोहब्बत भी होती है। क्या आपको कभी एहसास हुआ पहली मोहब्बत का?
0: ओके, फिलहाल तो हम गाना सुनेंगे।
1: ठीक है, तो चलिए भाई पंडित जी के सॉन्ग की ओर चलते हैं, फिर आते हैं हम, डिस्क्लोज जरूर करेंगे, इनको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आज तो आज से अमन ने बहुत बड़ी गलती कर ली और इनवाइट करके।
0: जी, एंजॉय कीजिए गाने को
1: जी।

गाने में हम ऐड करना चाहेंगे नागेश्वर ढाकर जी को, क्योंकि ये इनका कहीं ना कहीं बहुत पसंदीदा गाना। कहते हैं आजकल तो हाय मुंह से निकलता ही नहीं है, खाली आए हाय निकलता है। अच्छा, है ना, बहुत शैतान हो रहे हैं आप। हाँ, यही बात है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और मेरे पास एम ताहिर साहब जी का एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया हुआ है। लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार प्यार जामन जी, जब माइक पर अपनी कशिश भरी आवाज का जादू बिखेर रहे थे, तभी शो में आरजे आकांक्षा जी की एंट्री ने मानो स्टूडियो की पूरी फिजा ही बदल दी है। अपनी बेमिसाल हाजिर जवाबी संजीदा अंदाज और शहद सी मीठी आवाज से आकांक्षा जी ने महफिल में वो रंग जमा दिया है और जैसे कि हम सभी सुनने वालों के बस झूम उठे हैं। और यह शो तो महज एक कार्यक्रम न रहकर सीधे दिलों को छूने वाला एक यादगार कारवा बन गया है, क्या कहती हैं?
1: कारवा बोला है तो कार से कौन कौन जा रहा है वहाँ वहाँ वहाँ ये भी बता दे।
0: फिलहाल ये फिर दे।
2: अमन जी, आपके रेडियो हॉट स्टार में जितने भी आज है उसमें सबसे ज्यादा बोलने का जो रिकॉर्ड है शायद आकांक्षा जी का ही है, और यही सबसे ज्यादा बात करती हैं, बोलती है, सबसे ज़्यादा बोलने में मेहनत करती है, और इनकी बात हम सुनते भी हैं और बहुत ही दिल लगा के सुनते हैं, समझते हैं। तो बेस्ट हमारी आरजे आकांक्षा जी, ये आपकी उपलब्धि है और आप बिल्कुल थकती भी नहीं है, आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी भी है और यह आपको बिल्कुल तरोताज़ा रखती है, और हम आपकी बात सुन के हम खुद तरोताज़ा महसूस करते हैं, हमारी नींद भी गायब हो जाती है जब आपका वो प्रोग्राम 10 बजे के बाद भी आता है तो हम सुनते रहते हैं। कई बार मैं 11:30 बजे तक भी सुन लेता हूँ, और आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, तो शुक्रिया। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक देने के लिए। और ये फीडबैक इन प्रियंका जी क्या कहती हैं, इनकी भी सुनते हैं।
3: हेलो आकांक्षा जी, आज आप अमन जी के प्रोग्राम में आए उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमने कभी आपको फीडबैक नहीं दिया, ना कभी आपके प्रोग्राम में कुछ गुनगुना पाए, तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा।
3: मेरी तिरछी नज़र में है जादू। अच्छा। मेरी पतली कमर में है जादू।
0: ओहो।
3: जादू है मेरी बातों में, मेरी बाली उम्र में है जादू।
0: ओ माय
3: मेरी गली में घर में है जादू।
0: अच्छा है का?
3: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, बट आज जिस दिन आप आए हैं उस दिन आज मुझे फीवर आ रहा है तो थोड़ा सा आवाज अच्छी नहीं है।
0: अरे कोई बात नहीं है, कोनो बात नहीं, का फीडबैक दे दिया ना। वैसे आपने कहा कि आपकी पतली कमर में, आपकी तिरछी नजर में, सच में का ऐसा है का? वैसे आप क्या कर रही हैं आरजे आकांक्षा जी?
1: मुझे लगता है कि आजकल ये हमारे भारत देश में जितना काला जादू है वो सब परी जी ही करती है। I'm so sorry, but मैं ऐसी ही हूँ, I'm sorry, मैं मजाक कर लेती।
0: कोई बात नहीं, कोई बात।
1: और दीपक जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और एम ताहिर जी का और बाकी सभी लिसनर्स का जिन्होंने जहाँ से भी फीडबैक दिया। भाई अब चलते हैं, भाई इन फीडबैक में आप मुझे उलझा नहीं सकते हैं।
0: अच्छा, उलझा नहीं रहा। हाँ,
1: अभी कुछ और फीडबैक्स बाकी हैं तो जरा फटाफट से लीजिए, आज हमें आपका पोल खोल करना है।
0: ऐसा कौन सा पोल है जो आप खोलने वाली हैं?
1: अब बस हम खोलने वाले हैं, कहीं से तो टावर का कनेक्शन कहीं और तो फिट करके रहेंगे आज हम।
0: मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
1: नहीं आप समझिए भी नहीं, हमें जिसको समझाना भी समझा लेंगे, फीडबैक बाकी है तो प्लीज उसे कम्प्लीट करें।
0: अच्छा जी, तो फीडबैक हो चुका है, फिलहाल आप अपनी अपना कंटिन्यू कीजिए। हम तो गाना
1: आप पहला दिन बताएंगे या फिर पहली मोहब्बत का इजहार करेंगे?
0: पहली मोहब्बत और पहला दिन ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, मेरा यानी पहला दिन बहुत ही खास था, वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि
1: बेशक बताइए। और आपकी पहली मोहब्बत हम बताएंगे। उससे पहले हम एक बात और कहना भी चाहेंगे, लेकिन आप पहले कंप्लीट करिए क्योंकि ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। आप अगर कहना चाह रहे तो कहिए।
0: अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मतलब एक तो मेरा एडमिशन बहुत लेट से हुआ, बहुत ही लेट से, मतलब एडमिशन होने वाला नहीं था, मैंने उसका कुछ यह नहीं था रीज़न, लेकिन बस इत्तेफाक से वो 10 अक्टूबर का दिन था और उस दिन मेरा एडमिशन हुआ। तो एडमिशन के बाद
1: वो 10 अगस्त का दिन था, वो 10 अगस्त का दिन था जब मैं इस धरती पर अवतरित हुई थी, मुझे याद है।
0: आपकी बात मैं थोड़ा करूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना, वो 10 अक्टूबर का दिन था जब मेरा एडमिशन।
1: नहीं, मैं आपकी बात कर ही कहा रही, मैं भी अपनी बात कर रही ना, मैं आपकी बात कह ही कह रही, मैं आपकी बात सुन ही कह रही, मैं तो अपने ख्यालों में खोई हूँ।
0: Oh my God।
1: चलिए मैं आपको घुमाती नहीं, प्लीज कंटिन्यू करिए।
0: ओके, तो मतलब वो दिन था कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ में जा रहा था, वो भी यानी साइकिल से, तो साइकिल से ये लोग मुझे बहुत उलझा रहे थे कि तुम आगे वाला इन बेंच पर इनवाइट बैठना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अजीब टाइप का स्टूडेंट होते हैं जो तुम्हें इन तंग करेंगे, और तुम इन पीछे बैठना, आगे आगे इन सवालों का जवाब मत देना, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं जो अपने हाई स्कूल में मैं नंबर 1 था ना, तो और मैं हमेशा आगे वाला बेंच पर ही मैं वहाँ पे था, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ये तुम्हारा हाई स्कूल नहीं है कि तुम वहाँ पे जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा, तुमको वहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ वहाँ पे ऐसे रहना पड़ेगा। तो लेकिन मैं नहीं माना, यानी कि पहले ही यानी कि क्लास में एंट्री हुई और अगला बेंच ही खाली था, मैं आगे बेंच पर ही बैठा और वहाँ पे कुछ ऐसे वो बेंच उन लोगों के लिए खाली था जो मतलब कुछ यानी दबंग टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब वो उन लोग के लिए था। तो और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं, मैंने पहले बार इन बैठ गया और उसके बाद से वहाँ पे डीडी शर्मा सर एक नाम के आए यानी सर, और उन्होंने अटेंडेंस लेना स्टार्ट किया। अटेंडेंस के बाद अब वो यानी कि पढ़ाई के बारे में जब वो इन पूछने लगे तो उसके बाद से क्या हुआ कि वो लोग जो यानी कि 4-5 दोस्त जो थे मतलब वो लोग आकर इन बैठे और यहाँ बैठे और मुझे ठेलते ठेलते उस ओर कर दिए मतलब, और उस और एक क्या हुआ कि उधर से
1: मतलब अमन जी ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये जहाँ बैठे हुए थे वहाँ 4-5 लोग धीरे धीरे करके आने लगे और इनको ढकेलते ढकेलते सीट के उस पार पहुँचा दिया, फिर उसके बाद में जी हाँ ये हुआ
0: आगे से मतलब आकर यानी बैठ गया मैंने उस साइड से आकर,
1: मतलब लास्ट में एक बंदा आके दबा दिया इनको, मतलब बिठा दिया इस तरह बैठ गया कि ये मतलब दबके रहें और इनको दब्बू बना दिया जाए कुल मिला के। पर उनको क्या मालूम कि आपके अंदर इमोशन ही नहीं, आप तो एक रोबोटिक मैन है।
0: बिल्कुल
1: जिनके पास
0: उसके बाद से क्या हुआ कि अब यानी सर हाजिरी बोलने के बाद ये कहें कि हाँ हमने कल आप लोग से कहा था इस यानी टॉपिक को यानी 1688 का जो यानी गौरवपुर क्रांति है उसको पढ़ के आने के बारे में, तो आप में से यानी कि कौन बताएगा कि 1688 का गौरवपुर क्रांति क्या हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि यानी कि कोई हाथ नहीं उठा रहा है और उसका यानी टॉपिक मैं अपने यानी कि टेंथ में मतलब इन पढ़ चुका था ऑलरेडी। तो फिर मैंने इन्हें धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, तो वो जब मैंने अपना हाथ उठाया तो वो कह रहे हैं कि अच्छा यानी कि आप बोलिएगा, हम बोले जी। तो फिर मैं
1: तो जो वो झंडा ऊपर उठा है उसके बाद से वो झंडा कभी डाउन हुआ ही नहीं।
0: जी बिल्कुल, वो उसके बाद से उठा तो मतलब उठा ही रह गया, बहुत मजा आया उसके बाद। उसके बाद से जो मेरा वहाँ पे मतलब वो लोग जो थे ना वो मेरे बहुत ही सपोर्ट, मतलब मेरा समझ लो कि मेरा वो इन बॉडीगार्ड की तरह वो लोग मेरे साथ देने के दोस्त रहे हमेशा। उन लोगों ने
1: तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं एक सीख भी मिलती है लिसनर्स, इसलिए मैंने कहा कि अपने जुबानी आरजे अमन आप सभी को ये पैगाम पहुंचाएं कि कई दफा होता है दुनिया हमें ढकेलने गिराने और दबाने की कोशिश करती है, पर हमारी हिम्मत ही है वो हथियार जो हमें हर एक बेड़ियों से आजाद कराती है। जैसे हमारे आरजे अमन ने, अगर वो वहीं पे दब्बू होके रह जाते और गुरु जी के सवाल का जवाब ना देते तो शायद आज ये कहीं और होते, यहाँ ना होते। और जब इन्होंने हिम्मत किया, इन्होंने जवाब दिया, उसके बाद इन्होंने सारी बेड़ियों को तोड़ा और जो इम्पॉसिबल लगता है ना वही एक्चुअल में पॉसिबिलिटी का सबसे बड़ा मतलब कारण होता है, और जब हम उस पर थोड़े से गौर करते हैं थोड़ा सा मेहनत करते हैं, और कई दफा होता है हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि हम मतलब घबरा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमसे बिछड़ गया हो परमानेंट हमेशा के लिए, जैसे हमारा कोई साथी या कोई भी, तो हम ये कहते हैं मतलब हम उस चीज को लेकर के विलाप करने लगते, रोने लगते, दुख मनाने लगते, जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए अब आगे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, बी प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और हम क्या करते हैं इमोशनल हो जाते हैं। तो हमेशा बैलेंस बना के रखिए और जहां तक हो सके 60-70% चीज आप प्रैक्टिकल करिए, 30% आप अपने इमोशन को जिंदा रखिए, 100% इमोशनल रहिए बट आपको कवर करके रखना है, क्योंकि अगर आप हाई इमोशनली इंसान होंगे तो सामने वाला आपका हमेशा फायदा उठाएगा और फायदा नहीं उठाने दिए, इसलिए हम इनको रोबोटिक मैन कहते हैं, इनके पास कभी दिल है ही नहीं, हमने कितनी बार खोलना टटोलना ठोकना पीटना चाह बट इनका आज तक कुछ ना हो पाया, हमें लगता है जन्म कुछ होगा क्यों जी, होगा या नहीं होगा,
0: ना ना इम्पॉसिबल है, मैं रोबोटिक इंसान हूं।
1: आंटी हमको दौड़ा के मारेंगी, हमारे लड़के को बिगाड़ दिया, एक तो पहले से बिगड़ा था बच्चा को चाहे लड़की ने और बिगाड़ दिया।
0: नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल अगला गाना सुनवा दे।
1: हाँ अगला गाना सुनाइए, उसके बाद हम अपनी कहानी सुनाते हैं।
0: ओके, तो अगला
1: हमारी भी प्यार की कहानी है ना, हमारा भी किस्सा है, सुनना चाहेंगे?
0: बिल्कुल सुना दीजिएगा, लेकिन अगला गाना जो सुनिए यानी कि बागेश्वर निषाद जी का चेहरा तेरा किताब, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और आप सुन रहे हैं मुझे और मेरे साथ में है आज के हमारे गेस्ट आरजे आकांक्षा जी। तो बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी और आरजे आकांक्षा जी, आप इन दोनों को मेरा सादर नमस्कार है और मेरे जन्मदिन पर विश करने वाले हमारे हॉट स्टार इन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना है भाई, इस गाने को सुनकर तो दिल बाग बाग हो गया। अच्छा जी। निशांत राय बोल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है और आरजे आकांक्षा जी को भी गुड इवनिंग। आत्माराम जी ये लिखते हैं कि आपकी कहानी हमें बहुत ही पसंद आई अमन सर जी, और कुछ कह भी रहे हैं, सुनते हैं।
1: अमन सर जी बात तो है, एक बार कुछ साल पहले आप भी स्टूडेंट थे सर, तो आज आप टीचर हैं, लेकिन आपको भी तो कोई याद होगी सर, आप बिल्कुल रेडियो हॉटस्टार पर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ साथ। शुक्रिया। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: जी जी, थैंक यू सो मच आपका। और नरेंद्र यानी मिश्रा जी लिखते हैं कि आरजे आकांक्षा जी, आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू है जो सुनते ही दिल को अपना बना लेता है। आपकी ये सुरीली आवाज़ सुनकर हर कोई आपका दीवाना बन जाता है। आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने को जी चाहता है। और सच कहूँ तो आपकी आवाज़ के हम भी दीवाने हैं और आपकी आवाज़ ने हमें आपका दीवाना बना दिया है। रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। निशांत राय बोल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना था। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाने की डिमांड है, थैंक यू सो मच। और आमना खान जी क्या कहती हैं, जरा सुनते हैं।

माफ़ करना, मैं पर्दों की बातें और पर्दों की मुलाकातों के बारे में तो नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ अभी स्कूल के बारे में बातें चल रही है तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैं जब हॉस्टल में थे हम लोग, तो हाँ हमारे जो हॉस्टल की बाउंड्री को लग के किसी का घर था, किसी टीचर का घर था, और टीचर के घर में घर आंगन भी

0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और ये फीडबैक सुन लेते हैं, इन प्रियंका जी क्या कहती हैं।
1: आकांक्षा जी, कल नाइट में हमने एक सॉन्ग की डिमांड करी थी, वो सॉन्ग किसी को सुनाना था जो कि पूरे मन से सुनाना था, तो आज ये मैं सॉन्ग गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा,
1: और वो सॉन्ग आपको भी अच्छा लगा था। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
0: क्या बात है?

0: नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हूँ। थैंक यू।
1: ओके जी, तो ये इनका फीडबैक था। अब आप क्या कहना चाहेंगी आरजे आकांक्षा जी? वैसे बहुत सारे गानों की डिमांड भी है, जरा इसका भी ख्याल कीजिएगा प्लीज।
2: आज डिमांड को साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज तो आपने हमको इनवाइट किया तो गुफ्तगू खत्म कैसे हो सकती। अच्छा, तो बातें शुरू होती, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, आपको तो पता ही है।
1: अच्छा जी, ओहो, ये
2: हाँ
1: तो
2: जी। वैसे इस गाने में, अगर मैं इस गाने की बात करूं, और एक फीडबैक आया हुआ था कि मेरी आवाज़ उन्हें काफ़ी अच्छी लगी, तो उनको सबसे पहले शुक्रिया और आप सभी का शुक्रिया। और एक बात मैं भी कहना चाहूंगी, मुझे मेरी आवाज़ खुद अच्छी लगती है, ये सच है।
1: हाँ, वो तो है,
2: मैं अपनी रिकॉर्डिंग में खुद सुनती हूँ।
1: बिल्कुल, वो तो है, बिल्कुल अच्छी लगती है और सभी आपके दीवाने।
2: और जब और एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे आप लोग मेरी बात मानते हैं तो एक बात ये भी मान लीजिएगा, खुद से प्यार करिए, खुद में ही मतलब खुश रहना सीखिए, उसके बाद देखिए लोग आपको कितना पसंद करेंगे। जैसे मैं खुद को करती हूँ, मैं कभी अपनी चीज को बुरा कह ही नहीं सकती, खुद के मुंह से खुद ही तारीफ कर लेती हूँ। जब आप खुद करना सीख जाएंगे, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग सोचेंगे आखिर में ये अकेले ही सब कुछ कैसे हैंडल कर लेता है लेती है, तो वो जानने के लिए वो क्यूरियोसिटी उनके मन में मचेगी। और आप कभी हेल्प नहीं लोगे किसी को, तो वो और ज्यादा क्यूरियोसिटी मचेगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। तो ये थोड़ा सा अपनाइए, आप सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसका। और जो अभी गाना हमारी परी जी ने सुनाया है, उसका जो एक पैराग्राफ है वो मुझे बेहद पसंद है। और मेरे दिल की ये दिल्ली ख्वाहिश है कि आज दिल्ली ख्वाहिश नहीं, आज मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी, आज मेरे दिल की ही ख्वाहिश है। तो मैं उसको गुनगुना दूँ पहले, फिर बताती।

0: रियली वो मेरे लिए एक इंसान है ही नहीं,
1: जी,
0: पूरी दुनिया,
1: लेकिन
0: पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स और देवता भी
1: एक
0: है।
1: चीज मैं बता दूं कि मेरी भी कल एक डिमांड थी जो ये पूरी नहीं हुई, लेकिन इस गाने को सुनने के बाद अब मेरा मन बन गया है इस गाने को थोड़ा सुना जाए। बिल्कुल, तो सुनवाते हैं पहले इस गाने को, फिर आते हैं अगले डिमांड की तरफ, और वो अगला डिमांड होगा राहुल पासी जी का। सुनते हैं इस गाने को थोड़ा।

0: अगर मैं इसको सुनूंगा तो मुझे भी नींद आ ही जाएगी। लेकिन आरजे आकांक्षा जी, आप अपनी स्टोरी भी बताने वाली थी, वो तो मुझे ये नहीं सुनना है, लेकिन फिलहाल फीडबैक शामिल कर लूँ, फिर बताता हूँ आपसे, और आपसे स्टोरी सुनूंगा आपका, है ना?
1: जरूर।
2: आरजे अमन सर जी, आरजे आकांक्षा जी,
0: बोलिए।
2: आप दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम आकांक्षा जी, और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी बहन सभी को भी धन्यवाद देते हैं। आप दोनों आदमी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू आपका। और यहाँ पे शिल्पा में जी लिखते हैं कि तुम ही मेरी मंदिर वाला सुपर ऑसम सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि क्या आरजे आकांक्षा जी के भोजपुरी भी इसमें उनकी पसंद का तड़का लग सकता है। अरे क्यों नहीं लग सकता है। और यहाँ पे लिखते हैं, आकांक्षा जी आपकी दिलकश आवाज में एक नगमा मैं सुनना चाहता हूँ, प्लीज गुनगुना दीजिए। मेरे महबूब शायद आप नाराज हो मुझसे लता जी की आवाज का। ओके। और दीपक कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी अच्छा ये फिर
3: अमन जी आपके रेडियो हॉट स्टार,
0: ये तो हो चुका है। ओके कोई बात नहीं। फिलहाल मैं अब आपका स्टोरी जानना चाहूंगा। आरजे आकांक्षा जी आप कुछ बताने वाली थी।
1: तो कौन कौन सी सुनाऊं ये सोच रही हूँ।
0: अच्छा माय गॉड कितने हैं।
1: एक किस्से हो तो आपसे गुफ्तगू की जाए, इसलिए तो कहती हूँ मेरा शुरू होगा तो खत्म नहीं होगा जनाब। आप एक पन्ना खोलेंगे मैं दूसरा लिख के रख दूंगी।
0: ओह माय गॉड इतने सारे स्टोरीज।
1: हाँ जी, और वैसे भी कहते हैं ना कि कलाकार को फन की क्या कमी। आप एक जानने पे आएंगे हम दूसरा करके बैठ जाएंगे तब तक कारनामा। फिलहाल ही मजाक था। अच्छा। नहीं सीरियस मत लीजिएगा। हमारे साथ में कुमार साहब जुड़े हुए हैं एमपी रीवा से। लिखते हैं, वाह क्या बात बोली है जो आपने स्टोरी बोली थी उसपे। लिखते हैं, इस लड़की का मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, गिरते हुए को उठाना इसकी अदा है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये काम आप करते हैं हमारी लाइफ में, ये हमारे कुमार भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया एमपी रीवा से, इन्होंने अपना फीडबैक भेजा है। और समीर आलम जी भाई ये गाना सुनना चाहते हैं, उसकी इन्होंने डिमांड की है। हमारे पास दो डिमांड फिलहाल आई हुई है, आपने चूंकि खोल दिया रास्ता तो रास्ते चलते डिमांड आ गई। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि मैं बोलता ना ये चीज़ लेकिन उनको शब्दों में लाने की बस कोशिश ना करता, पर आज तुमने वो कह दिया जो शायद मुझे लिखना ही पड़ा। और हमारे प्यारे नागेश्वर जी लिखते हैं, सबको खुश कैसे रखा जाए, ये तरीका आपको भली भांति आता है। अच्छा जी।
0: क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल सही कहा। हाँ, मतलब उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ 100%।
1: और भाई नागेश्वर जी शुक्रिया। और नागेश्वर जी कहते हैं कि कोई मुझे भी सॉन्ग सुना दे, मेरा बचपन का प्यार अधूरा रह गया है। अच्छा। स्कूल में ही।
0: ओह माय गॉड,
1: तो कौन सा गाना?
0: ओह माय गॉड, अच्छा ऐसा भी है।
1: सोचे इनकी रूपा को जब वो मेला मूवी आया था ना, तब से वो जो विलन है उस मूवी का उठा के ले गया, आज तक इन्हें देखे नहीं गया है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इसी बात का अफसोस है इन्हें।
0: ओह हो, ऐसा है।
1: और उस वक्त जब ये मूवी आई थी उस वक्त बचपन में थे।
0: अच्छा, ऐसा भी है।
1: गजबे आदमी है। क्या गाना सुनना चाहते हो बाबू, बताओ जरा। और ले ले ले। भाई बचपन का प्यार है तो ऐसे ही तो पूछा जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैं तो अगला गाना सुनवाने वाला हूँ राहुल पासी जी का। आप कुछ और कहना चाहते, अपनी स्टोरी बताने वाली थी, बताइए प्लीज।
1: तो बिल्कुल बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे साथ में और कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो भाई नीना जी यानी हमारी चंगू जी आ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज नीना जी आप भी हमारी स्टोरी सुन ही लीजिए, और आप साक्षी रहेंगी जीजा जी तक ये बात पहुंचाने के लिए। तो आपस में लोग एक तो ऐसी चिटचैट कर लेते हैं कि मैं पढ़ के बस हंसने ही लगती हूँ, और आपको भी हंसी आती है इनकी बातों पर, हमारे प्यारे श्रोताओं के जो हमें चैट बॉक्स में दिखते हैं। क्या होता है, आती हंसी या नहीं आती? हाँ या ना?
0: हाँ
1: तो ऐसे बोलिए ना। ऐसा करेंगे तो ऐसे लगे कहीं अटके हुए हैं। तो इसके अलावा कमला विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गई है और बता रही है। अच्छा जी,
0: गुर्जर नाम था उसका जी, उन्होंने सही नाम बताया।
1: हाँ, गुर्जर उठा के ले गया था। ओके, तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको वो स्टोरी जो इस गाने को लेकर के है। खास करके अपने प्यार का पन्ना किसी और दिन खोलेंगे, आज अच्छा। मन नहीं कर रहा है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि जिनके लिए कहना था वो तो जा चुके हैं, तो फिलहाल वो हाँ जी
0: तो
1: वो जो दौर था वो भी ना जी, ऐसे थोड़ी ना, हमारी चीजें बड़ी खास होती हैं। तो सुनिए ना, हाँ ये भी कुछ खास कम नहीं, ये तो बेहद खास है और पता नहीं कब दोबारा इस जीवन में वो दिन दोहराया जाएगा या नहीं, पर उम्मीद है कि ऊपर वाले से एक दिन वो जरूर आएगा जब वाकई मेरा फरिश्ता मेरी आंखों के सामने सो रहा होगा और मैं सुकून से उसे बस देख रही होंगी।
0: तो
1: हुआ यू था, हो जाएगा वाकई,
0: बिल्कुल
1: इतना इतना इतना भी आसान नहीं जितना आप समझते हैं।
0: और मुझे मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हो जाएगा 100%
1: जी, आपने कह दिया तो हो सकता है ऊपर वाला सच्चे दिल की फरियाद सुन ले।
0: बिल्कुल 100% मेरा दिल कहता है कि हो जाएगा
1: जी। तो बताते क्या हुआ था, बारिश का दिन था, बहुत ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी ताबड़तोड़, ठीक है, और रात के बजे थे 2:30।
0: अच्छा।
1: और लखनऊ से यहाँ तक का सफर पूरा करना था और लगातार बारिश हो रही थी और हमारी नाराजगी ने सामने वाले को इतना मजबूर कर दिया कि उस ताबड़तोड़ बारिश में मतलब साथ में 2-3 लोग और भी हों और उनको ले करके वो सफर ऐसा उन्होंने तय किया। और मेरा मतलब जी घबरा रहा था कि मतलब फोन नहीं उठ रहा था, अब भाई बारिश हुई कोई कौन फोन उठाएगा, पानी कौन अपने फोन में डालेगा, लेकिन दिल तो हमारा घबरा ही रहा था कि भाई क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उस बारिश में अचानक से चारों ओर अंधेरा है, सन्नाटा है, बारिश तेजी से हो रही, इमेजिन करते रहिए तेजी से बारिश हो रही है रफ्तार से और मतलब आपको कोई आता जाता नहीं दिखेगा, एक आध गाड़ी कहीं से आ रही थी और जब भी गाड़ी कोई आए तो ऐसा मतलब होता नहीं आहट की कहीं वो तो नहीं ऐसे वाला, पर हर बार यही हो कि नहीं वो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, जो आप जिससे लगाव रखते हैं उसके आने की आहट भी आपको फील हो जाती है। तो हाँ, तो ये हुआ, फिर बारिश बहुत तेजी से, मैं अंदर आऊं बाहर जाऊं अंदर आऊं बाहर जाऊं, भाई कमरे में था, लाइट थी नहीं, एक एक आहट का भी एहसास होता था, मतलब आवाज होती थी तो, और उधर से बेचैनी की मतलब कब तक आएंगे, क्या हुआ है, आए क्यों नहीं, क्या कहीं रुके हुए हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है क्या वो आ रहे हैं,
0: इंतजार और इन सबके नहीं करना।
1: नहीं नहीं नहीं ये नहीं, यहाँ पे गाना नहीं, यहाँ पे कब आओगे।
0: अच्छा।
1: जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे,
0: अच्छा।
1: देर ना हो जाए कहीं देर ना,
0: मतलब 2:30 बज चुके थे रात के।
1: बिल्कुल ये बिल्कुल सच है। तो मतलब 2:30 बज गए थे और आज भी हमें शो में अभी एंट्री लेनी थी, आधे घंटा हमने इसीलिए देर किया।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा नाराजगी चल रही है तो वो तो चलती रहेगी, आज नहीं तो कल, हो सकता है मिट जाए, हो सकता है ना भी मिटो, तो देखने की बात है। तो हाँ, फिर इनका आना हुआ, एंट्री हुई इनकी राजा साहब की, सामने से ऐसी अच्छा दूर से ही पता चल गया कि यही है, कोई और नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो जब इनकी एंट्री हुई मतलब उधर से वो थे, इधर से हम थे, और उसके बाद बाय गॉड सब सन्नाटा था।
0: अच्छा।
1: मतलब उनके साथ में जो लोग थे वो तो थे ही, लेकिन ऐसा लगता था और कोई है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: फिर उसके बाद में मतलब घर में आना और उनका सोना, वो तो सो गए लेकिन हम रात भर केवल उनको निहारते रह गए।
0: अच्छा।
1: तो उसी मंजर को याद करके ये जो स्टैंजा है वो मेरे लिए एकदम खास बन जाता है। बहुत
0: प्यारा
1: लगता है। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूं, वैसे जो हवा चल रही थी, जो बारिश की आवाजें आ रही थी, तो पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुना दूं, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कोई के जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तो
0: मुझे
1: वो
0: लगा
1: फरिश्ते से कम
0: नहीं, कॉलेज की स्टोरी सुनाने वाली है, आप तो कुछ और सुना दी।
1: नहीं, तो कॉलेज वाली स्टोरी तो मैं नहीं सुनाने वाली। आपने
0: अच्छा
1: सुनाई, आपने बताई।
0: अच्छा, फिलहाल हम तो गाना सुनाने वाले हैं
1: ना, तो वही सुनते हैं ना, काहे को एक दूसरे का पोल खोले।
0: अच्छा जी, ऐसा
1: किसी और दिन के लिए रखते हैं।
0: ओके,
1: सारा आज ही थोड़ी ना डिस्क्लोज करना है।
0: पासी जी का मैं तब तक गाना सुनवाता हूँ, है कि नहीं?
1: जी जी जी बेशक।
0: तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं, तो फीडबैक में हम पहले निशांत अग्रवाल जी की बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है और ये प्रियंका जी क्या कहती है जरा इनके सुनते हैं।
1: हो नाम ना लो पर कुछ तो कहो,
0: क्या
1: हल्का सा कोई इशारा तो दो,
0: क्या क्या
1: मेरी

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू
1: जी। वेलकम है आपका भी। और फिलहाल मैं बता रहा हूँ, हाँ जी अब बताइए आरजे आकांक्षा जी।
2: वैसे हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैसे मैंने इनको समझने में थोड़ी देर की, मैं समझने में लगी हुई थी कि इन फोटो में तीनों में से ये हैं कौन, फिर बाद में मेरा ध्यान गया कि अच्छा ये कमल जी हैं। अच्छा। और इनका प्यारा नाम है कमल नयन। अच्छा। तो इन्होंने लिखा हुआ कमाला, अब मैं सोच रही हूँ ये कमाला में माला वाली कमाला है या कर, थोड़ा सा कंफ्यूज थी।
1: यानी कि मैं इनका नाम को मैं ठीक कर दूं?
2: हाँ कमल नयन।
1: हाँ तो एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा,
2: वो आप थोड़े से बाद में कर लीजिएगा, खैर वो जाने दीजिए अभी के लिए, इग्नोर करिए।
1: अरे मैंने, और मैंने ठीक उनका नाम यानी के मतलब नाम है यानी के कमल विश्व
2: नयन, कमल नयन
1: सच में
2: सच्ची मुच्ची में कमल नयन विश्वकर्मा।
1: अच्छा तो मैंने इनका नाम कर दिया है कमल नयन, है ना?
2: कमल जैसे नयन वाले।
1: ओके तो फिलहाल मैंने इनका नाम को यहाँ पे चेंज कर दिया है। ओके अब ठीक हो गया
2: जी। तो हाँ जी, और इनकी एंट्री हो गई है। तो भाई ये इतने दिनों से परेशान थे, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक वाला स्वागत करना चाहूंगी कमल नयन जी। ये हमारे बहुत ही खास श्रोता है और इनका वैसे एक सिग्नेचर सॉन्ग है, लेकिन आज मैं अपनी ओर से हमारे प्यारे एक लिसनर है जो हमारे साथ में जुड़े, बड़ी देर से भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समीर आलम जी, और इनका गाना है एक मेरे गली की लड़की। तो ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगी अपने कमल जी को, क्योंकि आज ये कमल नहीं कमाला बन के आए हुए हैं। तो हम अपनी कमाला जी को ही गाना

0: एक मेरी गली की लड़की चुपके से दिल ले गई, सच में बहुत ही प्यारा गाना था। और आपको कैसा लगा आरजे आकांक्षा जी? वैसे मेरे पास फीडबैक यहाँ पे बहुत सारे हैं, पहले मैं फीडबैक शामिल करता हूँ। और ये निकला जी का बहुत सारे फीडबैक इनके आए हुए हैं, लेकिन मैं इसी को लेता हूँ।
1: गुड इवनिंग मिस्टर आरजे अमन।
0: गुड इवनिंग सर।
1: व्हाट अ वंडरफुल प्रोग्राम फ्रॉम आरजे आकांक्षा। She's a wonderful RJ. I like it. She did very well last night. I'm so happy. People were so happy.
0: Thank you.
1: Oh, really? It's very good program.
0: Thank you so much.
1: Tell her I'm so, so grateful.
0: Thank you so much, dear Nicholas. Okay, and फिलहाल मेरे पास और फीडबैक है। और ओके हो जाए भाई। हाँ, अजय कुछ जी लिखते हैं कि मेरा अभी तो मैं नहीं कह सकता। और इनके विष्णु जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही मस्त मस्त गाने प्ले हो रहे हैं, और आरजे आकांक्षा जी आपने तो वो डबल धमाल मचा दिया है, मजा आ गया इसे आपके प्रोग्राम को सुनकर। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि एक मेरी गली की लड़की चुपके से दिल लग गई, वह क्या खूबसूरत ये गाना है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत इस गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, तो आज के जितने भी गाने हैं माय गॉड बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, हम क्या ही बताएं, आप कहिए।
2: मैं क्या ही कहूँ, मुझे ये गाना पसंद आया था इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि इसे प्ले कर दीजिए। और इसके अलावा दो और रिक्वेस्ट मेरी जानिब से है, बाकी आप समझदार हैं, आपकी तरफ भी काफी रिक्वेस्ट आई होगी, तो आपको जो जब प्ले करना हो आपके ऊपर है वो आप प्ले कर सकते हैं। फिलहाल चैट बॉक्स में भी काफी ज्यादा गुफ्तगू चल रही है इन लोगों की, और वो मैं लगातार देख रही हूँ।
0: अच्छा।
2: और हमारे अशोक पाल जी ने भी भाई फीडबैक अपना दे दिया है हमको लेकर के, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ में बने हुए हैं। और काफी हंसी मजाक चल रहा है, क्या मतलब हम आते ही हंसी लेके आते हैं क्या?
0: ऐसा तो है, बिल्कुल ऐसा है,
2: मतलब हमें देख के हंसी आती है, सुन के हंसी आता है।
0: अरे आपकी आवाज में वो जादू है, वो कहते हैं ना, हम ये गाना है कि तेरे चेहरे में वो जादू है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी आवाज में वो जादू है कि लोग खींचे चले आते हैं।
2: ऐसा भी है?
0: हाँ, ऐसा ही है।
2: तो मतलब कल से मैं बाकी सारे काम छोड़ के, मतलब अगर मुझे किसी को स्विगी, मतलब जैसे भूख लगी हो और मुझे कुछ ऑर्डर करना, तो स्विगी वाला जिधर से जा रहा हो उसको दूर से बुला दूं, बस वो आ जाएगा खींचा चला हुआ।
0: हाँ, बिल्कुल।
2: और आप... उसका सामान लूट लूं, उसके बाद उसे जाने दूं। कहना क्या चाह रहे हैं आप ऑन एयर? मतलब कल को कुछ चोरी नहीं, कल को कुछ किसी के इर्द गिर्द चोरी हुआ तो यही कहेगा कि आकांक्षा जी आई थी, प्यार से बोल दी और हमको लूट लिया उन्होंने।
0: ओहो, हमें तो लूट लिया मिलके होने वाले ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब कुछ और था। खैर, फिलहाल आप क्या कह रही हैं बताइए।
2: तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कॉलेज की कैंटीन और दोस्ती तो याद होगी ना आपको?
0: बिल्कुल,
2: कॉलेज की जो कैंटीन होती है। हाँ,
0: जो यानी कि कॉलेज की कैंटीन होती थी, मेरे मतलब वो क्या कहते हैं, जो मेरा सब था सब ना, वो मतलब हावी जावी वाला दोस्त, वो मेरे वो मुझे मतलब यानी कि खर्चा करने देता ही नहीं था सब, बस आपको जो खाना है खा लो, बस सिर्फ यानी कि पैसा हमारा रहेगा, मतलब क्या ही बताऊं। हाँ,
2: शुक्र है आप पैसा नहीं खाते थे, आप खाने वाली चीजें ही खाते थे। क्योंकि वो तो पैसे देने को तैयार थे, खाने वाली चीज तो आपको सेलेक्ट करना होता
0: बिल्कुल,
2: था
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: है ना?
0: हाँ,
2: और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप खाने वाली चीज तो खाते पीते ही नहीं है।
0: बिल्कुल, हम तो बहुत एकदम क्या ही बोले, खाने का मुझे भूख नहीं लगती है।
2: हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ।
0: हाँ, क्योंकि मैं रोबोटिक इंसान हूँ ना, इसलिए
2: रोबोटिक इंसान है ये, चार्ज होके चलते हैं।
0: बिल्कुल सही है।
2: तो भाई साहब, आप हमें जरा ये बताइए, आप चार्ज किस समय पे होते हैं, मतलब कौन से प्लग में आप घुसते हैं चार्ज होने के लिए?
0: नहीं, बस वो जो मेरी यानी कि सुंदरता की मुराद जी है ना, वो मुझे चार्ज कर देती है ऑटोमेटिक, मैं चार्ज हो जाता हूँ।
2: अच्छा, सुंदरता की कोई मूरत भी आपके पास?
0: हाँ, वो मेरी है ना, मतलब यानी कि खुशी जी, वो मेरी आठवां अजूबा है, वो मुझे मतलब यानी चार्ज कर देती है, बस मैं चार्ज हो जाता हूँ।
2: ऐसा क्या? क्या कहते हैं, डिस्क्लोज कर दें, कल कोई पूछ रहा था चैट बॉक्स में खुशी है कौन?
0: नहीं नहीं नहीं, मतलब इसको कुछ भी यानी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं फीडबैक शामिल करता हूँ।
2: नहीं नहीं, आप बात नहीं बदल सकते हैं।
0: नहीं, मैं बात बदलना ही नहीं चाहता हूँ ना।
2: ओके तो यहाँ पे फिर एक गाना बहुत जबरदस्त बनता है, जरा आप फीडबैक लीजिए. और इस जो मतलब ये जो मूड है, जो माहौल बना हुआ है कि मैं तो खोल के रहूंगी तुम्हारी पुल पट्टी, और आप कह रहे नहीं नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं बहन कल, आज नहीं आज रहने दो. तो इस सिचुएशन पे एक गाना है, वैसे आप पहले फीडबैक ले लीजिए फिर मैं आपको सुझाती हूँ कौन सा गाना है.
3: आरजे अमन जी, मेरा एक सवाल आपसे और यही सेम सवाल मेरा आरजे आकांक्षा जी से भी है. सवाल यह है कि वो कौन सी शरारत है जो आपने बचपन में या फिर इसी स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में की, जिसको याद करके अब भी आपकी होटो मतलब आपको आप मुस्कुरा देते उस वो मजाक को या वो मस्ती को सोचकर, वो शरारत को सोचकर.
0: अगर अगर आपने ये मुझसे सवाल किया है तो आपने वो सवाल यानी गलत आदमी से कर दिया है, क्योंकि मैंने शरारत की ही नहीं है. मैं वो यानी पढ़ाकू इंसान था बस, यानी कि दिन भर वो किताबों में खोया रहता था क्योंकि मुझे शरारत यानी सोचती नहीं, मैं शरारत करता ही नहीं था. मतलब आज तक यानी टीचर ने एक छड़ी मुझे मारा ही नहीं है. मैंने ऐसे कुछ काम ही किया ही नहीं है.
2: ये किन का फीडबैक था?
0: ये आमना खान जी का था.
2: जी आमना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने अगर मूवी देखी होगी गुड बॉय और बैड बॉय, तो उसमें जो तुषार कपूर जी का रोल था वो अमन जी का समझ लीजिए, बाकी आप खुद ही समझदार हैं. इनको मैंने कई दफा सजेस्ट भी किया कि आप वो मूवी जरूर देखिए, और इन्होंने आज तक नहीं देखा होगा. क्यों नहीं देखा होगा? ना
0: नहीं देखा है, क्योंकि मुझे मूवी देखने का टाइम,
2: मुझे वक्त ही नहीं होता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता. मैं जो जब मेरे पास टाइम होता मैं चार्ज हो जाता हूँ प्लग में लग के.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना.
0: हाँ फिलहाल अगला फिल्म अगला गाना मैं प्ले कर
2: नहीं, गाना आपको अगला वही प्ले करना है जो मैंने आपको बोला है.
0: हाँ तो आप बता दीजिए वो कौन सा गाना.
2: आप व्हाट्सएप चेक करिए, तब तक मैं कुछ गुफ्तगू अच्छा, कर लेती हूँ अपने श्रोताओं से. जी हाँ, तो कॉलेज की कैंटीन ये सिर्फ खाने की जगह नहीं होती है दोस्तों, ये वो जगह होती थी जहाँ किसी की अटेंशन का हिसाब होता था, किसी की लव स्टोरी का एनालिसिस होता था. होता था ना कि हम दोस्त बैठे होते थे और अगर मान लो हम इशारों इशारों में किसी से कोई बात करना चाहें तो भी हमारा साथी दूर से ताड़ लेता था हमको. उसके बाद हाँ मैंने देखा था, छिपाओ नहीं, अब तो तुम्हें हमें ट्रीट देनी होगी, वरना मैं अंकल से बोल दूंगा, वरना मैं आंटी से बोल दूंगा, वरना अपने दोस्तों से बता दूंगा, पूरी टीम जान जाएगी और उसके बाद तुम्हारी फजीहत हो जाएगी. तो ऐसा वाला सीन होता था, वो जगह होती थी कैंटीन. और उसके बाद में किसी की लव स्टोरी का एनालिसिस होने के साथ साथ में किसी इमरजेंसी मीटिंग होता था कि नहीं, कि अगर किसी की मतलब आज भी होता है हमारी लाइफ में, जैसे अब वो चीज़ नहीं रही कि हम कैंटीन में बैठ के बातें करें इन चीज़ों पर, बट हाँ फोन होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है और हमारे दोस्त हमको हमेशा से सजेस्ट करते हैं या फिर झूठ भी बोलते हैं समटाइम्स कि हमारा रिश्ता बच जाए उसके लिए. तो ऐसा होता था वो जो कैंटीन का दौर हुआ करता था कि अगर किसी का ब्रेकअप होता था तो पूरे ग्रुप में इमरजेंसी मीटिंग हुआ करती थी, कहाँ पे, कैंटीन में बैठकर, और बोला जाता था भाई उसने आज मेरी तरफ देखा, तो बस पूरा कैंटीन की पंचायत शुरू हो जाती थी. अरे भाई कौन कौन कौन, किसने देखा, क्या वो जो नई वाली आई है, ऐसी बातें होती थी. और सच में वो दिन बहुत खास होते हैं, वो कॉलेज के वो स्कूल के. एक दफा जब वहां से निकल जाते हैं तो फिर कुछ भी मतलब उस तरह तो दोबारा नहीं होता है. और कितनी बार देखा था ये भी सवाल होता था, सिर्फ एक बार आंखों में देखा था या ऐसे ही. और फिर दोस्त कहते थे भाई मामला तो गंभीर है. असल में कॉलेज में सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता, वो हमें लोग पढ़ना सिखाता है, लोगों को पढ़ना सिखाता है. और कौन दोस्त सिर्फ मस्ती का साथ ही है, कौन मुश्किल में साथ होगा, और कौन ऐसा है कि जैसे सालों साल बात हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, फिर भी मिलते ही लगता है कि कुछ बदला नहीं है ना. दोस्त आज भी ऐसे मिलते हैं हमारे और लगता है कुछ भी नहीं बदला है. बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे, और उसी में एक मुरहा दोस्त होता है जो मतलब तब भी मुराही में अव्वल था, आज भी मुराही में अव्वल है, जब भी मिलेगा अव्वल ही रहेगा. जैसे हमारे नागेश्वर धाकर जी हैं, पूरे चैट बॉक्स का खोज खबरी में रखना है और गुफ्तगू ऐसे करनी है. मतलब बताइए इनका बचपन का प्रेम खो गया है. भाई मैंने आपसे सॉन्ग पूछा था, आपने बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सॉन्ग आप पे पूरी तरह सूटेड है, तो मैं अपनी तरफ से ये सॉन्ग के लिए स्पेशली प्ले करवाने वाली हूँ, और मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए, जितने भी लोग लाइव चैट रूम में हैं या जो जहां से भी हमें सुन रहे हैं.
0: अच्छा,
2: आप अपनी दोस्ती को याद करते हुए, नीना जी, इट्स कुमार साहब और बाकी सभी जितने भी लोग हैं, कमल जी, मतलब जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, सबके सब इस गाने में शामिल है, प्ले करिए प्लीज.
0: ओके,

0: फ्रेंड। ओह माय गॉड, लेकिन मैं उस फ्रेंड में शामिल नहीं हुआ। निशांत भाई बोले चलिए कि गाना बहुत ही प्यार लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजानन जी लेते हैं आदरणीय अमर सर जी और आदरणीय आरजे आकाशा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सभी साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है जी। वेलकम करते हैं आपका। एमडी सहेल जी लिखते हैं कि यानी किताबें तो सामने खुली रहती थी पर दिमाग में तो कोई और था। हम स्कूल पढ़ने नहीं यानी बस उनसे मिलने जाते थे और वो दर कुछ और था। यानी कि पानी इन पीने के बहाने मैं कॉरिडोर का चक्कर लगाया करता था और पढ़ाई तो एक बहाना था, असली तो यानी मकसद उनका एक दीदार पाना था। अच्छा जी, ऐसा है, बताइए। ऐसे ऐसे भी दोस्त हैं कि इनके साथ ये काम होता है।
1: नहीं नहीं, ऐसे ऐसे दोस्त नहीं है, ये महानतम श्रेणी के महानुभाव हैं। अच्छा। महापुरुष हैं, इस लोक के हैं ही नहीं, किसी अलग गोले से आते हैं जो क्लास बंक करके केवल देवियों के दर्शन करने को जाते हैं।
0: अच्छा, और यहाँ पे आमना खान जी लिखते हैं कि आरजे आकांक्षा जी मैं बात करना चाहती हूँ, अभी आप यानी कि लाइव से हमें कॉल कर लीजिए प्लीज। तो क्या करूँ, इन्हें कॉल लगा दूँ?
1: नेकी और पूछ पूछ।
0: अच्छा, लगाते हैं, बातें करते हैं इनसे।

0: आई होप कॉल रिसीव हो जाए। वहाँ रिंग हो रहा है कि नहीं ये भी समझ में नहीं आता है।
1: मारे खुशी के हो सकता है। चीनी और नमक का घोल पीने गई हूँ एनर्जी बढ़ाने के लिए।
0: यहाँ पे यानी कि कॉल इनके लग गई है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। हेलो, शायद लगता है कि मुझे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, आवाज उनकी नहीं आ रही है।
1: कर लीजिए,
0: लगाते हैं। नहीं लग पा रहा है, नेटवर्क इशू है।

0: लगता है इनको इनको इन व्हाट्सएप कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल से।
1: तो अभी तक कौन सा कॉल कर रहे थे आप, छप्पर कॉल?
0: नहीं, अभी जो मैं इनको मतलब इनके साथ कुछ अभी शायद कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, नो प्रॉब्लम। खैर आप अपनी बातें कीजिए कंटिन्यू, फिर इनको मैं बाद में कॉल लगाता हूँ।
1: मुझे लग रहा है आप अभी तक छप्पर कॉल कर रहे थे, मतलब छप्पर पे चढ़ के कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आपको नेटवर्क नहीं मिला। अब आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो शायद मिल जाए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि छप्पर छप्पर का जमाना जा चुका है ना, आप समझ नहीं पाते हैं, आप भी ना पुराने जमाने में चले जाते हैं।
0: ओके, फिलहाल अगला गाना प्ले करूं या कुछ कहना है आपको?
1: मैं कुछ कहूंगी तो फिर से कुछ ना कुछ आपसे पूछ बैठूंगी। अच्छा। तो फिर क्या चाहते हैं, कुछ पूछूं या छोड़ दूं?
0: नहीं, आपके यानी कि पूछने से भी मुझे डर लगता है। आप हमेशा उठपटांग सवाल ही करती है हमसे, जो मेरे पास,
1: मैं सीधे सीधे बात कर ही नहीं सकती।
0: आपके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वैसे अगला जो
1: आज मुझसे किसी ने कहा था, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, तो वो यहाँ पे फिलहाल साबित भी हो रहा है, मुझे दिख रहा है।
0: ओके, फिलहाल मैं अगला गाना मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, गजानन सलोकार जी का, बन के किताब करी।

0: दीपक कुमार जी का एक यानी कि सवाल है कि अमन जी, एक सवाल हमारा है, स्कूल या कॉलेज के टाइम में आपको ये कब मालूम हुआ कि दुनिया गोल है और कब पता चला? मैं आपको बता दूं कि जब यानी कि मैं 5 क्लास में था तो हमारे यानी कि सर ने बताया था कि यानी पृथ्वी गोल है, बिल्कुल
1: दुनिया गोल है।

0: बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। और शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि हर दोस्त वो कमीना होता है। सच में गाना बहुत ही फनी था, मजा आया सुन के। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अम्मा जी को प्यार भरा नमस्कार है और गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आमना खान जी अगर अपना वो नॉर्मल नंबर भेजिए, मैं इनके किस पर आपको नॉर्मल कॉल करूँ। और ये प्रियंका जी क्या कहती है, इनकी सुनते हैं।
1: अमन जी, अभी आपने जो सॉन्ग सुनाया कि बन के किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूँगा, दिल के करीब रह के तेरी धड़कन गिना करूँगा। बट आप तो कहते हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और आपके पास तो इन सब चीज़ों की फुर्सत ही नहीं थी, पर सॉन्ग में तो आप इसी तरीके से लग रहे हैं कि आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं और बहुत सी किताबों को सीने से निपटाया है। बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा था, थैंक यू।
0: तो मैंने मतलब यानी कि किताबें पढ़ी हैं ना, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। ओके, अब बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानंद जी का डिमांड बहुत ही प्यारा था, मजा आया सुन के। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि ये सोलह का कमाल है, बड़ा इन बुरा हाल है और मीठे मीठे सपनों का, मतलब सच में गाना बहुत ही बेहतरीन लाजवाब है, मजा आ गया सुनकर। फिलहाल अगला कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आरजे आकांक्षा जी?
2: मैं क्या सुनना पसंद करूंगी, ये तो आप खुद ही जानते हैं मेरी पसंद। अच्छा। नहीं जानते हैं तो है। फिर आप दोस्त कहलाने के लायक नहीं
0: है। वो तो मैं हूँ ही नहीं। फिलहाल अच्छा? एक काम करता हूँ, पहले इनको मैं मतलब फोन लगाता हूँ, बातें करता हूँ और फिर।
2: हाँ, आप फोन ट्राई करिए, जब तक कॉल जा रही है मैं एक मैसेज पढ़ देती हूँ। मेरे पास में नागेश्वर ठाकुर जी का एक मैसेज आया हुआ है, लिखते हैं, चैट में सबको हंसना और किसको क्या रिप्लाई देना ये बहुत बड़ा काम होता है, एक एक शब्द का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी हंसी को हंसी में।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: क्या कॉल लग गया?
0: जी बिल्कुल, आ चुके हैं वो लाइन पर, बहुत बहुत वेलकम है। वालेकुम अस्सलाम।
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो
0: हेलो,
3: आवाज नहीं आ रही,
0: हेलो
3: हेलो,
0: आवाज आ रही है? दोबारा कॉल लगा दूं?
2: दोबारा कॉल लगाइए,
3: कॉल बैक।
0: हाँ, दोबारा कॉल
2: तो तब तब तक मैं और मैसेज पढ़ लेती हूँ। तो भाई ये बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और लगभग 5 साल पूरे होने को आए हैं, हर शब्द का ये बड़ा ही ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, मैं आपके बहुत करीब से जानती हूँ, कभी मुलाकात नहीं हुई, पर आप इतना जरूर ध्यान रखते हैं कि किसी का दिल ना दुखे और केवल हंसी और खुशी बांटने का काम करते हैं, इसीलिए तो हम आपको प्यार से नागू बाबा बुलाते हैं। और नागेश्वर जी, साथ ही साथ में आपको एक उपाधि हमने नवाजी है, वो है बीरबल की, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच में हैं।
0: जी बिल्कुल, ये तो हाजिर जवाबी में बहुत ही माहिर है। फिलहाल यहाँ पे आ चुका है कॉल, इनसे बातें करते हैं। हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है?
4: हाँ जी जी, आकांक्षा जी आपको आ रही है? आरजे आकांक्षा जी।
2: हाँ जी, हमको आवाज आ रही है, बस थोड़ी धीमे धीमे आ रही है, लेकिन आ रही है।
4: बहुत दूर से आ रही है।
0: एक काम करता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं इनको भी ऐड कर देता हूँ आपके साथ, नो टेंशन।
4: ओके,
0: इनको भी ऐड लगा देता हूँ, दोनों एक साथ हो जाएंगे। हाँ, मैंने दोनों को जोड़ दिया है
4: जी। हेलो,
5: हाँ जी, अभी क्लियर आ रहा है और इस तरह से हम कॉन्फ्रेंस से जुड़ चुके हैं
4: जी। जी, ख्वाहिश पूरी होगी देखिए मेरी आपसे बात करने की।
5: अच्छा, ऐसी ही ख्वाहिश, आज सबकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मतलब हो क्या रहा है?
4: हाँ जी, देखिए आपने दिलों को जीतने का जो काम स्टार्ट किया है
5: वो तो हमने बचपन से ही कर दिया था, हम जैसे पैदा हुए थे ना, हमने नर से बोल दिया था, देखो हमें सबका दिल जीतना है, बड़ा ख्याल से हमारा ख्याल रखिएगा। भाई हुआ क्या था, बगल वाली सीट पे एक स्मार्ट सा लड़का था, वो उनका ख्याल रखती थी, हमने कहा देखो हमें बाकी बहुत सारे दिलों को संभालना है, इसलिए अभी के लिए वो जो स्मार्ट लड़का उसका दिल संभालना आप छोड़ दो, हमें संभालो।
4: देखिए आपकी मम्मी ने बड़ा करके, लेकिन हमें हमारे लिए इतना जो एक परफेक्ट पर्सन को तैयार किया है, आप तो हमको अभी मिली ना। आप तो हमको अभी मिली ना।
0: बिल्कुल,
5: फिर नहीं समझी मैं, आप तो
4: देखा आपकी मम्मी ने जो इतना तैयार शेयर करके हम सबके लिए किया, आप हमको अभी मिली।
5: हाँ तो देखिए, हम आप लोगों को तो मिल गए, लेकिन हमारे पापा जी को अभी तक उनका दामाद नहीं मिला, हमको हमारा मर्द नहीं मिला, बताइए
4: नहीं,
5: हम सब कब खत्म होगा?
4: हम सब दुआएं कर रहे हैं,
5: दुआ ही करते रहिए, क्योंकि वो मिलने वाला नहीं इस जन्म, तो मुझे ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल है कहाँ।
4: नहीं नहीं पॉसिबल हो सकता है,
5: दुआ में हमें हिलानी, नहीं नहीं जिसकी दुनिया हमें हिला, देखिए आप लोगों को तो हम खुशी बांटते हैं, बस हमें भी तो कोई कॉर्नर चाहिए जिसकी हम दुनिया हिला सके, जिसको हम एकदम ताबड़तोड़ मतलब एकदम परेशान कर सके, नहीं करता है ना, कभी कभी बहुत मन करता है कि किसी को एकदम से परेशान कर दूं,
4: तो एक प्रोग्राम उनके नाम करिए ना, एक शाम उनके नाम, हम सब मिलके लग जाते हैं
5: एक शाम किन के नाम,
0: उनके नाम,
4: आपके उनके नाम,
0: पंडित जी के नाम,
4: उनके नाम, हम सब मिलके लग जाते हैं, आना ही पड़ेगा इंशाल्लाह
0: जी, एक शाम इन पंडित जी के नाम,
5: मेरी हर शाम जिसके नाम है, हर दिन जिसके नाम है, मतलब मेरी पूरी जिंदगी जिसके नाम है, उसके लिए खाली एक शाम बहुत कम नहीं है
4: ना, ना हम सब मिलके जो दुआएं करेंगे, सारे जो सॉन्ग बजेंगे, अभी तो पिघलेगा ही ना,
5: नहीं वो तो पिघला हुआ है, उसकी बात ही नहीं, हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, वो मुहूर्त नहीं ला पा रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं,
4: समझ गई अब वो तो समझ गई
5: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, रो रो के अरसों गुजारता है दिल, हाय मेरा दिल,
4: वो दुआ है कि ऊपर वाला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे
5: जी, जरूर
4: जी, ये तो रोबोटिक है, ये आरजे सर जी तो रोबोटिक है, ये इनका कुछ नहीं होने वाला,
5: इनका कुछ नहीं, इस जन्म नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, मतलब समझ जाइए
4: जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, ये तो बचपन में शराब भी नहीं किए, ये तो
5: नहीं किया तो इन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन हम कुछ कहेंगे नहीं
4: अच्छा तो छुपे रुस्तम है,
5: नहीं छुपे रुस्तम ही नहीं है,
4: इन्होंने थोड़ा बहुत उगलवा के, सबसे उगलवा उगलवा के सबके दिल का तो हाल सबने लिया, लेकिन ये तो इतने पता नहीं कौन सी वाली एवर रेडी की कौन सी वाली बैटरी है
5: नहीं नहीं खैरियत तो यही है कि मजाक की बात है ये, लेकिन बंदा बहुत ही ज्यादा स्वीट, इनोसेंट, डिसेंट, जो भी आप कह लो,
4: नहीं उसमें तो कोई शक नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं है, आप सबको तो जोड़ा है, आपको जोड़ा है, आरजे वंशकर जी का जोड़ा है, हम सबके दिलों को जोड़ लिया है, अभी और क्या बाकी,
5: नहीं अभी बहुत कुछ जोड़ना बाकी है, जैसे टूटे दिल हमारे राहुल पासी जी के हैं, रणवीर जी के हैं, रणवीर सिंह जी जो मैं सुनते हैं मुरादाबाद से, ऐसे बहुत सारे टूटे दिल हैं जिनको अभी जोड़ना बाकी है,
4: हाँ वो तो
5: जब तक ये दुनिया नहीं, जब तक ये दुनिया रहेगी ये दिल टूटते रहेंगे और उनपे मरहम लगाने हम जैसे लोग आते रहेंगे,
4: नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कितना रिलैक्स होता है, मैं कभी किधर जाती नहीं हूँ, बस ये रेडियो है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, आप आरजे वंशकर जी, आप हो, और दिन में तो मुश्किल होता है मेरा ज्वाइन करना, मैं शाम के एक बजे के बाद से इजी होता है,
5: शाम में मुझे बड़ा टाइम ही नहीं होता, हम जबरदस्ती टाइम निकालते हैं, मेरी फैमिली भी मुझसे बोलती है, मतलब घर में मम्मा बोलती हैं कि बेटा ये काम कर दो, हमने कहा मम्मा शो है, कल ही बोला भी मैंने रात में, तो कह रही है ये बताओ तुम खाली कब होती हो, तो हमने कहा इस जन्म तो ये इम्पॉसिबल है, कोई और सवाल पूछो, ये मतलब फिजूल का सवाल है,
4: आपकी मम्मी से कहिए सबके दिलों को जो राहत पहुंचा रहे हैं, जो रिलैक्स फील करवा रहे हैं, उससे बड़ा कोई काम है दुनिया में,
5: हाँ बट ये घर वाले कभी नहीं समझते
4: मानते हैं, कभी तो आपको करने दे

0: ओके, तो हमारे साथ में जुड़ी थी आमना खान जी, क्योंकि इनकी वो ख्वाहिश थी आरजे आकांक्षा जी से बात करने की। और आरजे आकांक्षा जी, तो आपको बात करके कैसा लगा?
1: बस अब मैं क्या ही बताऊं, अपने दिल का हाल मैंने खोल के रख दिया। मेरे पिताजी, उनका दामाद और हमारे वो, इससे ज्यादा क्या ही कहूं।
0: फिलहाल मैं तो अगला गाना प्ले करने वाला हूं और कुछ करने वाला नहीं हूं।
1: बेशक।
0: ओके, और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूं वो हम प्ले करने वाले हैं मतलब आरजे यानी सोनी जी का गाना। ओके, हेलो, हाँ इंजॉय कीजिए।
2: ए जी यूज मी,
3: आई एम टोटली कंफ्यूज मी, कातना ले पढ़ल बाड़ू
2: चौथा का,
3: ओकरा बाद कहे ना गई
2: गर्मी के छुट्टी हो गई,
3: आ ओकरा बाद
2: फिर बारिश आ गई,
3: आ ओकरा बाद
2: जाड़ा के छुट्टी हो गई,
3: फिर ओकरा बाद
2: फिर फगुन आ गई,
3: आ फिर ओकरा बाद रे
2: छोटी मरनी नू की पढ़े के आदतें छूट गई।
4: बाय गाइस।

0: लागत है कि अब हम डिप्रेशन में चल जाए।
1: ठीक बा, अकेले जाई?
0: हाँ।
1: जाते में तो जाके देखी।
0: हाँ।
1: अब बढ़िया जगह होई नू।
0: हाँ।
1: तो हम वही हनीमून मनावल जी डिप्रेशन में घूम घाम के आ चले जाए।
0: अब तो सफा संतोषवा बना देबे।
1: का भाई कुछ गलती

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाता है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी मजा आया होगा जैसे कि मुझे मजा आया है। और अभी महाराज जी देखते हैं कि इससे पहले वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है, धन्यवाद देते हैं। निशांत है बोलते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, मजा आ गया सुन के। और गजानंद जी देखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद हमेशा शानदार, ये तो भोजपुरिया महारानी है ना, बिल्कुल। और अगला डिमांड भी मैं प्ले करूंगा, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे आरजे आकांक्षा जी?
1: लास्ट में तरफ से को सवाल पूछी।
2: हाँ जी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शायद दीपक जी ने कोई सवाल किया था और पूछा था कि आपने कब जाना था कि दुनिया गोल है।
0: हाँ, मतलब उन्होंने यानी सवाल किया था कि अमन जी एक सवाल है, स्कूल या कॉलेज के टाइम आपको ये कब मालूम चला कि दुनिया गोल है, और इन कब मालूम चला कि इन पहले इन मुर्गी आई

0: या अंडा? जी
1: तो पहले ना मुर्गी आई ना अंडा आया, पहले आया दुकानदार जो हमको खरीद लाके उसने हमको थमाया, हमको तो वहीं से प्राप्त हुआ था। और दूसरी सवाल का जवाब इनके, मतलब पहले सवाल का जवाब, दूसरे का तो मैंने दे दिया। पहले का है, स्कूल में पता चलता है कि दुनिया गोल है किताब में पढ़कर, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन कॉलेज में पता चलता है कि दुनिया सच में गोल है। कारण, क्योंकि जब कॉलेज में कोई दोस्त दूर हो जाता है और कुछ साल बाद अचानक से वो शादी नौकरी या कोई सोशल मीडिया पर मिल जाए, तो आपको क्या फील नहीं होता कि दुनिया गोल है, ये साला चला गया था अभी फिर से आ गया है हमारी जीवन में तबाही मचाने, ऐसी वाली फीलिंग। हाँ
0: ऐसा है फिलहाल। अगला जो मैं डिमांड प्ले कर दूं आरजे इनवंशिका जी का, और ये लिखती हैं कि मैं स्कूल में बहुत ही पढ़ाकू थी और थोड़ी सी यानी कि पगली और थोड़ी सी दीवानी थी। अच्छा, और लिखती हैं कि स्कूल की यानी कुछ यादें वो तो रुलाती भी हैं और कुछ हंसाते भी हैं, और कुछ हमें वो पुराने पलों की याद भी दिलाती हैं, उस पर उसको दिलाने के लिए वो मजबूर कर देती हैं। तो मैंने इन कुल मिलाकर 9 स्कूल बदले, और इसलिए मेरे पास स्कूल के इन किस्से बहुत हैं, लेकिन इसीलिए मैं एक गीत सुनना चाहती हूँ, और गीत उन्होंने भेज भी दिया है, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: और जयकंचा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर मुझे यानी कि टाइम मशीन मिलता तो मैं अपने फिर उन्हीं दिनों में वापस जाना चाहता था, क्योंकि सच में वो दिन मेरे लिए बहुत ही गोल्डन लाइफ था। और लोग ये भी कहते हैं कि कॉलेज लाइफ इज द गोल्डन लाइफ, क्यों है कि नहीं?
1: नहीं, मैं तो अपने स्कूली दिनों को ज्यादा मिस करती हूँ। अच्छा। वो प्योरिटी, वो मतलब वो प्योरिटी फिर कभी नहीं आती है। कॉलेज में आप बड़े होने लगते हो, आपको थोड़ा सा मतलब गुटबाजी आ जाती है, थोड़ी सी राजनीति आ जाती है, थोड़े से मतलब आप बाकी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी निगेटिविटी पार्ट में भी मतलब आप देखने लगते हो। बट जब आप स्कूल में होते हो तो स्कूल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बस सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, मम्मा पापा होते हैं, थोड़े से दोस्त होते हैं, एक अच्छी सी आइडल टीचर होती है और टीचर की बात सबसे ऊपर रखी जाती है, फैमिली मेंबर बाद में आते हैं, मेरी टीचर ने कहा है तो कहा है।
0: हाँ,
1: तो ऐसी वाली चीज, तो वो प्योरिटी, वो चीजें आपको फिर वो जो ट्रांसपेरिटी होती है वो लौट के दोबारा नहीं आती। कॉलेज वाले दिन आप अपने दोस्तों से मिलके फिर से जी सकते हो एक दफा, बट वो स्कूल वाले दिन आप कभी नहीं जी सकते दोबारा से।
0: तो इसको एक्चुअली अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे स्कूल वाले दिन वो तो बिल्कुल नहीं है ना यार, तो वो मैं कैसे बताऊंगा मुझे कॉलेज वाले दिन?
1: मैं तो कभी भूली ही नहीं ना, मैं तो कभी भूली ही नहीं ना, आपने शायद उसको इतना अच्छे से जिया ही नहीं जितना अच्छे से शायद मैंने जिया है।
0: हाँ, हो सकता है मैं भी, और जो मेरे लिए जो लाइफ थी वो कॉलेज वाली ही लाइफ मतलब सबसे बेस्ट लगी मुझे।
1: कॉलेज वाले टाइम में तो हम नेता हुआ करते थे।
0: अच्छा।
1: हम स्टूडेंट थे ही कब।
0: अच्छा, तो फिलहाल हमारे पास इन फीडबैक भी आए, मैं शामिल कर लूं?
1: जी बेशक।
0: ओके, पहला ये
2: हमारी आरजे आकांक्षा जी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, कोई हमारा बिछड़ा जब हमें मिलता है तो हमें पता चलता है कि दुनिया गोल है। बहुत ही बढ़िया सवाल का जवाब दिया है और धन्यवाद आपका।
0: ओके, और ये भी क्या कहती है वंशिका जी, सुनते हैं।
3: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आरजे वंशिका एंड आज अमन जी मैं भी कार्यक्रम के साथ ज्वाइन हो चुकी हूँ। बहुत ही प्यारा शो चल रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और आज के थीम जो आप लेके आए ना, कॉलेज एंड स्कूल पे स्पेशल, इस थीम में मेरा दिल लूट लिया है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे कुछ यादें जुड़ी हैं, इस थीम के गानों को सुन के यादें बहुत ताज़ा हो रही हैं। एंड आरजे कांचा जी आप भी साथ में हैं, आपको भी मेरी तरफ से हेलो, कैसी हैं आप प्लीज़ बताइएगा मुझे। और इसके साथ साथ आज की थीम यानी स्कूल या कॉलेज की यादें, यहाँ के गाने जो मैं सुन रही हूँ ना, तो मेरा दिल बिल्कुल ऐसे भर सा आया है क्योंकि स्कूल और कॉलेज से मेरी कुछ ऐसी यादें हैं जिनको अगर मैं सोचने बैठूँ तो कुछ तो ऐसी यादें हैं जिनको सोचूँ तो पूरी रात भर मैं रो रो के बिता दूँ, और कुछ ऐसी यादें हैं अगर उनको मैं सोचने बैठूँ तो इतना ज़्यादा हंसूँ कि अर्चना पूरन सिंह जी को भी मैं मात दे दूँ, मे भी इतना ज़्यादा हंसूँ। मतलब सभी मिक्सअप यादें हैं, मतलब कुछ यादें ऐसी हैं उनको सोचूँ तो मैं सोचती रह जाऊँगी, पूरी रात नींद ही नहीं आने वाली मुझे। तो स्कूल से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे अमन जी आपने अपना किस्सा सुनाया ना स्कूल के पहले दिन का, तो मेरे भी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे, मतलब अगर खोलने बैठी ना मैं किताब को तो पूरा शो एंड हो जाएगा, आपको मेरे ख्याल से रात के 12 बजे तक शो करना पड़ेगा जब तक भी कम्प्लीट नहीं होने वाली।
0: जाने वाला
3: इतने ज़्यादा किस्से हैं, बहुत बहुत ज़्यादा समय होंगे, जितनी आकांक्षा जी की बातें हैं चल रही है ना उससे भी डबल वाली मेरे किस्से होंगे, बट मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि मुझे पता है फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं और हैंडल आउट भी करना है शो को, तो मैं समझती हूँ इस बात को, इसलिए मैं किस्सों को नहीं खोलूँगी। बस यही कहना चाहूंगी कि आज की थीम से यादें मतलब ताज़ा हो गई हैं, अभी भी मैं सोचने लगी थी अपनी स्कूल की जो बातें हैं, जो समय मैंने स्कूल में बिताया, क्योंकि स्कूल या कॉलेज ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी के कुछ ऐसे साल बीतते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक लेके चले तो 25% ऑफ द लाइफ स्कूल में जाती है।
0: अच्छा।
3: क्योंकि स्कूल या कॉलेज में जाती है क्योंकि बच्चा जब तक रहता है अराउंड लाइक 26-27 तक वो पढ़ाई में लगा रहता है, चाहे वो कॉलेज को हम इंक्लूड करें या ना करें, बट आफ्टर ग्रेजुएशन जब वो पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है स्कूल से या कॉलेज से, जब जाके जब उसकी गृहस्थी बिछाने का टाइम आता है या नौकरी करने का टाइम आता है, जब वो स्ट्रेस माहौल में जाता है, तो वो स्कूल के पलों को या कॉलेज के पलों को याद करता है। भले वो स्कूल के टाइम पे जब वो था तो उस समय वो सोचा करता था कब निकलेंगे स्कूल से, अरे कब पास हो गए कॉलेज, ये कितनी दिक्कत की बात है, बट जब बाहर निकल जाते हैं तो जब और मुश्किल वाली ज़िंदगी में घुस जाते हैं तो सोचा करते हैं कि हाँ वही दिन अच्छे थे, वही दिन क्या थे, क्या समय था वो जब अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड क्या करते थे, क्या समय था जब वो टीचर से डांट पड़ा करती थी, क्या समय था जब वो एक दूसरे के टिफिन से चुरा के परोठियाँ खाई जाती थी, क्या समय था वो जब अगर हम रोया करते थे तो साथ में स्कूल में टीचर्स होती थी हमें चुप कराने के लिए, भले ही होमवर्क करने पे वो भी वही डांटती थी पर चुप भी वही कराती थी।
0: अच्छा।
3: मतलब बहुत सी यादें होती हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक गाना लेके आई हूँ मैं। आई नो अगर आप सभी सुनेंगे तो पसंद तो ज़रूर आएगा, क्योंकि इस गाने में यादें हैं और इसके अल्फाज, इसके शब्द, इसमें जो बयां किए गए हैं अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में वो।
0: तो गाना मैंने प्ले कर दिया है आपके इस, मुझे कब पता कि आप इसको दोबारा ऑडियो भी भेजिएगा, क्योंकि मैंने आपके उस मैसेज को पढ़ के ही मैंने आपका गाना प्ले कर दिया था। धन्यवाद। अगला जो डिमांड है, मैं आप सबको इन बचपन में ले जाना चाहता हूँ, और ये बचपन में ले जाने वाला काम करने वाली है इन्हें खुशबू जी। और खुशबू जी ये तारे जमीन पर वो गाना सुनना चाहती हैं, बम बम भोले। तो सुनाते हैं इस गाने को और बचपन के वो बीते दिनों को याद करते हैं।

0: बिल्कुल, और ये फीडबैक एक आ चुका है, शामिल करता हूं।
1: जी, आपने मेरा गाना सुना उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड बिल्कुल सही बात कही आपने, मैं भी हमेशा यही सोचा करती थी कि मेरे पास अगर टाइम मशीन होया ना तो मैं अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में वापस जाना चाहूंगी, जब मतलब कोई टेंशन नहीं थी ना मन में, वो जो पल थे जब स्कूल में हुआ करते थे वो कुछ अलग ही थे, कुछ अलग ही थे, कुछ अलग ही महसूस हुआ करता था उस समय, अलग ही मतलब फीलिंग होती थी। तो मैं भी यही चाहूंगी बस कि टाइम मशीन पकड़ूं, और अगर मेरे को मिली डोरेमोन की टाइम मशीन तो आपको भी बिठा के साथ में ले चलूंगी। अच्छा। हम चलेंगे अपने स्कूल के पीछे वाले पलों में, अपने स्कूल की यादों के, स्कूल के टाइम पे चलेंगे। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे फीडबैक का जवाब दिया और गाना प्ले किया, उसके लिए भी धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का आकांक्षा जी के, यानी पिताजी मुझे चाय की दुकान पर मिले थे और मैंने उनसे पूछा कि आकांक्षा जी के लिए कैसा लड़का और यानी कि आपको कैसा दामाद चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो लड़का बोलता कम हो सुनता ज्यादा हो। अच्छा। ओह माय गॉड। और शिल्पा बेंच लिखते कि मैं भी एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, और वो मेरी फ्रेंड के स्कूल के रास्ते में एक घर आता था और उनके घर में घंटी बजा के हम लोग भाग जाते थे, ये सब तो काम जाहिर से बात है, और वो दिन बहुत ही लाजवाब होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय वंशिका जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे यानी कि काजल झका जी लिखते हैं कि गाने सभी अच्छे से अच्छे चल रहे हैं। एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि अमन सर जी, आप इन बरसात की रात या जेठ की दोपहर और सर्दी की सुबह पर कोई जरूर जरूर लाएँ आकांक्षा जी साथ में। अच्छा, ऐसा है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे शो को वाइंड अप करने वाला हूँ जी, बताइए आकांक्षा जी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, शो ख़त्म होने वाला नहीं है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है।
2: समय बहुत ज़्यादा है, शो ख़त्म होने वाला नहीं है, ऐसा क्या सच्ची में?
0: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है अभी, और,
2: हाँ।
0: और इतने डिमांड है कि अगर उसको मैं इन पूरा करूँ तो शो खत्म होने वाला नहीं है जल्दी।
2: और ये तो भाई इंसानों की फितरत है, उनकी डिमांड से नहीं खत्म होती है, अगर डिमांड खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाए।
0: सही कहा आपने।
2: और एक बात और कहना चाहूंगी कि भाई अब आप जा रहे हैं तो जाते जाते हमारी यादों का पिटारा क्या प्ले करना चाहेंगे?
0: आपकी यादों का पिटारा भी प्ले करूंगा, लेकिन एक असलम राणा जी का भी गाना है, बेचारे बहुत देर से परेशान है, उनके भी गाने को मैं प्ले करना चाहूंगा।
2: तो प्लीज प्ले कर दीजिए, फिर आते हैं।
0: अच्छा ठीक है, एक फीडबैक और है, पहले उसको शामिल करते हैं।
3: अमन जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। स्कूल से रिलेटेड मुझे एक मूवी है, जो जीता वही सिकंदर, उसका एक सॉन्ग याद आया है जो कि मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। उसने बात की। अच्छा। कुछ ऐसे ढंग से। ओहो।

0: ही ना कहा।
1: फिलहाल ये कहना असलम बहन जी की डिमांड है और कॉलेज की उन दोनों को याद करते हुए सुनना चाहते हैं। और इसके बाद से हम लोग ये वाइंड अप करने वाले हैं। अर्जा कंसा जी का आखिरी डिमांड पूरा होगा, उसके बाद से हम लोग बाकी दोस्तों के गाने शामिल नहीं हो पा रहे, उसके लिए आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। और जिन जिन दोस्तों के गाने शामिल नहीं हो पा रहे उनके नाम मैं बता देता हूँ जैसे मुझे मौका मिलता है।

और जिनका डिमांड छूट रहा है उनका नाम है राजेश कुमार जी, ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से, और अजय कुछ जी है, इनका भी छूट रहा है, इनको भी सॉरी। और छूटने वाले में है हुकुम चंद जांगिर जी।

यानी शिल्पा बेन जी आपका भी छूट रहा है, आई एम सॉरी शिल्पा बेन जी, और यानी विष्णु चंद्र जी आपका भी छूट रहा है, और असलम राना जी का तो हो चुका है ऑलरेडी मेरे पास, और दीपक कुमार गायकवाड़ जी ये भी आपका मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बाबूलाल अंजना आपका भी कैंसिल कर पा रहा हूँ, और रवि महड़े जी आपका भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और ऋषिता जी आपका भी कैंसिल कर रहा हूँ, और कविता जी आपका भी कैंसिल हो रहा है, शाहिद अंसारी जी आज के लिए भी सॉरी फिलहाल।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और सच में मतलब ये गाना लाजवाब था ना अर्जय कंसल जी, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरे पास फीडबैक भी आए हुए हैं यहाँ पे, ये क्या कहते हैं
1: जी अमन जी, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा गया है, मुझे काफी प्यारा लगा। इतने प्यारे प्यारे गाने और आपकी प्रेजेंटेशन है तो क्या ही कहना, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम गया।
0: थैंक यू सो मच,
1: आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी और सभी लिसनर्स को भी दिल से धन्यवाद देना।
0: आवाज बहुत सुनो आ रही है आपकी इसमें, और यानी के जाकिर जी आज के लिए सॉरी। और यहाँ पे आमना खान जी लिखते हैं कि हाँ वो आप, मैं तो अपनी पसंद का गाना जरूर सुनवा के जाने वाला हूँ, वो तो मैंने इन्हें पहले ही इन्हें कह दिया है। फिलहाल बता दीजिए यहाँ पे मैं इनका गाना मैं प्ले करके आऊँ या आप कुछ कहेंगे?
2: प्ले कर दीजिए।
0: ओके, तो इनका मैं गाना प्ले करके आता हूँ थोड़ा सा।

0: मैंने मुखड़ा प्ले कर दिया है और अब आप इनवाइंड अप ले लीजिए, मैं भी लेने वाला हूँ।
1: वैसे तो मैं अगर सच कहूँ तो मेरे ये जो सॉन्ग की याद है वो ये है कि चार दफा किसी ने मतलब लगातार एक ही सॉन्ग की डिमांड करवाई थी और गाना कुछ ऐसा ही था कि हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। अच्छा। और आखिरकार मुझे मजबूर होके मतलब वो गलती करनी ही पड़ी। अच्छा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको कॉल किया, यकीन नहीं मानेंगे आप, कम से कम 3 मिनट के उधर से शांति थी मेरा नाम सुनने के बाद में। अच्छा। मेरा दिल एकदम बैठा जा रहा था भाई, क्या हुआ, मतलब बंदा जवाब क्यों नहीं दे रहा सामने से। अच्छा। मतलब उसको विश्वास ही नहीं होता कि मैं ही हूँ कॉल पे। ये हाल था। फिर क्या, फिर बात आज यहाँ तक है कि बस जो भी है सो है।
0: तो ये आपका मैं गाना प्ले कर दूँ और आप
1: ये गाना आप बाद में प्ले करिएगा, जाते जाते करिएगा, उससे पहले वाइंड अप करते हैं शो को। तो वक्त का सबसे अजीब सच ये है दोस्तों कि जब हम स्कूल में थे तो कॉलेज जाने की जल्दी होती थी, फिर कॉलेज में थे तो नौकरी करने की और ज़िंदगी को जल्दी और आगे बढ़ाने की। और आज कभी कभी दिल करता है कि वापस उसी क्लास रूम में जाके बैठ जाए, जैसे वंशिका जी ने कहा और हमारे प्यारे आर जे अमन ने कहा और आप सभी ने भी कहा। तो वही दोस्त सामने हो, वही कैंटीन हो, वही हंसी हो, वही छोटी छोटी परेशानियां हो, लेकिन जिंदगी पीछे नहीं लौटती। जिंदगी का ये बहुत बड़ा सच है। और हाँ, यादें जरूर लौट के आती हैं, किसी पुराने गाने के साथ, किसी पुराने दोस्त के मैसेज के साथ, किसी पुराने कॉलेज की तस्वीर देखकर। और फिर अचानक दिल कहता है काश एक दिन के लिए ही सही वो स्कूल वो कॉलेज के दिन वापस आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास आज भी कोई पुराना दोस्त है उसे एक मैसेज जरूर कीजिएगा, और अगर कोई पुरानी याद मुस्कुरा देती है तो उसे दिल से धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि यादें ही हैं वो चीज़ जो हम पूरी उम्र लेकर के चलते हैं। और अगर अच्छी यादें हो तो ही उसको आगे लेके चलिए, बुरी यादें हो तो वो यादें हो ही नहीं सकती हैं, फिर वो कुछ बस ऐसा ही होता है जो होता है, बस यूं ही एवं ही। और अगर आपकी ज़िंदगी में पहली पसंद, पहली दोस्ती या पहली मासूम मोहब्बत आई थी, किसी की भी आई थी, मतलब किसी की आई थी ना कहीं से। हेलो।
0: हाँ बोलिए, आगे बोलिए।
1: हाँ मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आई थी कहीं से
0: बिल्कुल
1: मासूम सी मोहब्बत।
0: मैं तो वो मतलब इतनी मासूम है, मतलब वो कहते हैं ना, ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा, बस राधा।
1: चलिए भाई, इनके आधे पे हम इनको छोड़ देते क्योंकि इन्होंने राधा का नाम ले लिया, इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। राधा तो हमारी जीवन का आधार है, राधे ही राधे। तो वो उसे याद करके मुस्कुरा दीजिए। और क्योंकि कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते हैं, बस वो कुछ सीख दे जाते हैं और हमें जिंदगी भर याद रहने के लिए आते हैं। तो मैं थी आपकी होस्ट अनुज आरजे आकांक्षा और हमारे साथ में थे हमारे आरजे अमन, मैं ऐसा नहीं कहने वाली भाई, मैं थी आज इनके साथ में एज अ गेस्ट होस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं आपको दूंगी। और आज की ये जो महफिल समर्पित थी उन दोस्तों के नाम जिनके बिना हमारे स्कूल कॉलेज की कहानी अधूरी है, और उन सभी खूबसूरत यादों के नाम जो वक्त के साथ पुरानी तो हो गई लेकिन कभी बेगानी नहीं हुई। तो बस इतना ही कहूंगी कि अपनी पुरानी यादों को कभी मरने मत दीजिएगा, हमेशा अपने साथ रखिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए।
1: और जाते जाते हमारा वो गीत जरूर प्ले करिएगा, क्योंकि ये गाना खास करके हमारे भविष्य फ्यूचर हस्बैंड के नाम होने वाला है। और हर लड़का जब किसी से दोस्ती होती है तो वो यहाँ तक की प्लानिंग कर ही लेता है, अब बाकी क्या है वो गाने के माध्यम से आप सभी जान ही जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपके गाने को प्ले कर दूं।
1: और यहीं से मैं इजाजत लूंगी क्योंकि मुझे जाना होगा, एक बहुत अर्जेंट कॉल आई है।
0: ओके, बाय बाय,
1: टेक केयर, बाय बाय।

0: बिल्कुल शर्मिली नखरे वाली है। और मैं बता दूं कि अगर मुझे समय होता तो आज दो दोस्तों को मैं सॉन्ग ऑफ द डे का विनर बनाता, एक तो नंदलाल यादव जी को और एक असलम राणा जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं अभी उनके गाने को प्ले नहीं कर पाऊंगा, मतलब यानी विनर वाले के लिए, लेकिन उन दोनों आज के यानी विनर बने हैं, बहुत बहुत बधाई हो उनको। और MD सुरेश जी लिखते हैं कि आज तो बहुत मजा आया सर जी। और अब जाते जाते एक डिमांड आप मेरे पसंद का सुनते जाइए, और क्योंकि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कब कहा मुलाकात।
1: अभी अलविदा मत कहो।

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: लड़ेगा।
1: देख जिधर में शोले ही शोले, दिल है आखिर कैसे न डोले। हाय देख जिधर में शोले ही शोले।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

सुनो एक तराना, नया एक फसाना, कि आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बरसों बाद उलझन में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.